मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, वेव्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार अब रिले किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है।

0: पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज सुनिए तिलहनी फसलों की देखभाल के विषय में जानकारी। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम तिलहनी फसलों में लगने वाली कीड़ों, उनकी पहचान, उनके नुकसान करने के तरीके तथा उनके नियंत्रण के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। खरीफ की तिलहनी फसलों में तिल, मूंगफली, सोयाबीन एवं अंडी प्रमुख हैं, लेकिन अपने यहाँ मुख्य रूप से तिल, सोयाबीन एवं मूंगफली की ही खेती होती है। खरीफ ऋतु में मौसम की अनुकूलता के कारण कीड़ों का प्रकोप अपेक्षाकृत अधिक होता है और उपज का एक बड़ा भाग इन्हीं कीड़ों के कारण कम हो जाता है। अतः ये बहुत ही आवश्यक है कि इन कीड़ों की सही पहचान करके उनका व्यापक नियंत्रण किया जाए। तिल की फसल में मुख्य रूप से 2 कीड़े लगते हैं, एक तो तिल की सूंड़ी और तिल की पत्ती व फल की सूंड़ी। ये सूंड़ियाँ तिल की कोमल पत्तियों और फलियों को खाती हैं तथा इन्हें जाला बनाकर बांध देती हैं। अगर इस कीट का प्रकोप तिल की फसल पर होता है तो मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुरका करना चाहिए। तिल में एक और सूंड़ी इस फसल को नुकसान पहुंचाती है। यह आकार में काफ़ी बड़ी होती है और हरे रंग की होती है, तिल की पत्तियों को खाती है। इसके नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान 35 EC की 1.25 लीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। मूंगफली की खेती भी अपने यहाँ बहुतायत रूप से होती है। इसमें 2 कीड़े फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, एक तो मूंगफली की सफ़ेद गिडार और दूसरा दीमक। सफ़ेद गिडारें पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग की होती हैं, जिनका सिर भूरा कथई या लाल रंग का होता है। ये छूने पर गेंडुल के समान मुड़कर गोल हो जाती हैं। इसकी मादा ही नुकसान पहुंचाती है, नर नहीं। मादा जड़ों को खाती हैं जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। यह कीड़ा पहली वर्षा के बाद आसपास के पेड़ों पर आकर मैथुन क्रिया करता है तथा फिर 3-4 दिन बाद खेतों में जाकर अंडे देता है। यदि प्रौढ़ कीट को पेड़ों पर ही मार दिया जाए तो यह नियंत्रण ज़्यादा प्रभावकारी रहता है। इस हेतु क्लोरपायरीफास या क्विनालफास दवा प्रयोग करते हैं। इसकी 4 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दीमक का प्रकोप मूंगफली में उस समय होता है जब जमीन में नमी की कमी होती है। ये जड़ों तथा फलियों को काटती हैं। जड़ कटने से पौधे सूख जाते हैं और फली के अंदर मिट्टी भर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए यह ध्यान देना जरूरी है कि खेत में हमेशा नमी बनाए रखें। सोयाबीन में फली छेदक

0: और बिहार रोमिल सुंडी का प्रकोप होता है। फली छेदक कीट की सुंडी सोयाबीन की फलियों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए क्विनाल फास 25 EC की 1.5 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। सोयाबीन की बिहार रोएदार सुंडी शुरू में पत्तियों को खुरच कर खाती हैं तथा बाद में पूरे खेत में बिखर कर पत्तियों को खाकर पौधों को नंगा कर देती हैं। इससे बचाव के लिए इंडोसल्फान 35 EC की 1.25 लीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अंडी में मुख्य रूप से एक ही कीड़ा लगता है, वह है कैस्टर सेमीलूपर। इस कीट की सुड़ियाँ स्लेटी काले रंग की होती हैं, जो कि अंडी की पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। अंडी की फसल में अगर इस कीट का प्रकोप होता है तो DDVP 76% की 500 मिलीलीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर तिलहनी फसलों में कीट नियंत्रण का कार्य करना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तिलहनी फसलों की देखभाल के विषय में जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना।

शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। आइए सब मिलकर भगवान शिव का नमन करें।

जिस प्रकार मनुष्य को आहार के रूप में अन्न की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भगवान भाव के भूखे होते हैं। प्रार्थना में उपयोग किए जा रहे शब्द महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि भक्त के भाव महत्वपूर्ण होते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज की आराधना के गायक कलाकार थे आशा भोसले, तुलसी कुमार और जगजीत सिंह। मीडियम वेव के मीटर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:30 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु। कार्यक्रम में आज का विषय है भारतीय संस्कृति में शिव तत्व।
1: जीवन में जो अभीष्ट, कल्याणकारी और सुंदर है, वही है शिव तत्व। जो आदि, मध्य और अंतहीन है, निराकार है, विभु, चिदानंद, अद्भुत है, वह है शिव। सत्य की कोई परिभाषा नहीं होती, सौंदर्य की कोई संज्ञा नहीं होती, और न ही शिवत्व का कोई विशेषण होता है। परंतु भारतीय संस्कृति की कल्पना सत्यम, शिवम, सुंदरम की रही है, और इसे ही हम अपने जीवन का प्रतीक बना चुके हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार शिव सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंत, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, अभय, नित्य और पवित्र है। जटाजूटधारी भगवान शंकर के पार्श्व में माँ पार्वती विराजमान रहती हैं। उनके समान द्रवित होने वाला और कौन है? जिसने भी उनकी उपासना की, वांछित फल मिलने में देर नहीं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ होने के कारण ऐसे कार्य करते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता। अमृत मंथन में विष निकलने पर कोई भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, परंतु शिव ने विषपान किया ताकि सृष्टि का कल्याण हो। वे मनुष्य को सतोगुण की ओर जाने का संकेत देते हैं। उन्होंने फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को विषपान किया, वहीं उन्होंने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उमा को अंगीकार भी किया। तभी से यह रात्रि महा शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऋग्वेद में रात्रि आकाश की बहन और ऋतु की माता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यामं जागर्ति संयमी, अर्थात सभी प्राणीजन जिसे रात्रि मानकर सो जाते हैं, उसे देवी का रूप मानकर योगी जन उस समय जागरण करते हैं और अभीष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसी कारण शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शंकर प्रत्येक के हैं। समाज के सभी वर्ग उनका विशेष सम्मान करते हैं। भूत प्रेत, डाकिनी पिशाचिनी से लेकर सुर असुर, नरमुनि सभी उनकी

0: वंदना करते हैं। महल अट्टालिकाओं में निवास न करके कैलाश पर्वत पर मुक्ताकाश के नीचे उनका निवास है। वे अति साधारण वसहे बैल की सवारी करते हैं। भगवान शंकर अपनी सर्वव्यापी भूमिका में अरूप भी हैं, स्वरूप भी। उनका मूर्तिमान दर्शन धीरे धीरे अमूर्त होता गया और इस तरह वे अत्यंत सरल सहज उपलब्ध होते गए शिवलिंग बनकर। कदाचित यही है जीवन का शिव तत्व, जिसे आत्मसात करके हम शिवोहम का जाप करते हैं और शिवरात्रि पर उन्हें स्मरण करते हैं, जो हैं भोले भंडारी, जो नित्य नूतन हैं, नित्य नवीन हैं, जिनसे एकाकार होने का अर्थ ही है संपूर्ण परमानंद की प्राप्ति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। कार्यक्रम में आज का विषय था भारतीय संस्कृति में शिव तत्व। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ग्लूकोमा कारण और समुचित चिकित्सा विषय पर जानकारी। जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी, ज्योति नेत्रालय मिथिलेश नगर कॉलोनी पहड़िया में नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे नेत्र रोग के बारे में जानकारी साझा करने आया हूँ, जिसे पूरी दुनिया में साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोला जाता है। इस रोग का नाम है ग्लोकोमा, जिसे आम भाषा में काला मोतिया भी कहते हैं। यह रोग इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसकी शुरुआत में अधिकांश लोगों को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। जब तक रोग का पता चलता है, तब तक आंखों की रोशनी का एक भाग स्थायी रूप से नष्ट हो चुका होता है। इसलिए समय पर जांच उपचार ही इसके बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। ग्लोकोमा क्या है? हमारी आंख के अंदर एक विशेष द्रव लगातार बनता और बाहर निकलता रहता है। जब किसी कारण से यह द्रव ठीक से निकल नहीं पाता, तब आंख के अंदर का दबाव बढ़ सकता है। यह बढ़ा हुआ दबाव आंख की सबसे महत्वपूर्ण नस अर्थात ऑप्टिक नर्व को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। यही स्थिति ग्लोकोमा कहलाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ लोगों में आंख का दबाव सामान्य होने पर भी ग्लोकोमा हो सकता है, इसलिए केवल दबाव मापना ही पर्याप्त नहीं है। अब हम जानना चाहेंगे कि ग्लोकोमा क्यों होता है। तो ग्लोकोमा के कई कारण हो सकते हैं। बढ़ती उम्र, विशेषकर 40 वर्ष की उम्र के बाद परिवार में किसी को ग्लोकोमा होना, मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के रोगियों को, अत्यधिक मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के लोगों को, जिसको कभी आंख में चोट आई हो, जिन्होंने लंबे समय तक स्टीरॉयड ड्रॉप्स का प्रयोग किया हो, अथवा कुछ अन्य जन्मजात कारणों से भी ग्लोकोमा हो सकता है। ग्लोकोमा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला ओपन एंगल ग्लोकोमा, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। दूसरा एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। इसका विभाजन इरिडोकॉर्नियल एंगल, जो आयरिस और कॉर्निया, जो आंख की पुतली के बीच का कोण है, उसके एंगल के खुले होने पे हम लोग करते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ग्लूकोमा कारण और समुचित चिकित्सा विषय पर जानकारी। जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र मीडियम वेव के मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
3: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: स्वच्छता ही सेवा, ध्येय वाक्य को अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं।

0: अपना जीवन अमूल्य बनाए। स्वच्छता अपनाए, कार्यालय की गरिमा बढ़ाए, अपना जीवन सफल बनाए। स्वच्छ होगा जब वातावरण, तभी होगा नवजागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाए, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है। स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाएं, रोज सफाई करना भूल न जाएं। गांधी जी के सपनों का भारत हमें बनाना है। पूरा भारत स्वच्छ रहे, यही हमारा नारा है। स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही स्वच्छता अपनाएं। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा, तभी तो हर सपना सच होगा। देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। जब देश का कोना कोना स्वच्छ रहेगा, तब देश का हर एक बच्चा स्वस्थ रहेगा। अविरल गंगा, अविरल यमुना, स्वच्छ भारत संकल्प है अपना। न फैलाएंगे कूड़ा कचरा, स्वच्छ बनाएंगे भारत अपना।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र मीडियम वेव के मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। समय है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों, तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूं। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे और संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आपको सुनवाया जाएगा रात्रि 10 बजे से। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज सुबह 9:30 पर और विधानमंडल समीक्षा सुनिएगा रात्रि 8:20 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर, दिन में 12:45 पर और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर आज कलाकार होंगे सूबेदार यादव और साथी। इनके स्वर में लोकगीतों का आनंद आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी ले सकते हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर कलाकार होंगे रमा शंकर। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी दिन में 1:15 पर। कार्यक्रम में आज बहनों को हम सुनवाएंगे डॉक्टर सुमन राय की वार्ता, साहित्य में वर्णित सावन का सौंदर्य, साथ ही होगा सेहत ज्ञान और गृहलक्ष्मी टिप्स। युवाड़ी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज हमारी युवा साथियों के लिए आकर्षण रहेगा आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना।

0: शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आज किसान भाई सुनेंगे खरीफ में संकर बाजरा उगाने की तकनीक। इस विषय पर डॉक्टर राहुल कुमार सिंह से बातचीत। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम मधुरिमा में सुबह 8:45 पर। आपके पत्र आपके गीत फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे से। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा रोज की तरह दिन में 12 बजे से। अपनी पसंद के भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं दोपहर 2:30 पर फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम में। गैर फिल्मी गीतों और गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार सुनेगा सुबह 10 बजे से। कार्यक्रम रसरंग शाम 7:31 पर और कार्यक्रम रसमाधुरी का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:50 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब रिले किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रे सरति तथा देशस्य युवानः शारीरिक रूपेण सुदृढाः मानसिक रूपेण सबलाः आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थ जीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1 कोट्यधिकाः युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय सङ्घटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादक द्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रिय शुभारम्भानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्र निर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापि जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्यप्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभाक्षेत्राणाम् उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य

0: गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटकनगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। एकादश दिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्य समारोहेण राष्ट्रमण्डल क्रीडा सम्पन्ना। भारतमेकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। एतेषु त्रयोदश स्वर्णपदकानि, सप्तदश रजतपदकानि, नव कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

गुड मॉर्निंग बनारस। हे बनारस, गुड वाला मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ट्यून किया है आपने अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस आज का दिन बहुत खास है। सुबह की पहली धूप, गंगा की लहर और सावन का पहला सोमवार। बनारस की गलियों से लेकर घाटों तक हर कोना सावन की खुशबू से महका हुआ है ना? जहां हर कोई भक्ति में डूबकर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहता है, तो आइए सावन के पहले सोमवार को भोलेनाथ के और करीब ले चलती हूँ आप सबको। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वाराणसी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इस शहर में कई चमत्कारिक शिवलिंग और प्राचीन मंदिर हैं। इसी काशी में भगवान शिव का अद्भुत और अनोखा देवलोक भी है। महादेव के इस चमत्कारिक देवलोक में ऐसा मंदिर जिसके अर्घ्य में एक नहीं बल्कि दो शिवलिंग विराजमान हैं, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। अर्घ्य में विराजे दो शिवलिंग वाले इस मंदिर की कहानी भी गजब है। काशी में एक ऐसा मंदिर भी है जहां बाबा विश्वनाथ अपने साले सारंग ऋषि के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि सावन में यहां एक बार दर्शन करने से पूरे साल भर का बाबा विश्वनाथ के दर्शन का फल प्राप्त होता है। यहां सारंग देव को गोंद चढ़ाकर लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सारंगनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ से पहले उनके साले की पूजा की जाती है, लेकिन क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं। लोक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर की शादी माता सती से हुई थी, जिनके पिता राजा दक्ष प्रजापति थे। माता सती के भाई सारंग ऋषि विवाह के दौरान अपने घर पर नहीं थे, वो विद्या ग्रहण करने गुरुकुल गए हुए थे। विवाह के बाद सारंग ऋषि जब घर लौटे तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि उन्होंने अन्याय किया है, एक राजकुमारी का विवाह ऐसे इंसान से कर दिया जिसके पास न घर है, न पहनने के लिए वस्त्र हैं, भोजन में धतूरे खाते हैं, मृगछाल पहनकर टहलते हैं, भस्म रमाते हैं। आपने राजकुमारी की शादी ऐसे आदमी से कर दी। उसके बाद सारंग ऋषि ने कहा कि उन्हें अपनी बहन के लिए काशी में कुछ महल बनवाने हैं, जिसके बाद वो बहुत सारा सोना और मुद्रा लेकर काशी आने लगे। बीच मार्ग में काशी से पहले ऋषि पतंग मार्ग पड़ा। यहाँ बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, वो वहीं पर थोड़ी देर विश्राम करने लगे। इस दौरान उन्हें नींद लग गई। तब उन्होंने सपने में देखा कि पूरी काशी सोने की है। इसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और बाबा विश्वनाथ से क्षमा याचना करते हुए उन्होंने यहीं पर कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनके शरीर से लावा फटने लगा। इसके बाद बाबा विश्वनाथ प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और तीन वरदान भी दिए। वो तीन वरदान थे, हमारे स्वरूप में तुम्हारी यहाँ पर पूजा होगी, और दूसरा, सावन के महीने में जो यहाँ पर एक दिन दर्शन करेगा उसे मेरे दर्शन करने का पूरे साल भर का फल प्राप्त होगा, और तीसरा कि जो भी व्यक्ति सच्चे

मन से कुछ भी मांगेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ सावन भर यहीं पर अपने साले के साथ विराजते हैं। उनके साले का नाम सारंग ऋषि है। ये एक अनोखा मंदिर है। यहाँ पर एक साथ दो शिवलिंग है। पहले सारंग ऋषि की पूजा होती है, फिर बाबा विश्वनाथ। पूरे सावन भर में लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। खासकर सावन के हर सोमवार पर बाबा का दर्शन पूजन, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और प्रमुख तौर पर प्रसाद चढ़ाने और मन्नत की कामना के साथ आस्था का सावन काशी में पूरे महीने चरम पर रहता है। सावन में सोमवार को व्रत, पूजा, दर्शन ही नहीं बल्कि रुद्राभिषेक कराने वाले भक्तों की भीड़ भी काशी में उमड़ती है। तो बनारस, आप सब ये सावन का महीना पूरी भक्ति और आस्था के साथ मनाइए और सुनिए ये खूबसूरत सा ट्रैक सावन के पहले सोमवार पे। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस आज दिन है सोमवार और तारीख है 3 अगस्त। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है अपने शहर बनारस में खास। धर्म और आस्था की नगरी काशी में विश्व प्रसिद्ध रामनगर की ऐतिहासिक रामलीला की तैयारियों का शुभारंभ रविवार को प्रथम श्री गणेश पूजन के साथ हुआ। करीब 200 वर्ष पुरानी इस परंपरा के तहत गणेश पूजन के बाद रामलीला समिति से जुड़े पदाधिकारी और कलाकार आगामी 1 माह तक चलने वाले आयोजन की तैयारियों में पूरी तरह जुट गए। 25 सितंबर यानी कि अनंत चतुर्दशी से रामनगर में रामलीला के भव्य आयोजन का विधिवत शुभारंभ होगा। काशी नरेश के संरक्षण में आयोजित होने वाली रामनगर की रामलीला देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अनूठी परंपरा और प्रस्तुति शैली के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक आस्था, लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम मानी जाने वाली इस रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ा जाता है। रामनगर की रामलीला की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किसी एक मंच या सभागार तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरा रामनगर ही कई दिनों तक राम कथा की जीवंत भूमि में तब्दील हो जाता है। प्रथम श्री गणेश पूजन के साथ रामलीला की औपचारिक तैयारियों का श्री गणेश हो गया। इसके बाद लीला से जुड़े विभिन्न स्थलों की व्यवस्था, मंचों की तैयारी, कलाकारों के अभ्यास और अन्य आवश्यक कार्यों को गति दी जाएगी। जैसे जैसे रामलीला की तिथियां नजदीक आएंगी रामनगर का वातावरण भी पूरी तरह राममय होता जाएगा। 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन रामलीला का शुभारंभ होगा। इसके बाद करीब 1 महीने तक अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन, आदर्शों, संघर्षों और मर्यादा की कथा का मंचन किया जाएगा। अंतिम चरण में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साथ रामलीला का समापन होगा। रामनगर की रामलीला की सबसे खास बात इसकी पारंपरिक प्रस्तुति शैली है। ये रामलीला एक स्थान पर मंचित नहीं होती बल्कि रामनगर के करीब 5 से 10 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में बनाए गए लगभग 40 खुले लीला स्थलों पर अलग अलग प्रसंगों के रूप में आयोजित की जाती है। अयोध्या, जनकपुरी, चित्रकूट और लंका जैसे स्थानों के प्रतीकात्मक लीला स्थल तैयार किए जाते हैं। जैसे जैसे रामकथा आगे बढ़ती है श्रद्धालु और दर्शक भी एक लीला स्थल से दूसरे स्थल तक पहुंचकर प्रसंगों के साक्षी बनते हैं। इस दौरान ऐसा अनुभव होता है मानो पूरी रामनगरी ही रामायण कालीन परिवेश में बदल गई हो। रामनगर रामलीला की प्राचीन परंपरा आज भी काफी हद तक उसी स्वरूप में कायम है। आधुनिक तकनीक के दौर में भी यहाँ रामलीला के दौरान माइक और आधुनिक लाइटों का प्रयोग नहीं किया जाता। मशाल और पेट्रोमैक्स की रोशनी में कलाकार अपने संवाद ऊंची और स्पष्ट आवाज में बोलते हैं। यही पारंपरिक शैली रामनगर रामलीला को अन्य रामलीलाओं से अलग पहचान देती है। पात्रों की वेशभूषा, संवाद अदायगी, पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था और खुले मैदान में होने वाला मंचन दर्शकों को सदियों पुरानी रामकथा की परंपरा से जोड़ देता है। रामनगर रामलीला केवल स्थानीय धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि काशी की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रामलीला के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु, शोधकर्ता, पर्यटक और राम भक्त रामनगर पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों के लिए भी ये आयोजन साल भर का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव माना जाता है। रामलीला के दौरान रामनगर की गलियों, बाजारों और लीला स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। बच्चे, बुजुर्ग और युवा सब इस परंपरा

का हिस्सा बनते हैं। कई परिवार पीढ़ियों से रामलीला के विभिन्न प्रसंगों और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। 25 सितंबर से शुरू होने के बाद करीब एक महीने तक रामनगर का वातावरण पूरी तरह राममय रहेगा। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके वन गमन, सीता हरण, हनुमान जी की लंका यात्रा, लंका दहन, राम रावण युद्ध और अंत में श्री राम के अयोध्या लौटने और राज्याभिषेक तक के विभिन्न प्रसंगों को पारंपरिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। रामनगर की इस अनूठी रामलीला में केवल मंच पर कलाकार ही अभिनय नहीं करते, बल्कि हजारों दर्शक भी खुद को कथा का हिस्सा महसूस करते हैं। यही कारण है कि हर साल इसकी प्रतीक्षा देश दुनिया के राम भक्तों को रहती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में विकसित प्लाज्मा भौतिकी की नई वैज्ञानिक अवधारणा SWAR को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। इटली के फ्लोरेंस में आयोजित प्रतिष्ठित COSPAR 2026 सम्मेलन में 2 और 3 अगस्त को इस विषय पर 2 दिवसीय विशेष वैज्ञानिक सत्र आयोजित किया गया, जिसकी सह अध्यक्षता प्रोफेसर अभिषेक श्रीवास्तव और दक्षिण कोरिया के कोरिया एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर RY Kwon ने की। इस विशेष सत्र में भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, बेल्जियम, क्रोएशिया, नॉर्वे सहित कई देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष शोधकर्ताओं और युवा वैज्ञानिकों ने भाग लिया। सम्मेलन में प्लाज्मा भौतिकी के उस नए सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की जा रही थी जिसे प्रोफेसर अभिषेक श्रीवास्तव ने विकसित किया है। सिम्बोसिस ऑफ वेव्स एंड रीकनेक्शन का उद्देश्य ये समझना है कि प्लाज्मा में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है, उसका स्थानांतरण कैसे होता है और तापमान बढ़ने की प्रक्रिया किन वैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अवधारणा अंतरिक्ष विज्ञान के साथ साथ नियंत्रित फ्यूजन ऊर्जा, प्लाज्मा आधारित प्रयोगों और भविष्य की ऊर्जा तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रोफेसर श्रीवास्तव और उनकी शोध टीम इस विषय पर पहले ही कई महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित कर चुकी है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में स्थान मिला है। अब COSPAR 2026 में इस विषय पर आयोजित विशेष सत्र विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को नई गति देने का माध्यम बन रहा है। इस शोध अवधारणा का संक्षिप्त नाम स्वर रखा गया है। ये नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के स्वर से प्रेरित है और विज्ञान तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के समन्वय का प्रतीक माना जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिक सोच और सांस्कृतिक पहचान के इस अनूठे मेल ने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। इस उपलब्धि से न केवल IIT BHU बल्कि भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई प्रतिष्ठा और पहचान मिली है। तो अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर
2: कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
3: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
2: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
3: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
3: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाए

0: और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
0: शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का किया शुभारंभ, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। आज से शुरू हो रहा है राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र, कल अनुपूरक बजट पेश करेगी प्रदेश सरकार। भारत की अध्यक्षता में आज से लखनऊ में शुरू हो रही है ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक। और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने किए हैं व्यापक प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले छिपाना नहीं है।
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें।
2: प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुईं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बन सकता है और जन जागरूकता के माध्यम से नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए।

0: जा सकता है। लखनऊ के गुलजार उपवन में राजयोग प्रशिक्षण केंद्र ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी हिस्सा लिया। श्री सिंह ने कहा कि यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास है।
1: सरकार मानव बन सकती है, संसाधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन उपचारित निर्माण केवल कानून से नहीं होता, संस्कारों से होता है। और जब संस्कारों की बात आती है तो ब्रह्म कुमारी जी का योगदान संस्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म कुमारी ने दशकों से बिना किसी भेदभाव के समाज में शांति, आत्म जागृति, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक चेतना का दीप जलाया।
0: देश भर के लगभग 10,000 से अधिक स्थानों पर कल एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें माय भारत स्वयंसेवक, एनएसएस के वॉलंटियर्स, युवा क्लब, शिक्षण संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन शामिल हुए। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान कल प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में कल विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखने तथा स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने संबोधन में सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार सबके सहयोग से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू हो रही है। यह बैठक कल भी जारी रहेगी। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: NSO के प्रमुखों की बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। वहीं सांख्यिकी ट्रैक का विषय परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण की रखा गया है। इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाले आंकड़ों, नवाचार, प्रभावी डेटा प्रसार और जन केंद्रित सांख्यिकीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है, ताकि साक्ष्य आधारित, समावेशी और टिकाऊ विकास को मजबूती मिल सके। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुँच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए उस भ्रामक वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जंतर मंतर पर पुनः धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वायरल वीडियो पुराना है, जिसे भ्रामक संदर्भ के साथ साझा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज पवित्र सावन का पहला सोमवार है। इस अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: सावन के पहले सोमवार पर पवित्र नदियों से जल भरकर प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के माहौल में जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। उससे जुड़े मार्गों पर 289 CCTV कैमरों

0: साथ 44 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: हापुड़, चित्रकूट, अमरोहा, भदोही, बिजनौर और सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। संभल और अमरोहा में सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का किया शुभारंभ। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। आज से शुरू हो रहा है राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र। कल अनुपूरक बजट पेश करेगी प्रदेश सरकार। भारत की अध्यक्षता में आज से लखनऊ में शुरू हो रही है ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक। और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने किए हैं व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है ध्रुपद गायन। कलाकार हैं पंडित ऋत्विक सान्याल, राग है रामकली। पखावज पर आपके साथ हैं आदित्य दीप।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ध्रुपद गायन। कलाकार थे पंडित ऋत्विक सान्याल, राग था रामकली। पखावज पर आपके साथ संगत कर रहे थे आदित्य दीप। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के मीटर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। तत्पश्चात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर खबरनामा।

0: वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगत गुरु कृपाल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के

0: अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुँचेगी। यहाँ शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम करीब 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुशतरका खेलों की मेजबानी के हुकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल वसीले से आगाज किया। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत बनने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है कि मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पूरे एतमाद होना चाहिए और नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना चाहिए।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
0: मुनश्यात की रोकथाम से मुतालिक 100 हफ्ते की मूलगीर मुहिम के खाके का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने तफसील से बताया कि आने वाले हर इतवार को फन, सकाफत, खेल और ध्यान पर मबनी मखसूस सरगर्मियां मुनक़िद की जाएंगी ताकि नए शुरका की मुसलसल दिलचस्पी बरकरार रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते रहें। उन्होंने कहा कि आइंदा 100 इतवार नशे से पूरी तरह पाक भारत की समत में मुकम्मल तौर पर 100 मजबूत कदम बन जाएंगे।
1: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है, जिसके लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके में गुज़श्ता महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है। चुनाव कमीशन ने तीनों रियासतों में वोटों की गिनती के अमल को खुशअसलूबी से यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्रिक्स मुल्कों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के आदाद शुमार के कौमी दफातर एनएसओ के सरबराहान का इजलास आज से कल तक लखनऊ में भारत की सदारत में मुनक़िद होगा। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: भारत की ब्रिक्स सदारत मरकजी मौजू इस्तेहकाम, इख्तिरा, तआवुन और पायदारी की तश्कील से इबारत है। ब्रिक्स के आदाद शुमार के शोबे में भारत ने मेयारी आदाद शुमार तब्दीली का मुहर्रिक का मौजू इख्तियार किया है, जो आदाद शुमार के आला मेयार इख्तिरा, मालूमात की मौसर तरसील और अवाम पर मरकूज शुमारियाती निज़ाम के लिए भारत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। इस इजलास का मकसद ब्रिक्स के क़लीदी आदाद शुमार को मजीद मजबूत बनाना, कौमी शुमारियाती निज़ाम में इख्तिरा और असलाहत को फ़रोग देना, आदाद शुमार की इशात और आदाद शुमार तक रसाई को बेहतर बनाना, नीज माशी और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक आदाद शुमार को मजीद मुस्तहकम करना है। इसका मकसद आदाद शुमार से मुतालिक

0: शाम 4 बजे जुलूस निकाले जाने से कबल महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जुलूस रामघाट पहुंचने से पहले गुदरी चौक बख्शी बाजार से होकर गुजरेगा, जहां भगवान महाकाल को शिप्रा दरिया के पवित्र पानी के साथ अभिषेक और आरती पेश की जाएगी। ये जुलूस शाम मंदिर लौट आएगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार जजायर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरकी भारत के बाज इलाकों में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने साहिली आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान और निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम के साथ ही अहमदाबाद में 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की उल्टी गिनती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इख्तितामी तकरीब में भारत ने कदीम फलसफे, जदीद फनून और अपनी शानदार सकाफती रिवायात का हसीन इम्तिजाज पेश करते हुए दुनिया भर के मुल्कों को अहमदाबाद आने की पुरजोश दावत दी। इसी तकरीब के जरिए 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों के 7 साल एडिशन की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज भी हो गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं के नुमाइंदे प्रिंस एडवर्ड ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम का बाज़ाब्ता ऐलान किया और तमाम शरीक ममालिक और खित्तों के खिलाड़ियों को अहमदाबाद आने की दावत दी। 11 रोज तक जारी रहने वाले सख्त मुकाबलों के बाद भारतीय खिलाड़ी 39 तमगों के साथ ग्लासगो से वतन वापस लौटे। नई दिल्ली से मुइनुद्दीन खान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाइब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों की सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुनशियात के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करना चाहिए। मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का डोनाल्ड ट्रंप से राबता, खित्ते में जारी कशीदगी रोकने के लिए मुजाकरात पर दिया जोर, इस खबर को इनकलाब ने सफे अव्वल पर शाये किया है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में हुए जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती आज, सभी तैयारियां मुकम्मल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। रोजनामा इंकलाब की खबर है, उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास आज से, कई अहम बिलों को पेश किए जाने की उम्मीद।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए। और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो

0: हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। मधुरिमा कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658,
7: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

மதுரிமா, த சவுண்ட் ஆஃப் மெலோடி. மதுரிமா. प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को आपकी दोस्त सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ कभी पुराने नहीं पड़ते, पीढ़ियां बदलती रहती हैं, लेकिन वे गीत अपनी ताजगी, अपनी मिठास हर दौर में बनाए रखते हैं। ऐसे अमर गीतों के पीछे जिन शब्द साधकों का मौन तप छिपा होता है, उन्हीं में से एक प्रभावशाली और सम्मानित नाम है शकील बदायूनी साहब का। आज की मधुरिमा उन्हीं की स्मृतियों को समर्पित है।

शकील बदायूनी साहब का जन्म 3 अगस्त यानी आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें साहित्यिक वातावरण मिला। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू का गंभीर अध्ययन किया और बहुत कम आयु में ही शायरी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली।

मुशायरों में जब शकील बदायूनी साहब अपनी गज़लें सुनाते थे तो श्रोता केवल उनके भाषा कौशल पर ही नहीं बल्कि उनकी सादगी और भावों की गहराई पर भी मुग्ध हो जाते थे। समय ने करवट ली और उनका सफ़र मुंबई तक जा पहुंचा और यहीं उनकी मुलाकात उस महान संगीतकार से हुई जिसके साथ उनकी जोड़ी भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अमर हो गई।

नौशाद साहब का संगीत और शकील बदायूनी के शब्द, ये केवल एक संगीतकार और गीतकार का साथ नहीं था, बल्कि दो सृजनशील आत्माओं का एक ऐसा मिलन था जिसने हिंदी सिनेमा को अनगिनत अमर गीत दिए। बैजू बावरा, मुगले आजम, मदर इंडिया, कोहिनूर, मेरे महबूब, चौदहवीं का चांद, ऐसी न जाने कितनी फिल्मों में इस जोड़ी ने ऐसे गीत रचे जो आज भी संगीत प्रेमियों की धरोहर बने हुए हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और

0: राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: दोस्तों, शकील बदायूनी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने कभी शब्दों की कठिनाई से प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। वे सरल शब्दों में भी गहरे भाव कहने की अद्भुत क्षमता रखते थे। उनकी लेखनी में प्रेम भी है, विरह भी, भक्ति भी है और जीवन दर्शन भी।

0: दोस्तों, शकील बदायूनी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने कभी शब्दों की कठिनाई से प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। वे सरल शब्दों में भी गहरे भाव कहने की अद्भुत क्षमता रखते थे। उनकी लेखनी में प्रेम भी है, विरह भी, भक्ति भी है और जीवन दर्शन भी।
1: उठने वाले तेरा जवाब।

सन 1960 इसी साल प्रदर्शित फिल्म 14वीं का चांद ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा शीर्षक गीत दिया जिसे भारतीय फिल्म संगीत के सबसे सुंदर प्रेम गीतों में गिना जा सकता है। इस गीत में शकील बदायूनी ने उपमाओं का एक ऐसा सुंदर संसार रचा कि हर पंक्ति ही कविता बन गई। संगीतकार नौशाद की मधुर धुन और मोहम्मद रफी की भावपूर्ण आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया।

भारतीय फिल्म संगीत का स्वर्णिम अध्याय जब जब स्मरण किया जाएगा, शकील बदायूनी का नाम आदर और कृतज्ञता के साथ लिया जाएगा। उनके शब्दों ने सुरों को अर्थ दिया और उनके सुरों ने उनके शब्दों को अमरता।

गीत समाप्त हो जाते हैं लेकिन उनकी गूंज बनी रहती है। स्वर थम जाते हैं लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे साथ चलती रहती हैं। शकील बदायूनी के शब्द भी ऐसी ही अमर गूंज हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भी अपने अल्फाजों की खुशबू से महकाते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की मधुरिमा अब संपन्न हुई। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से ज़रूर अवगत कराइए। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुषमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है मीडियम वेव के मीटर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। जिले की हलचल आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी देर में।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
1: नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की ग्रामीण महिलाओं के हौसले और आत्मनिर्भर

0: कार्यकर्ता की जमकर सराहना की। बिजनौर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त सहयोग से विदुर प्रेरणा ब्रांड की शुरुआत की गई है। इस स्थानीय ब्रांड ने जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। इस पहल के तहत जिले के स्वयं सहायता समूहों की लगभग 2,40,000 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़कर काम कर रही हैं। इन समूहों द्वारा उच्च गुणवत्ता के अचार, पापड़, साबुन, झाड़ू, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक वाहन भी उत्पाद किए जा रहे हैं। विद्युत स्टोर के माध्यम से इन उत्पादों को देशव्यापी बाजार मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें बिजनौर के स्थानीय उत्पादों को वोकल फॉर लोकल के तहत नई पहचान मिली है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया,
1: हमारी जो एसएचजी की महिलाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो या हर्बल टी प्रोडक्शन का कार्य कर रही हैं, उनके लिए बहुत उत्साहवर्धक है। साथ ही साथ नेशनल लेवल पर इसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो इनकी प्रोडक्शन यूनिट है उसको भी विस्तार देने की सोच रहे हैं। और उसके साथ ही साथ इसको हम पूरे जनपद में कई जो हमारी CLF है उसके अंतर्गत इस यूनिट्स को बढ़ावा देंगे कि पूरे जनपद में कई यूनिट्स में इसका प्रोडक्शन हो डिमांड के अनुसार। कैसे एक अच्छा प्रोडक्शन यूनिट हर ब्लॉक में कम से कम एक तैयार कर पाए, इसी पर विचार चल रहा है।
0: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी किए गए नवीनतम आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। इन आंकड़ों के अनुसार आयरन फॉलिक एसिड सिरप सप्लीमेंट कवरेज में बिजनौर जनपद ने पूरे प्रदेश में 85% कवरेज के साथ पहला स्थान हासिल किया है। बिजनौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में गंभीर लापरवाही बरतने पर मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक की 27 आशा कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति की संस्तुति की गई है। वहीं 5 आशा संगनियों का मानदेय रोकते हुए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में किसी भी स्तर पर अनदेखी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद बिजनौर में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और वर्षा जल को सहेजने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़े महाअभियान की शुरुआत की है। कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जिले के सभी 11 विकास खंडों में एक साथ 157 तालाबों में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। बिजनौर में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी बचाने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। जिले में अब तक 409 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है और कुल 562 भूमियों को चिन्हित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि तालाब भूगर्भ जल को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा अभियान चलाया गया। जिले में बड़े पैमाने पर बृहद पौधारोपण किया जा रहा है। बिजनौर जिले में पर्यावरण को निर्मल बनाने के संकल्प के साथ एक दिन में 75 लाख पौधे रोपे गए। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत श्रमिकों द्वारा इस अभियान के लिए 75 लाख से अधिक गड्ढों की खुदाई पहले ही पूरी कर ली गई थी। जिले भर में शिक्षक से लेकर श्रमिकों और आम नागरिकों ने इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिजनौर की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने करीब 14 साल पुराने बहुचर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले में सभी 7 आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला दिसंबर 2012 का है, जब बिजनौर में एक समारोह के दौरान 18 वर्षीय प्रबल अग्रवाल की बेनामी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और साक्षियों को छुपाने के लिए उनके शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया था। 13.5 साल चली इस अदालती कार्रवाई के दौरान 305 पेशियों हुई और 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है, जिसका 90% हिस्सा पीड़ित को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौमे अशूरा का पर्व शांतिपूर्वक और अकीकत के साथ संपन्न हो गया है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न कस्बों और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक ताजिए और मातमी जुलूस निकाले गए। मुख्य जुलूस बिजनौर शहर के मुख्य बाजारों और पारंपरिक रास्तों से होता हुआ गुजरा, जिसमें अकीदतमंदों ने काले लिबास पहनकर हजरत इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों की शहादत को याद किया। सुरक्षा और शांति व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद नजर आए। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और PSC की तैनाती की गई थी। जुलूस के सुचारू संचालन के लिए शहर में ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया था।
2: बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
3: श्रावस्ती में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जनपद के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन भिनगा पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद की अगुवाई कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात ऑफिसर्स कॉलोनी ग्राउंड राजकीय पुस्तकालय भिनगा के समीप पहुंचकर वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, विधायक रामफेरन पांडे ने पीपल, पाकड़ व बरगद का पौधारोपण कर किया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने पीपल का और मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने

0: आम के पौधे का रोपण कर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है।
1: बृहत वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का यह तीसरा चरण है, तो माँ के नाम पर पौधा लगाने का ध्येय हमारा है कि जिस तरह से माँ हमारी पूजनीय है, स्तुतीय है, उसी तरह से हम उसके नाम पर पौधा लगाएंगे। तो पौधा लगाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पौधे को बचा करके और आगे पुष्पित पलित करने तक हम उसको ले जाएंगे।
0: श्रावस्ती जनपद में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित इलाज मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना कैशलेस उपचार योजना PM राहत प्रभावी रूप से लागू की गयी, जिसकी समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कच्छ में जिलाधिकारी अन्नापूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद का पहला घंटा यानी गोल्डन आवर मरीज की जान बचाने के लिए बेहद अहम है। इस योजना के तहत बिना किसी स्वास्थ्य बीमा के भी घायल व्यक्ति को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नागरिकों से गुड सैमेट्रिन बनकर घायलों की संकोच मदद करने हेतु अपील की। उन्होंने कहा कि इसके लिए मददगारों को कानूनी सुरक्षा के साथ राहवीर योजना के तहत 25,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के श्रावस्ती पहुंचते ही BJP कार्यकर्ताओं और स्थानीय विधायक ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया। CM योगी ने श्रावस्ती को 83 परियोजनाओं की सौगात दी, जिसकी कुल लागत 396 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी सरकार ने 9 लाख नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों में कभी श्रावस्ती भी गिना जाता था, लेकिन आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP जैसी योजनाओं से श्रावस्ती विकास के पायदान पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: विकास के पायदान पर आगे बढ़ने के लिए श्रावस्ती की इस लंबी छलांग के लिए मैं श्रावस्ती को बधाई भी देता हूँ।
0: श्रावस्ती में जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन श्रावस्ती VK गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से दिव्यांग रोजगार अभियान 3.0 का 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक अभियान चलाया जाएगा। दिव्यांग रोजगार अभियान के अंतर्गत एक सप्ताह के अंदर जनपद स्तर पर संचालित औद्योगिक इकाई एवं अन्य अधिष्ठानों की रिक्तियों की सपेक्षा जनपद व जनपद के बाहर दिव्यांग को सेवायोजित कराया जाएगा। जो भी दिव्यांग रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्यक्रम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिंगा श्रावस्ती से संपर्क कर सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार की योजना से जुड़ सकते हैं। श्रावस्ती जनपद में बाढ़ से प्रभावित खतरे को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा बलों का व्यवस्थापन किया जा चुका है। राहत उपयुक्त कार्यालय से प्राप्त निर्देशक विक्रम अपर जिलाधिकारी ललित कुमार ने SDRF और फ्लड PSC के जवानों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। अपर जिलाधिकारी ललित कुमार ने बताया कि जनपद में एक टीम SDRF तथा 1.5 सेक्शन फ्लड PSC प्रशिक्षित अनुभवी जवान बाढ़ आपदा बचाव के लिए तैनात किए गए हैं। इनके पास 6 मोटरबोट एवं अन्य बचाव उपकरण मौजूद हैं। जनपद वासियों को बाढ़ के समय रेस्क्यू करने के लिए पूर्व वर्ष की भांति नावों का भी प्रबंध किया जा रहा है। जनपद में गोताखोर चिन्हित हैं, 128 नाविक और 68 नाव गांव में उपलब्ध की गई हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार परिस्थिति के अनुरूप कार्य किया जा सकेगा।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:25 होने को हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना।

थाना चंदवक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार चंदन यादव, पिता का नाम स्वर्गीय सकलू यादव, निवासी

पारा पाटी थाना चंदवक जनपद जौनपुर। ये दिनांक 1 मई सन 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 35 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, इकहरा बदन रंग सांवला और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें टी शर्ट और लोअर में देखा गया था। चंदन यादव के बारे में कोई भी सूचना यदि प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को सूचित करें।

थाना मड़िया हूँ, जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार। मोनी, पिता का नाम उमा शंकर, निवासी ग्राम खैरुद्दीनगंज, थाना मड़िया हूँ, जनपद जौनपुर। ये दिनांक 8 जून सन 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 34 वर्ष, कद 5 फीट, इकहरा बदन रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। लापता होने के समय ये पीले रंग की साड़ी और गुलाबी ब्लाउज पहने थी। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को सूचित करें। थाना मड़िया हूँ, जनपद जौनपुर से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार। सुनीता देवी, पति का नाम देवचंद, निवासी ग्राम जगन्नाथपुर, थाना मड़िया हूँ, जनपद जौनपुर। ये दिनांक 11 जून सन 2026 से लापता हैं। सुनीता देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 34 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, इकहरा बदन रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें हरे रंग की साड़ी में देखा गया था। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को सूचित करें। थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार। मोनी देवी, पिता का नाम

थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार खुशबू पिता का नाम संतोष निवासी देवचंदपुर थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर ये दिनांक 18 मई सन 2026 से लापता हैं। खुशबू के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 28 वर्ष कद लगभग 5 फीट 2 इंच इकहरा बदन रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। खुशबू के बारे में कोई भी जानकारी यदि प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

मीडिया वेव के मीटर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं बल्कि भरोसे, अपनापन और एहसास से

0: बनता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो खुशी के साथ साथ गम के लम्हात में भी आपके शाना बशाना नजर आए। याद रखिए, दोस्ती में न दौलत की अहमियत होती है और ना ही शोहरत की, यहाँ तो सिर्फ दिलों के रिश्ते मायने रखते हैं। लिहाजा आज का उर्दू प्रोग्राम दोस्ती के नाम। आज के उर्दू प्रोग्राम में हमने एक नज़मिया महफिल का इनेकाद किया है जिसका उनवान है दोस्ती तुझे सलाम। इस महफिल में शिरकत करने वाले शोरा इकराम हैं मोहतरम जनाब हाफिज महमूद आबादी साहब, मोहतरम जनाब असगर अली बिलग्रामी साहब और मोहतरम जनाब इशरत सगीर साहब। आप तीनों का हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। अब आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए मैं मोहतरम जनाब असगर अली बिलग्रामी साहब को इस शेर से दावत देता हूँ कि पहचान दोस्तों की है मुश्किल बहुत यहाँ, है मेहरबा के रूप में कातिल बहुत यहाँ। बन के रफीक फेंक जो देते हैं मौज में, है उस नए मिजाज के साहिल बहुत यहाँ। डॉक्टर एजाज रसूल साहब के शेर के साथ मैं मोहतरम असगर अली बिलग्रामी साहब से को दावत देता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें।
1: बहुत शुक्रिया, नज्म दोस्ती का मतला हाजिर कर रहा हूँ।
0: जी अता करें मोहतरम।
1: हाय।

0: क्या कहने भाई, वाह वाह वाह,
1: दोस्तों दोस्त बिना है अबस
2: अबस जिंदगी।
0: बहुत खूब
2: भाई, बहुत खूब।
1: और ये भी बंद देखें
2: जी।

0: वाह
1: इसके आंचल में है कि कदर दिल
2: है जवाब नहीं भाई वाह
1: है अबस जिंदगी।
2: बहुत
1: और ये आखिरी बंद हाजिर कर रहा हूँ।
0: जी जी अता करें।

0: बहुत ही
1: दोस्ती काम आती है असगर सदा,
0: यकीनन यकीनन
1: रंग खुशियों के लाती है ये बेबहा,
0: बेशक बेशक।

0: बहुत खूब भाई, वाह वाह वाह,
1: है अधूरी।
2: बहुत खूब बहुत खूब। असगर भाई, क्या आपने लास्ट में शेर पढ़ दिया, बहुत ही खूब। सामिन, खूबसूरत अशार और बेहतरीन लबो लहजे में ये थे जनाब असगर अली बिलग्रामी साहब, जिनके अशार से आप हजरात लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अब आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ, जिनका ताल्लुक सरजमीन शाहजहांपुर से है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब इशरत सगीर साहब से है। आपके लिए इस शेर का नजराना पेश करता हूँ कि जिक्र मेरा आएगा महफिल में जब जब दोस्तों, जिक्र मेरा आएगा महफिल में जब जब दोस्तों, रो पड़ेंगे याद करके यार सब यारी मेरी। मोहतरम इशरत सगीर साहब माइक पर।
3: बहुत शुक्रिया शम्सुल आरफीन साहब। एक रुबाई से आगाज करता हूँ
2: जी, अदा करें
3: कि वो जिनके लिए दिल में मकां होते हैं,
2: वो जिनके लिए दिल में मकां होते हैं,
3: मुलाहिज़ा कीजिएगा
2: जी, अदा करें,
3: वो जिनके लिए दिल में मकां होते हैं, रग रग में लहू बन के रवां होते हैं। वो जिनके लिए दिल में मकां होते हैं, रग रग में लहू बन के रवां होते हैं, और होते हैं ताल्लुकात सबसे इशरत, होते हैं ताल्लुकात सबसे इशरत, कुछ दोस्त मगर हासिले जहाँ होते हैं, होते हैं ताल्लुकात सबसे। बहुत शुक्रिया। एक रुबाई और मुलाहिज़ा कीजिएगा, हर वक्त रहें साथ में हों ऐसे दोस्त,
2: वाह,
3: हर वक्त रहें साथ में
2: हों ऐसे दोस्त,
3: हों ऐसे दोस्त, आसान कहाँ मिलना वफा वाले दोस्त।
2: यकीनन भाई, बहुत ही खूब।
3: आसान कहाँ मिलना
2: वफा वाले दोस्त,
3: और दुश्मन ये जमाना नहीं होता उसका,
2: दुश्मन ये जमाना नहीं होता उसका,
3: हैं पास में जिस शख्स के कुछ अच्छे दोस्त,
2: अच्छे दोस्त, वाह वाह वाह।
3: और एक नज्म मुलाहिज़ा कीजिए कि तलातुम में हमको किनारा न मिलता,
2: तलातुम में हमको किनारा न मिलता,
3: अगर दोस्तों का सहारा न मिलता,
0: क्या कहने भाई,
3: तलातुम में हमको किनारा न मिलता,
0: अगर दोस्तों का सहारा न मिलता,
3: उसे लुत्फ आता हो क्या जिंदगी का, कि जिस पर खुला हो ना दर दोस्ती, खजा को बहारों में तब्दील कर दे, वो है दोस्त सहरा को जो झील कर दे, और बने एक दूजे के सुख दुख के साथी,
2: नियम दोस्ती।

0: का यह है कायनाती।
1: अरे वाह, अरे वाह।
0: मलाल एक के दिल में पैदा अगर हो, मलाल एक के दिल में पैदा अगर हो, तो फिर दूसरे को भी उसकी खबर हो।
2: वाह, बिल्कुल सही बात है।
0: फिर दूसरे को भी उसकी खबर हो, तदारुक हरे गम का पल भर में कर दे।
2: तदारुक गम का पल भर,
0: हरे गम का पल भर में कर दे, परेशान दिल शादमानी से भर दे। तदारुक हर गम का पल भर में कर दे, परेशान दिल शादमानी से भर दे, जो हासिल अगर एक को कुछ खुशी हो, तो फिर दूसरे का बहुत शाद जी हो। हासिल अगर एक को कुछ खुशी हो, तो फिर दूसरे का बहुत शाद जी हो। हसद बुग्ज व नफरत न घर करने पाए,
2: हसद बुग्ज व नफरत न घर,
0: हसद बुग्ज व नफरत न घर करने पाए, और खुशी में दिए देसी घी के जलाए।
1: अरे वाह, अरे वाह।
0: और सभी दोस्त बाहम करें दस्तगीरी,
2: सभी दोस्त बाहम करें दस्तगीरी,
0: सभी दोस्त बाहम करें दस्तगीरी, नहाइल हो इसमें गरीबी अमीरी।
2: बहुत बढ़िया भाई, बहुत।
0: सभी दोस्त बाहम करें दस्तगीरी,
1: नहाइल अमीरी गरीबी,
0: गरीबी अमीरी, और मदद से न मुंह अपना कोई भी फेरे, जरूरत पे पहुँचे अंधेरे सवेरे। जरूरत पे पहुँचे अंधेरे सवेरे। और अभी असगर साहब ने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का
2: जी, जी,
0: तो
2: वो जरूर
0: मिसाल दी थी। इत्तफाक से ऐसा ही बंद मैंने भी नज्म कर दिया है कि जरूरत पे पहुँचे अंधेरे सवेरे, और यह है दोस्ती जैसे नेमत खुदा की।
2: बेशक
1: यह है दोस्ती जैसे,
0: है दोस्ती जैसे नेमत खुदा की। खलीली कलीमी भी तो दोस्ती थी, खलीली कलीमी भी तो दोस्ती थी, कि मेराज था दोस्ती का ही तोहफा,
2: कि मेराज
0: था दोस्ती का ही तोहफा, जो था फासला काबो कौसैन अदना।
1: अरे वाह,
0: रफीके रसूले खुदा सबसे बेहतर। रफीके रसूले खुदा सबसे बेहतर, वो सिद्दीके अकबर, वो सिद्दीके। फिर इस हिंद में ऐसी प्यारी मिसालें, फिर इस हिंद में ऐसी प्यारी मिसालें, सुदामा को काना गले से लगा
2: ले।
0: सिंध में ऐसी प्यारी मिसालें,
2: बहुत खूब।
0: सुदामा को काना गले से लगा लें, और कहीं राम सुग्रीव की दोस्ती है।
2: बहुत बढ़िया, क्या
0: कहीं राम सुग्रीव की दोस्ती है, कि जिसकी महक हिंद में बस रही है।
2: बहुत खूब,
0: कहीं राम सुग्रीव की दोस्ती है, कि जिसकी महक हिंद में बस रही है, और यकीनन वो इंसान भी तो जुदा हैं।
2: बेशक
0: खुदा के मुकर्रब हैं जो औलिया हैं।
2: बहुत शुक्रिया, बहुत खूब।
0: सो इशरत मेरी बात भी मुस्तनद है,
1: क्या
0: सो इशरत मेरी बात भी मुस्तनद है, खुदा दोस्तों की तो करता मदद है।
2: बेशक बेशक,
0: खुदा दोस्तों की तो करता मदद।
2: सामिन, ये थे जनाब इशरत सगीर साहब, जिनके कलाम से आप हजरात महजूज हो रहे थे। अब इशरत सगीर साहब के बाद मैं इस प्रोग्राम के आखिर में मुअद्दबाना इल्तमास करता हूँ मोहतरम जनाब हाफिज मसूद महमूदाबादी साहब को, कि वो अपने कलाम से इस महफिल को बुलंदी बख्शें। कबल इससे कि मुझे हबीब नदीम के चार मिसरे याद आ रहे हैं, कि तुझको चाहत की कसम यूं न भुलाना मुझको, अपनी यादों की गुलिस्ता में सजाना मुझको, और दुश्मनी यूं तो सभी लोग किया करते हैं, तू पड़ोसी है मेरा, दोस्त बनाना मुझको। हाफिज मसूद महमूदाबादी साहब माइक पर।
1: बहुत शुक्रिया, चार मिसरे समाप्त
2: जी, मोहतरम हाजिर करें आप।
1: राह दुश्वार भी आसान बना देती है,
2: राह दुश्वार भी आसान बना
1: देती है।

0: बहुत शुक्रिया।
1: चार मिसरे भी अर्ज हैं
2: जी। जी
1: दुनिया में बेमिसाल हमारी है दोस्ती,
2: दुनिया में बेमिसाल हमारी है दोस्ती।
1: बतौर खातिर दुनिया में बेमिसाल हमारी है दोस्ती, जहाँ से अजीज हमको तुम्हारी है दोस्ती,
2: जहाँ से अजीज हमको तुम्हारी है।
1: फिर सो हवस के दौर में मसूद शुक्र है, मकरो दगा फरेब से आरी है दोस्ती।
2: वाह वाह, तभी तो दोस्ती नाम पड़ा है भाई। बहुत खूब
1: मोहब्बत। चार मिसरे और
2: जी जी जी अता करें।
1: तेरी फुरकत में अश्क बार न हो,
2: तेरी फुरकत में अश्क बार न हो।

راہِ ہستی میں میرا ساتھ نبھانا ہے تو۔

0: देखो ये भी शेर अर्ज है।
1: जी जी जी
0: कान दीवारों के होते हैं सुना है मैंने,
1: कान दीवारों के होते

0: दोस्त। शेर आखिर भी अर्ज़ है
1: जी जी ऐसा करें
0: कि मुनहसिर जिसके करम पर है ये सांसों का निजाम,
1: मुनहसिर
0: जिसके करम पर है ये सांसों का निजाम, मुनहसिर जिसके करम पर है ये सांसों का निजाम, उसके दर पर ही सदा सर को झुकाना है दोस्त।
1: बहुत खूबसूरत शेर है,
0: दर पर ही सदा सर को झुकाना है दोस्त। मक्ता भी अर्ज है मोहब्बत से समाप्त फरमाए, मैं भी इंसान हूँ खता मुझसे भी हो सकती है।

अभी आप सुन रहे थे कांवर गीत, स्वर था सूबेदार यादव और साथियों का। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये

मेरा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ, फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा।

0: हमने तो शराबत से अपनी आजादी ली, ऐसा सारी दुनिया कहती है। तब मैं कहूँगा कि जो शराफत से चीज मिली है उस चीज को रखने के लिए भी हमारी शरीफ होना चाहिए।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

जानकार कार्यक्रम लेकर हाजिर है आज आपकी दोस्त सुषमा। प्रोग्राम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। मान्यता है कि श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष फलदायी होता है। इसलिए आज इस पावन अवसर पर भक्तजन गंगा जल, बिल्व पत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर अपने आराध्य से सुख, शांति और मंगल की कामना करते हैं। और यदि यह प्रथम सोमवार काशी की पावन धरती पर हो तो उसकी छटा और भी निराली हो जाती है। आइए शिव की कृपा, काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रावण मास की पावनता को हृदय में बसाते हुए अपने संगीत में यात्रा का शुभारंभ करें।

श्रोताओं, आज सावन का प्रथम सोमवार है। आज बाबा विश्वनाथ धाम और तमाम शिवालयों की ओर जाने वाले मार्ग श्रद्धालुओं से भर उठते हैं। गंगा तट पर स्नान और पूजा अर्चना के बाद हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए भक्त विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण काशी श्रद्धा के एक ही सूत्र में बंध गई हो।

भारतीय संस्कृति में यदि किसी एक आराध्य का स्वरूप सबसे अधिक व्यापक, सबसे अधिक उदार और सबसे अधिक लोक मंगलकारी है तो वो है भगवान शिव का। वे कैलाश के योगी भी हैं और काशी के विश्वनाथ भी। वे समाधि में लीन महायोगी हैं तो सृष्टि के स्पंदन को गति देने वाले नटराज भी। वे गले में विष धारण करने वाले नीलकंठ हैं तो भक्तों पर सहज कृपा बरसाने वाले भोलेनाथ भी।

काशी का सावन पूरे भारत के सावन से अलग है। यहाँ केवल व्रत और पूजा नहीं होती, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक संसार दिखाई देता है। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक, गंगा के घाट, कजरी की महफिलें, बनारस की गलियाँ और हर हर महादेव का गूंजता स्वर। कहते हैं काशी में सावन केवल कैलेंडर पर नहीं आता, वो तो हवा में उतरता है।

काशी में सुबह गंगा की लहरों पर झिलमिलाती सूरज की किरणें, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बढ़ते श्रद्धालुओं की आस्था, गलियों में गूंजता हर हर महादेव का स्वर और कहीं दूर से सुनाई देती कजरी, यही है काशी का सावन।

श्रावण मास में काशी का स्वरूप सचमुच अद्भुत हो उठता है। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु इस पावन नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक की अभिलाषा लेकर पहुंचते हैं। कोई गंगा जल अर्पित करने आता है, कोई मनोकामना लेकर, तो कोई केवल उस दिव्य अनुभूति को अपने भीतर समेट लेने के लिए जो काशी की पहचान है।

काशी की यही विशेषता है। यहाँ आने वाला हर यात्री, चाहे वो किसी भी प्रदेश, किसी भी भाषा या किसी भी देश का हो, इस नगरी की आध्यात्मिक ऊर्जा से स्वयं को जुड़ा हुआ अनुभव करता है। गंगा के तट पर बैठकर बहती धारा को निहारते हुए, मंदिरों की घंटियों की अनुगूंज सुनते हुए और बाबा विश्वनाथ के दरबार में नतमस्तक होकर उसके मन में एक अनकही शांति उतर आती है। यही वो अदृश्य आकर्षण है जिसने सदियों से काशी को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है।

सावन के प्रथम सोमवार पर आज की ये संगीतमय यात्रा भगवान शिव को समर्पित है। भारतीय संगीत की परंपरा में शिव केवल आराध्य नहीं है, वे स्वयं नाद के अधिष्ठाता माने गए हैं। ऐसा विश्वास है कि डमरू की दिव्य ध्वनि से सृष्टि के प्रथम स्वर प्रकट हुए। संगीत, नृत्य और लय, तीनों की चेतना शिव के नटराज स्वरूप में एकाकार हो जाती है। जब तांडव होता है तो केवल नृत्य नहीं होता, समय की गति भी उसमें समाहित हो जाती है। और जब शिव ध्यानमग्न होते हैं तो समस्त ब्रह्मांड मौन होकर उस परम शांति का अनुभव करता है।

काशी की इस पावन धरती पर तो शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि घाटों की आरती में, शहनाई की तानों में, गजरी की मिठास में और जन जन की आस्था में बसते हैं। इसी श्रद्धा के साथ जारी है हमारी ये संगीतमय यात्रा।

प्यारे दोस्तों, आप सभी को श्रावण मास के प्रथम सोमवार की मंगलमयी शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव का प्रकाश बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ हमारा आज का ये झनकार कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। दीजिए अनुमति अपनी दोस्त सुषमा को। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़। वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। और आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार और सावन मास के पहले सोमवार की बहुत शुभकामनाएं। तो इस कार्यक्रम में हम आपके द्वारा भेजे गए पत्रों को शामिल करते हैं। पत्रों की संख्या थोड़ी सी सीमित हो रही है, फिर भी हमने काफी मेहनत करके बहुत से पत्र ढूंढ लिए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करेंगे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है पंडित नरेंद्र शर्मा।

सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जी हाँ, शिव की आराधना पूजा का आज का दिन समर्पित है शिव को ही। तो सावन का जो पहला सोमवार होता है और हम सबके लिए खुशियों का त्यौहार होता है। तो इस गीत को हमने लिया था सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से। उसके लिए हमें पत्र भेजा था आप सभी श्रोताओं ने, शिवाजी चौक कटनी मध्य प्रदेश से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संजीव वर्मा, रज्जन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, प्रकाश सोनी। यहीं से हैं मनोज नामदेव, सुनील जैन, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू सोना मोना, हनी यस सोम्यार, इनके मम्मी पापा। मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा आन्या अनाया, नेहा सागर, गुम्बर, हिमांशु गुगलानी, इम्मू कुरैशी और सुधीर वनूथन। पीएमसीटी बनारस से ये पत्र भेजा है आजम कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह, छोटी पेरी वाराणसी से काशी प्रसाद सिंह, मदन कुमारी, राधा रानी वर्मा, पुष्पा ताम्रकार, विजय लक्ष्मी, कुसुमलता सिंह, हर्षित पुलकित और इनकी दादी जी। नई सड़क वाराणसी से शाहिद सद्दू, मलका मुमताज, इनशा इली तारिक, कोदई चौकी देहलू गली वाराणसी से बेबी आलम, नफीस अनवर भाई जरीवाला, कपड़ा मार्केट से गुड्डू शमा रूमा, इशरा शालू, आमिर और सारिक। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। कार्यक्रम में अगला गीत अब आप सुनेंगे आई मिलन की रात फिल्म से। और दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है ना, तो सावन के महीने में हम सावन का गीत नहीं सुनवाएंगे तो और क्या ही सुनवाएंगे भाई। साल में एक ही महीना तो आता है सावन का, तो हम सावन के महीने में सावन के गीत ना सुनवाएं तो ये तो गलत होगा ना। तो हम भी कुछ सावन के गीत ही सुन के लाए हैं आज आपके लिए, आपकी फरमाइश पे। आप लोगों ने फरमाइश भी भेजी है सावन के गीतों की। लाजमी है कि सावन का महीना चल रहा है तो निश्चित तौर पर हम सभी सावन में डूबेंगे, सावन में उतराएंगे और सावन के गीत सुनेंगे और सुनाएंगे। बिल्कुल। तो और सावन हो रही है, बारिश हो रही है, तो आज बारिश भी हमारी तरफ तो हो रही है। रात में भी काफ़ी बारिश हुई, सुबह भी जब मैं आ रहा था तो हल्की सी फुहार पड़ रही थी, थोड़ा भींगना भी पड़ा, लेकिन मज़ा भी तो आया। और आई मिलन की रात फिल्म का गीत आप सुनेंगे और इसके लिए हमें खत भेजा है आप सभी श्रोताओं ने। असालतपुरा मुरादाबाद से फरीद अंसारी, बलाल अंसारी, जुबैर अंसारी, करुला मुरादाबाद से मेराज अंसारी, वसीम अंसारी, डॉक्टर अख्तर हुसैन। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस टी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी। ये पत्र भेजा है वलितपुर मढ़ा मऊ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि अनुराग दीप। करौता लोहता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोना प्रजापति, राहुल प्रजापति। जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश ईशागढ़ से विनोद नारायण, कुशवाह नारायण सिंह, मनकोबाई, निशा, प्रियंका, ईशिका, कपिल, ब्रजभान, बालाराम मेहर, नरेश प्रजापति, लक्ष्मण रेकवार, दातार सिंह शेखावत। लवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंशुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। बड़ी गवी वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, दर्द शशि मालवीय, आकाश मालवीय, हर्ष अनमोल मालवीय, श्लोक श्री त्रिभुवननाथ मालवीय, मंजू मालवीय। सरायनाका रामनगर से शमीम भाई, शबाना, सहना, सोनम, शंश, आकिब, वलम, रफीक और रिजवाना। आप सभी सुनिए।

अपनी पसंद पर आई मिलन की रात फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में, शब्द रचना समीर की, संगीत आनंद मिलिंद का।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने, त्रिलोचन घाट वाराणसी से रीता केशरी, संगीता केशरी, रंगोली केशरी, कशिश केशरी, टिया केशरी और इनके मम्मी पापा, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, शुभम जायसवाल, शिवम जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, राजेश जायसवाल, अवधेश जायसवाल, डिंपल जायसवाल, यहीं से हैं आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल, दिलीप जायसवाल, दुर्गेश जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव जायसवाल, आर्य जायसवाल, पटेल नगर मुगलसराय से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह, गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर चौहान, संदेश कुमार चौहान, अनुराग कुमार चौहान, अनिल कुमार अकेला, बड़क चौहान, कुटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ये पत्र हमें भेजा है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय डे, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, पतली गली वाराणसी से मुश्ताक सुलेमानी, शाहिद मुश्ताक वाला, साजिद मुश्ताक वाला, नासिर मुश्ताक वाला, जावेद मुश्ताक वाला, अनारबाग बनारस से गुड़िया सुलेमानी, शाहिदा सुलेमानी, रजीना सुलेमानी, आयशा सुलेमानी, साकिब सुलेमानी, जाहिद सुलेमानी, हसीना सुलेमानी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, धनबाद से आप हैं प्रभात रंजन प्रसाद, शोभा रंजन प्रसाद, रितेश रंजन प्रसाद, स्वाति रंजन प्रसाद, प्रतिभा रंजन प्रसाद, मुबारकपुर रूची तक या आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से यह खत हमें भेजा है दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना और हसीना दिलशाद ने, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, बीट शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और सरला प्रकाश, आप सभी सुनना चाहते हैं वारिस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत उत्तम जगदीश का। तो बात हो रही थी

सावन की। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना आ चुका है और सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। मन खुश होता है जब हम शिव की पूजा करते हैं, और शिव की पूजा करते रहिए। सावन को इस गीत के साथ एंजॉय कीजिए।

फरमाशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। इस कार्यक्रम में आप भी यदि शामिल होना चाहते हैं तो आपको पत्र लिखना पड़ेगा और पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी पिन कोड 221010। इस पते पर आप हमें खत लिखेंगे तो उसे इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगला पत्र हमारे पास है जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव डॉक्टर प्रशांत जगुताई साक्षिताई संचित बायाल प्रथमेश देशमुख स्वामी देशमुख प्रणाली देशमुख सानवी देशमुख महसूल सीतामणि बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अक्रम नवासी सुमेरा नाज नुजा जहानाज शाजिया शाहिनाज नाजिया नूरी नाज बच्चू शेख चीना शेख अंसार टोला मणियाहू जौनपुर से निगार बानो रहनुमा बानो राहत जहां रोशन जहां शाहिस्ता नाज तकिया मणियाहू जौनपुर से यह खत हमें भेजा है जमील अहमद शाह मोहम्मद अल्तमा शाह मोहम्मद दानिश शाह मोहम्मद साजिद शाह अस्तुपुरा मऊनाथ भंजन से मजहर अली अंसारी रजिया बेगम अंसारी अबू बकर अली अंसारी सादिक साजिद और सारिम बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर इरम परवीन अजीमाबाद मऊनाथ भंजन से आमिर अखलाक अवनीश कुमार मिश्रा कुमारी रानी मिश्रा गोलाघाट बक्सर से विजय केशरी गौरीशंकर केशरी शंभुनाथ केशरी नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी पंकज केशरी रोहन केशरी भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा सरिता शर्मा गौरव शर्मा गरिमा शर्मा तीव्रता डबरीपारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम श्रीमती जया मरकाम जागेंद्र कुमार मरकाम ग्राम अलगी डांडपाली जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से चंद्रपाल मरावी ओम प्रकाश मरावी राम प्रकाश मरावी लेवाल खेल मोहल्ला चांदूर विश्वा से नारायण भाऊ विठल राव खर्चे ललिता रानी खर्चे परी संजना खर्चे गणेश कार्तिक खर्चे ब्रोनो उषा सोरना खर्चे स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली उत्तर प्रदेश से पन्नीलाल सागर बेनी सिंह धर्मवीर आशीष कुमार सागर अमर सिंह हितेश रूबी भारती रचना एकता भारती कुमारी दिव्या भारती ममता चौधरी श्रीमती ओमोती भारती खनक नकुल नैन्सी और केशलता आप सभी को हम सुनवा रहे हैं साजन का घर फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज रचना समीर की संगीत नदीम स्वर्णकार

जी हाँ दोस्तों, लेकिन तुम कब आओगे? और जब सावन का महीना आ गया तो आ ही जाइए ना। तो पत्र भी भेजिए, पत्र शामिल करेंगे हम इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपके पत्र आपके गीत। और कार्यक्रम में ये अगला पत्र भेजा है मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, बंटी विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर, परी प्रिंस, एकांश करणवाला सादुल शहर से, ओम प्रकाश चौहान, राधा मुन्ना प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, गांव भड़बुजी आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवी, भंवर भाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोली दीवान, लव दीवान। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, रुचि, विनीत आहूजा, निमित, विशाल गगनेजा। सुंदरपुर वाराणसी से ये पत्र हमें भेजा है प्रीति, सौरभ, कुमारी, रितु, सान्याल, रिया, मिली, मेघना और लकी ने। बठेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटोदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषीकृत वर्मा। टिकरा पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी, संजय कुमार ध्रुवंशी, कुमारी किरण लता ध्रुवंशी, नजरबत्ती ध्रुवंशी, मास्टर शानू ध्रुवंशी। दुर्गई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभणी से सी आर कुलकर्णी, सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, रमन साहू, पवन वर्मा, मुशीर खां यहीं से हैं, गीता नायक, अलका साहू, अंजलि वर्मा, शाहना शबनम। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। आदर्श नगर भटिंडा पंजाब से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति प्रवीण, विक्रमजीत ग्रोवर। सुनिए आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। और इस गीत को हमने लिया है आप सबकी पसंद पर दो रास्ते फिल्म से। श्रोताओं, दिन में रात कभी होती है? जी हाँ होती है। कब? जब सावन आता है, जब बारिश होती है, जब काली घटा छाती है, तो सारे नज़ारे खो जाते हैं और अंधेरा सा छा जाता है। और इस गीत में देखिए इन्होंने क्या कहा है।

फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। अगला खत हमें भेजा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह, चितबड़ागांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुषी और अनुष्का। ये पत्र भेजा है लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, ऋषु, इला और बिनस। कनाट प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम ने भी एक पत्र भेजा है। ओबरा सोनभद्र से आयुषी और शुभम, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, श्रीमती बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, यहीं से हैं बबीता बोत, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, एस आर कांगड़ा। मसीता डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। छत्तीसगढ़ का कई खत शामिल हो चुका है। धरसीवा से चेदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव। मनमोहन सिंह, सोनम, काव्या और दक्ष रामपुर मंडवा हसनपुर गांव यूपी से।

फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन ने यह पत्र भेजा है ग्राम सोंगा मगरलोट धमतरी छत्तीसगढ़ से। अशोक विहार कॉलोनी पहाड़िया वाराणसी से अनिल गुप्ता गोंड, रामा गुप्ता गोंड, अंकुश कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता गोंड, अविरल और अग्रिम गोंड। लल्लापुरा वाराणसी से अलीजा अयान खान, अलीजा और एनुल खान। गौर लक्ष्मी सासाराम गली नंबर 8B से कुमारी गंगा रति चौहान, राजेश कुमार अकेला, कुमारी गुड्डू चौहान, आर के सिंह चौहान। परवेज अहमद फागु सुनकर शुक्लपुरा वाराणसी से। शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मांगे खान, शहीद खान, ईदो कुमारी, इसरोल बारमेर राजस्थान से आपने ये पत्र भेजा है। ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट ला रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति और इनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी। आप सभी को हम सुनाने जा रहे हैं जुर्माना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने। ये गीत भी बहुत ही खूबसूरत गीत है, इसको सुनिए।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने, नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, पिंटू दीवाना, सुरेंद्र कुमार सुमन, जगमोहन साहनी, अकोला से विजय वडालकर, लता वडालकर, वैष्णवी और रांजिब के कल्याण, इष्ट से विनय वडालकर, कल्पना वडालकर, ऋषिकेश और आदेश, सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, करनाल से जग्गी दुआ, स्टेशन रोड बस्ती से जयप्रकाश भारती, नीलेश कुमार, कविता और स्वाति, बड़भुइली पोस्ट अदलहाट, जिला मिर्जापुर से आरएसपी खन्ना, नशरुद्दीन अंसारी, गुफरान अंसारी, अकबर अंसारी, झाजू अंसारी, सिद्दीकी अंसारी, मंजूर कुरैशी, हरिपुरा झज्जर से प्रदीप बधवा, आशा बधवा, गीतेश बधवा, मोक्ष बधवा, यश बधवा, निखिल बधवा, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, राजा बाजार बिहिया से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी, थाना रोड बक्सर से ओमानंद केशरी, धनानंद केशरी, विनोद केशरी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, मन्नू सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, गांव फरांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, महागौरी मंदिर खजरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ सिंह नेगी, गौरव सिंह नेगी, मिट्टी और कुहू, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, डॉक्टर शहबाज खान, डॉक्टर सलीम अहमद, ये इन्होंने पत्र भेजा है, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, पटेल नगर मनोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। तो सुनिए अपनी पसंद पर मंजिल फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में, शब्द रचना योगेश की, संगीत आर डी बर्मन का, और यह है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

भगवान शिव की कृपा से आपका ये दिन और पूरा सप्ताह मंगलमय हो। इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम समाप्त करने की। अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। दिन के 12 बजे हैं। अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
1: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है।

0: इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सरजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
1: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल।

0: शकुन जंघेल, आरुषि ओशिक और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
0: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
1: जी,
0: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
1: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
1: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार
0: जी। और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
1: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था अपने किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
1: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
0: तो श्रोताओ, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा
1: जी। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताजा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
0: मेरी माँ।

0: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
1: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
0: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।

0: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था। वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
0: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
2: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग

0: अपनी सत्यनिष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
1: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
2: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
0: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
2: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। आठवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
0: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
2: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
0: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
3: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, उसके पहले ये संदेश।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658,
7: 0542227658।
3: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं राम शंकर। इनके स्वर में सुनिए ये गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे राम शंकर। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलो हर्ट्स। वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन। राग है जयंत मल्हार। आपके साथ पखावज पर संगति की है आदित्य दीप ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन। राग था जयंत मल्हार। आपके साथ पखावज पर संगति की थी आदित्य दीप ने। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दिन का 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जान

0: बूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्य

0: कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समेत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार कमलेश उर्फ बुद्धू, पिता का नाम राजेंद्र, ये ग्राम घनसिरिया थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर के निवासी हैं, कहीं लापता हो गए हैं। कमलेश उर्फ बुद्धू के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र 27 वर्ष, लंबाई 5 फीट 7 इंच, रंग गेहुआ, मजबूत शरीर, चेहरा गोल है। इनके दाहिने हाथ पर ओम का निशान बना हुआ है। ये जब लापता हुए थे उसमें काले रंग का लोअर और सफेद शर्ट पहने हुए थे। कमलेश उर्फ बुद्धू के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। यहीं से ये सूचना और भी प्राप्त हुई है। नीतू बिंद, पुत्री सुमारू बिंद, निवासिनी ग्राम शिवपुर थाना चुनार जनपद मिर्जापुर, कहीं लापता हैं। नीतू बिंद की उम्र है 21 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, दुबला पतला शरीर है। ये जब लापता हुई थी उसमें सूट सलवार पहने हुए थी। नीतू बिंद के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। एक और भी सूचना यहीं से प्राप्त हुई है। संगीता, पति का नाम राजकुमार, ग्राम बबुरा रघुनाथ सिंह थाना ड्रमंडगंज जनपद मिर्जापुर, कहीं लापता है। संगीता के बारे में जानकारी की बात इस प्रकार है। उम्र 36 वर्ष, लंबाई 4 फीट 11 इंच, रंग सांवला, इनके बाल लंबे और काले हैं। ये जब लापता हुई थी उसमें हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी। संगीता के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे और संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8 बजे। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र

से रिले किए जाएंगे। रात 8:20 पर आप सुनेंगे विधान मंडल समीक्षा। यह कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से संप्रसारित होगा। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर। कृषिगत कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रमों के अलावा आप सुनेंगे सुबेदार यादव और साथी का गायन लोकगीत। इनका गायन लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात। इसी कार्यक्रम में नैन्सी त्रिपाठी की वार्ता होगी, नई शिक्षा नीति और युवाओं का भविष्य, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी गीत संगीत के अलावा डॉक्टर सुमन राय की वार्ता, साहित्य में वर्णित सावन का सौंदर्य। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुन सकते हैं दिन में 2:30 पर। अलावा इसके आप फिल्म संगीत सुनेंगे शाम 5:00, शाम 6:10 पर, शाम 7:00, शाम 7:31 पर रसरंग में और रात 8:30 पर रस माधुरी कार्यक्रम में। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें जिसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

ब्रिक्स ममालिक के एनएसओ चीफ्स की मीटिंग आज लखनऊ में मुनक़िद हो रही है। ये मीटिंग कल भी जारी रहेगी। हिंदुस्तान की सदारत में लखनऊ में मुनक़िद इस मीटिंग में ब्राज़ील, रूस, चीन, ईरान, यूएई समेत 11 ब्रिक्स ममालिक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इस साल की ब्रिक्स सदारत का मौजू सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। मीटिंग में शुमारियात प्रोडक्शन को मजबूत करने, कौमी शुमारियात निज़ाम में इस्लाह, डेटा की पहुंच बढ़ाने और इक्तिसादी और मंतकाई शुमारियात को मुस्तहकम बनाने पर गौर खोस होगा। इसके साथ ही प्रशासनिक डेटा की क्षमता और विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी मौजू पर दो खसूसी को प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। रियासती असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया। सेशन की शुरुआत से कबल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सहाफियों से कहा कि यह सेशन हमारे लिए बेहद खसूसी सेशन है। गरीब, किसान, नौजवान, खवातीन, उनसे जुड़े मुद्दे पर बहस करने, जायजा लेने और नताइज तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुकन्ना होती है। हर अवामी नुमाइंदा अपने हल्के की दिक्कत रख सकता है। समाजवादी पार्टी के लीडर शिवपाल सिंह ने सहाफियों से कहा कि हुकूमत ने कम मुद्दत का सेशन बुलाया है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा हुकूमत अवामी मफाद के मुद्दों से बचना चाहती है। दरियस्ना पार्लिमानी अमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने कहा कि इस इख्तिलाफ के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत कानून मुत्तफिक तरीके से हर पहलू पर काम कर रही है। यूपी असेंबली में आज ताजियती पेशकश के बाद ऐवान को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। यूनेस्को की आलमी वर्षा कमेटी ने सारनाथ को मंजूरी देकर मजहबी सयाहों को तोहफा दिया है। मंजूरी का मामला 28 सालों से जेर गौर था। भगवान बुद्ध की जाय मकाम सारनाथ को यूनेस्को की आलमी वर्षा फेरिस्त में शामिल करने से सारनाथ मुल्क का 45वां और उत्तर प्रदेश का 4था आलमी वर्षा मकाम बन गया है। जनूबी कोरिया के बुसान शहर में मुनद यूनेस्को की आलमी वर्षा कमेटी ने 48वें सेशन में 25 जुलाई 2026 को यह ऐलान किया। इससे कबल उत्तर प्रदेश के ताजमहल, आगरे का किला और फतेहपुर सीकरी आलमी वर्षा फेरिस्त में शामिल किए गए थे। आज सावन का पहला सोमवार है। कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ के मद्देनजर पूरी रियासत में हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ शिव मंदिरों के बाहर जमा है। लखनऊ समेत कई जिला में हो रही बारिश के बावजूद अकीदतमंदों के जज्बे में कोई कमी नहीं है। अकीदतमंद लाइन लगाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। हापुड़, चित्रकूट, वाराणसी, बाराबंकी के मशहूर लोधेश्वर महादेव मंदिर, अयोध्या, मेरठ, फरुखाबाद, शामली, बरेली, महोबा, गौतमबुद्ध नगर समेत दीगर जिला में भी अकीदतमंद भगवान शिव पर जलाभिषेक कर दुआ कर रहे हैं। साथ ही

0: गजल, बेलपत्र, धतूरा, फूल, दूध और दीगर अशिया चढ़ा रहे हैं। अमरोहा में श्रावण मास में पड़ने वाले हर दुशंबे और हफ्ते को दर्जा एक से दर्जा आठ तक तातील का ऐलान किया गया है। दरियसना संभल में आज कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर सभी स्कूलों में आज तातील का ऐलान किया गया है।
1: सावन के पहले सोमवार पर पवित्र नदियों से जल भरकर प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के माहौल में जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। उससे जुड़े मार्गों पर 289 सीसीटीवी कैमरों के साथ 44 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं।
0: दौलत मुश्तरका खेल का ग्लासगो में एक अजीम तकरीब में अख्तिताम पजीर हो गया। अख्तितामी तकरीब में वंदे मातरम के तराने के साथ हिंदुस्तान की सकाफती तनू और रिवायत का मजाहरा किया गया। जलसे में 100वीं दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के लिए हिंदुस्तान को परचम और कमान सौंपी गई। 2030 के दौलत मुश्तरका खेल अहमदाबाद में होंगे। वाजिर है कि हिंदुस्तान ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में 13 सोने, 17 चांदी और 9 कांसे के तमगे हासिल किए और मेडल टेबल में चौथे मकाम पर रहा। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जरिए मुनक़िद किए जाने वाले पेट 2026 की दरख्वास्त का अमल आज से शुरू हो गया है। कमीशन के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दरख्वास्त का अमल 1 सितंबर 2026 तक चलेगा। दरख्वास्त में तरमीम और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 8 सितंबर 2026 मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त से कबल वन टाइम रजिस्ट्रेशन लाजमी है। वाजिर है कि यह इम्तिहान रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में ग्रुप सी के ओहदों पर तकर्री के लिए लाजमी अहलियती इम्तिहान है। और जौनपुर जिले के बख्शा थाना हलके के कुलहना मऊ में देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद जां बहक हो गए जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार एक खड़े ट्रक में जा लड़ी। कार में सवार सभी 5 अकीदतमंद काशी विश्वनाथ से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। सभी उन्नाव के बाशिंदे थे। जख्मियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है जबकि पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, उसके पहले ये संदेश।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
6: सखियों के साथ,
7: सखियों की बात,
6: सखियों के जज्बात,
8: गृह लक्ष्मी।
9: मैं हूँ आपकी रेडियो सखी पूजा, और हमारे साथ हमारी प्यारी सी सखी है संध्या।
10: हमारी सखियों को और पूजा जी आपको नमस्कार, और हमारी गृह लक्ष्मी जो सखियां है ना, वो हम

0: लोगों का इंतजार भी कर रही हैं कि हम लोग कार्यक्रम लेके आए।
1: हाँ, और देखिए संध्या जी, सावन का महीना रिमझिम फुहारों का महीना है, साथ ही भगवान शिव का प्रिय महीना भी। सावन में हर ओर हरियाली से प्रकृति भी निराली लगती है। अपनी काशी में तो हर तरफ हर हर महादेव की गूंज भी बहुत हो रही है। और आज सावन का पहला सोमवार है। आज के दिन शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करते हैं और साथ ही व्रत भी रखते हैं।
0: बिल्कुल सही। और सुबह सुबह उठ के जो इतनी घर की महिलाएं बच्चे होते हैं ना, सब तैयार होके और जलाभिषेक के लिए जो है भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। फूल माला सारी चीज़ें लेके जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। चारों तरफ बस हर हर महादेव की ही गूंज होती है।
1: और देखिए ना, हर शिव मंदिर में जल चढ़ाने वाले और पूजा करने वालों की लाइन लगी है। अपनी काशी है ही अद्भुत। जो यहाँ आया वो यहाँ के मुंह से खुद को कभी निकाल नहीं पाया। और देखिए, हर हर महादेव से पूरी काशी नगरी जो है वो शिवमय हो चुकी है। और सड़कों पर और गलियों में दर्शन करने वालों के लिए भीड़ लगी है। साथ ही जगह जगह जो कांवरियाँ हैं, जो दर्शन करने वाले लोग आ रहे हैं, उनके लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई है। लोग जलपान करा रहे हैं और प्रसाद के रूप में भी वितरित कर रहे हैं। और साथ ही देखिए ना संध्या जी, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जो हाथ में डमरू लिए बोलबम और का उद्घोष कर रहे हैं। और छोटे छोटे कावड़ उठा के जब जाते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और संध्या जी, बच्चे जो होते हैं ना, तो सभी अच्छे लगते हैं, चाहे वो नवजात शिशु को ही ले लीजिए। देखिए वो कितने खिलौने जैसे प्यारे लगते हैं।
0: बिल्कुल सही पूजा। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ की गोद में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और देखिए ना, जब बात शिशुओं की हो रही है ना, तो आपको पता है विश्व स्तनपान सप्ताह भी चल रहा है, जो अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हमारी सखियों को स्तनपान और उनके कार्य को दृढ़तापूर्वक एक साथ करने के लिए मनाया गया है। स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान कराना, साथ ही कार्यालयों में भी इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे महिलाओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। और जानती हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, जब पैदा होते हैं, उसके 1 घंटे बाद ही माँ का जो पीला और गाढ़ा दूध होता है ना, वो बच्चों को जरूर देना चाहिए।
1: और इसीलिए कहते हैं ना, बच्चों के लिए माँ का दूध सबसे जरूरी आहार है। और माँ के दूध में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य है शिशुओं और माताओं के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। संध्या जी, देखिए ना, माँ का दूध जो होता है, वो कहते हैं शिशु का पहला टीका भी है। और इसमें इतने पोषक तत्वों का सही संतुलन होता है कि मातृत्व पालन पोषण देखभाल में ये एक ऐसी यात्रा हो जाती है ना, जो शिशु के स्वास्थ्य और भविष्य को भी आकार देती है।
0: बिल्कुल सही। और जो है, माँ को कम से कम अपने शिशु को 6 माह तक तो अपना दूध जरूर पिलाना चाहिए। और इसके बाद ही धीरे धीरे करके कुछ छोटी छोटी खाने की चीज़ें जो आराम से पाचन वाली हो ना, वो बच्चों को देना चाहिए, जिससे जो है बच्चे जो हैं उनका पोषण भी अच्छा हो जाता है, उनकी वृद्धि भी अच्छी होती है। और जो माएँ होती हैं ना, खास करके जो पहली बच्चे देती हैं, जो माँ होती हैं बच्चे होते हैं उनके, तो उनको थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसे में हम अपने घर के जो बुजुर्ग हैं या जो भी डॉक्टर से जो हैं, उनको स्तनपान कराने में सलाह ले सकती हैं और वो अपने शिशु को अच्छे से पालन पोषण कर सकती हैं।
1: संध्या जी, जैसे आपने अभी सखियों को बताया कि कई बार जब माताएं जो होती हैं स्तनपान के शुरुआती दिनों में, उन्हें कई शारीरिक और भावनात्मक रूप से कुछ चुनौतीपूर्ण समय बिताने पड़ते हैं। और माताओं और बहनों में दूध की कमी, चिंता, ये सभी एक जिम्मेदारी हो मतलब एक जिम्मेदार कारण हो जाता है कि उन चिंताओं चिंता के कारण, तनाव के कारण वो बच्चे को ठीक से फीड नहीं करा पाती हैं। लेकिन सखियों, शिशु के साथ साथ माताओं को भी देखभाल, आराम और प्यार की जरूरत होती है। अक्सर देखा जाता है कि जब घर में छोटा बच्चा आता है, नवजात शिशु आता है, तो सब लोग उसके लाड प्यार में, उसके ख्याल रखने में इतना ध्यान देने लगते हैं कि जिससे कि वो माँ का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिससे वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर होने लगती हैं। और इसका सीधा असर शिशु के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। संध्या जी, कहते हैं ना कि मातृत्व या माँ बनना जीवन का सबसे अनमोल सुख है, जो एक माँ बनने के बाद ही पता लगता है। और शिशु के आने की खुशी में वो स्वयं को इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, खुद का इतना ख्याल नहीं रख पाती, क्योंकि वो तो दिन भर अपने नन्हे मुन्ने को संवारने सजाने में ही लगी रहती हैं। तो सखिए, थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालें, खुद को भी स्वस्थ रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, तभी तो आप अपने नवजात शिशु का भी ध्यान रख पाएंगी। संध्या जी, देखिए बातें तो अभी हमें और भी करनी है अपने सखियों के साथ, कुछ और भी बातें बतानी है सेहत के बारे में, तो गीत संगीत भी तो होना चाहिए। अगर गीत संगीत ना हो

0: संध्या जी, देखिए सावन का महीना और बारिश का जो मेल होता है वो अनोखा होता है। क्यों? इस मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं और बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरती हैं ना, तो धरती उसे सोख लेती है, और जब यही बूंदें पेड़ों के पत्तों पर गिरती हैं ना, तो मोतियों जैसे चमकने लगती हैं। और सावन का जो सौंदर्य है वो एकदम अलग है। सखियो, तो इसी विषय पर सुनते हैं एक वार्ता। वार्ता का शीर्षक है साहित्य में वर्णित सावन का सौंदर्य। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुमन राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन राय। आज का वार्ता का विषय है साहित्य में वर्णित सावन सौंदर्य। साहित्य में मन भावन सावन सौंदर्य का वर्णन किया गया है। साहित्य में सावन सौंदर्य का वर्णन आज से नहीं बल्कि आदिकाल से किया जाता रहा है। साहित्य का अर्थ होता है सबका हित, जिसमें सबका हित समाहित हो उसे ही हम साहित्य कहते हैं। सर्वप्रथम हम संस्कृत साहित्य को लेते हैं और संस्कृत साहित्य में शूद्रक, भर्तृहरि, जयदेव और महाकवि कालिदास, इन्होंने अपने साहित्य में सावन के सौंदर्य का वर्णन किया है। और मनमोहक, आकर्षक, मनभावन वर्णन साहित्य के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कालिदास की बात करें तो कालिदास ने मेघदूत में सावन सौंदर्य का वर्णन किया और पावस ऋतु का शुभारंभ भी सावन से ही किया है। मेघदूत में कालिदास ने यक्ष को मेघ का अभिवादन करने के लिए सावन के ताजे कुटज के पुष्पों का अर्घ देके उनका अभिनंदन किया। ऋतु संहार में भी कालिदास ने वर्षा के आगमन का रोचक चित्रण किया है और कहा है कि यदि सावन में आप मेघदूत को नहीं पढ़ा तो भारतीय संस्कृति में मेघों के उत्सव को आप नहीं समझ सकते। हिंदी साहित्य का युग ले लीजिए, चाहे वो कोई काल हो, मध्य काल हो और रीति काल हो, आधुनिक काल हो, सब में सावन साहित्य का सजीव रोचक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आदिकवि विद्यापति ने अपनी पदावली में सावन का मनमोहक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि गगन घन अब मेह दारुन सघन दामिनी झल गई, कुलिस पातन सबद झन झन पावन खरत बल गई, सजनी आज दुर्दिन भेल कंत हमार नितांत अग्रसरी संकेत कुंजई गेल, तरल जलधर बरिक झरझर गरज घन घन गोर असाम नागर कैसे एकसर पंथ होए मोर। अर्थात आकाश मेघों से भर गया है, बिजली चमक रही है, हवा के कारण पेड़ पत्ते आवाज कर रहे हैं।

नायिका के संकेत से श्याम कुंज चले गए हैं और तभी बारिश शुरू हो गई है। नायिका की मनोदशा का चित्रण करते हुए विद्यापति कहते हैं कि श्याम वहां अकेले बारिश में मेरा रास्ता देखते देखते भीग रहे होंगे। सावन शब्द ही अपने आप में बड़ा मन भावन है। मन का संबंध भाव से होता है और भाव साहित्यकार का प्राण है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों ने श्रावण मास को एक ओर तो पावन मास के रूप में चित्रित किया, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रीति के सौंदर्य, प्रेम और विरह के विरोधाभास लिए उजाले और अंधेरों की अद्भुत शब्द लड़ियां पिरोकर सुंदर सृजन मालाएं सजाई हैं। जायसी ने पद्मावत महाकाव्य में नागमती वियोग के अंतर्गत सावन मास का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने नागमती का वियोग सावन मास में दिखाते हुए बताया है कि सावन बरस मेह अति पानी, अभरन परी हो विरह झुरानी, लाग पुनर्वसु पियु न देखा, भई बाउरी कह कंत सरेखा, रकत के आंसू परई भुई टूटी, रेंग चली जस विरह बहुटी, सखिन रचा पियो संग ही डोला, हरियारी भूमि कुसुम भी चोला, हिय ही डोल अस डोलय मोरा, विरह झुलाई दे झकझोरा, बाट असूज अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भभोरी, जग जल बूझ जहां लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। प्रस्तुत में दिखाते हुए बताया है कि सावन बरस मेह अति पानी, अभरन परी हो विरह झुरानी, लाग पुनर्वसु पियु न देखा, भई बाउरी कह कंत सरेखा, रकत के आंसू परई भुई टूटी, रेंग चली जस विरह बहुटी, सखिन रचा पियो संग ही डोला, हरियारी भूमि कुसुम भी चोला, हिय ही डोल अस डोलय मोरा, विरह झुलाई दे झकझोरा, बाट असूज अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भभोरी, जग जल बूझ जहां लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। प्रस्तुत पद में जायसी ने बताया है कि वर्षा ऋतु में सब लोग सराबोर हो जाते हैं, ठंड मिलती है, परंतु विरह के कारण नागमती जलती जा रही है। सावन बरस मेह अति पानी, सब जगह बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, परंतु नागमती को ठंड नहीं मिल रही है। अभरन परी हो विरह झुरानी, और वो जैसे विरह के कारण झुलसती जा रही है। लाग पुनर्वसु पियु न देखा, कितने वर्षों हो गया अभी तक उन्होंने पिय का दर्शन नहीं किया। भई बाउरी कह कंत सरेखा, और पिय के वियोग के कारण नागमती बाउरी हो गई है, पागल हो गई है। अगर हम साहित्य के मध्य युग की बात करें तो तुलसी, सूर, जायसी, मीराबाई आदि ने अपने साहित्य में सावन के सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया है। आधुनिक युग की बात करें तो हिंदी साहित्य का आधुनिक युग छायावाद के नाम से जाना जाता है। वैसे तो आधुनिक युग में भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, उसके बाद छायावाद आता है, परंतु छायावाद जो है सौंदर्य का पर्याय है।

से विरह के कारण झुलसती जा रही है। लाग पुनर्वसु पियो न देखा, कितने वर्षों हो गया अभी तक उन्होंने पिय का दर्शन नहीं किया। भाई बावरी कह कंत सरेखा, और पिय के वियोग के कारण नागमती बावरी हो गई है, पागल हो गई है। अगर हम साहित्य के मध्य युग की बात करें तो तुलसी, सूर, जायसी, मीराबाई आदि ने अपने साहित्य में सावन के सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया है। आधुनिक युग की बात करें तो हिंदी साहित्य का आधुनिक युग छायावाद के नाम से जाना जाता है। वैसे तो आधुनिक युग में भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, उसके बाद छायावाद आता है, परंतु छायावाद जो है सौंदर्य का पर्याय है। छाया देख तो लो, जगती में सावन आया है, माया विनी सपने धोलो। साहित्य में यदि लोक साहित्य की बात करें तो कजरी के बिना सावन अधूरा सा प्रतीत होता है। कजरी सावन का सबसे मन बड़ा महोत्सव है, और कजरी के माध्यम से जन साहित्य की जन भावनाएं उभर कर सामने आती हैं। कजरी की ज्यादातर स्थानों पर झूला गीत का पर्याय माना जाता है। सावन में झूला और कजरी सावन सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। आगे एक कजरी प्रस्तुत है, और वो काशी के लिए ही है। छत पर

0: नमी ज़्यादा होती है, और ऐसे में हमें अपने खान पान का भी बहुत ध्यान रखना होता है, साथ ही सेहत का भी। और इस समय जितने भी मौसमी फल हैं ना, वो हमें ज़रूर खाना चाहिए, और इससे क्या हो जाता है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो स्ट्रांग रहती है। और आज सेहत ज्ञान में आप क्या बताएंगे हमारे सीखियों को?
1: आज हम बताएंगे ना अंजीर के फायदे। और पूजा जी जानती हैं ना कि सभी उम्र के लोगों को ना कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, और कैल्शियम मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना हमें अंजीर में ही मिलता है, क्योंकि इसमें फाइबर, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम जो एक बहुत बेहतरीन स्रोत है। इससे बीपी भी नियंत्रित रहता है और जो हमारी पाचन जो है ना वो भी बहुत अच्छा रहता है, कब्ज भी दूर करता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है।
0: और इसीलिए कहते हैं ना कि अंजीर को हमेशा सुबह खाली पेट भिगो कर खाना चाहिए, इससे वे पचने में भी आसानी होती है और शरीर में ताकत भी मिलती है। और अंजीर जो हमारी हड्डियों को तो मजबूत करता ही, साथ ही साथ हमारे बालों और स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, और शरीर में जो खून की कमी है ना, उसको भी दूर करता है। क्यों संध्या जी?
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और सखियों देखिए, गीत संगीत जो है वो तो सुनना ही चाहिए, और गीत संगीत ना हो ना तो कुछ अधूरा अधूरा सा।
1: और कैल्शियम मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना हमें अंजीर में ही मिलता है, क्योंकि इसमें फाइबर, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम जो एक बहुत बेहतरीन स्रोत है। इससे बीपी भी नियंत्रित रहता है और जो हमारी पाचन जो है ना वो भी बहुत अच्छा रहता है, कब्ज भी दूर करता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है।
0: और इसीलिए कहते हैं ना कि अंजीर को हमेशा सुबह खाली पेट भिगो कर खाना चाहिए, इससे वे पचने में भी आसानी होती है और शरीर में ताकत भी मिलती है। और अंजीर जो हमारी हड्डियों को तो मजबूत करता ही साथ हमारे बालों और स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, और शरीर में जो खून की कमी है ना, उसको भी दूर करता है। क्यों संध्या जी?
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और सखियों देखिए, गीत संगीत जो है वो तो सुनना ही चाहिए, और गीत संगीत ना हो ना तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। तो चलिए सखियों, हम और आप दोनों सुनते हैं, मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: संध्या जी, देखिए बच्चों का पालन पोषण और खान पान की पूरी जिम्मेदारी किस पे होती है?
1: माँ पर होती है।
0: और जब तक अगर बच्चे सही से खाएं ना, तो माँ को हमेशा चिंता लगी रहती है कि अगर मेरे बच्चे ने ठीक से खाया नहीं, मतलब उसका विकास जो होता है वो जब अच्छे से नहीं होता, तो माँ हमेशा चिंतित रहती है। और ऐसे में अगर बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों रूप से विकास नहीं होगा, तो बच्चे के लिए दिक्कत हो जाएगी और साथ में
1: बिल्कुल
0: माताओं की चिंता भी बढ़ेगी। तो ऐसे में हम सभी सखियों की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन दें, साथ ही अच्छी आदतें डालें।
1: बिल्कुल सही कहा। और उनको जो है ना, इसके साथ पोषण जो हमारे अनाज होते हैं ये सब चीज़ें देना चाहिए, और जो फल मिल रहे हैं इसमें सीजन वाले वो ज़रूर देने चाहिए, जिससे जो उनका पोषण
0: और
1: अच्छा
0: जंक फूड
1: रहता।
0: खाने से भी रोकना चाहिए, और उन्हें जल्दी उठना, सोने के टाइम के बारे में भी बताना चाहिए, साथ ही खाने से पहले अपने हाथों को धुलना, हाइजीन का ध्यान रखना, और अपने बुक्स और कॉपियों को बैग में व्यवस्थित तरीके से रखना, ये सब अच्छी आदतों में से हैं। जब हम बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएंगे, तो आगे जाके वो इन्हीं आदतों को अपने जीवन में उतारेंगे और अच्छा करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो घर से ही शुरू होती हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे परिवार होता है, परिवार प्रथम पाठशाला होती है, वैसे ही माँ जो होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है। तो सखियो, अपने बच्चों को अच्छी आदतें दीजिए और अच्छे पौष्टिक भोजन भी दीजिए। और इन्हीं सब बातों के साथ अब हम सखियो आपसे विदा ले लेते हैं, क्योंकि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो सखियो, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और नए तरानों के साथ। तब तक अपनी रेडियो सखी पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार लक्ष्मी।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सूबेदार यादव और उनके साथी। इनके सुनने पहले सुनिए ये गंगा गीत।
1: रहले ब्रह्म

राम जी रावण को बध डाला, किस कंसा को पकड़ के पछाड़ा। राम जी रावण को बध डाला, कृष्ण

0: Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have congratulated the Indian contingent on its impressive performance at the Glasgow Commonwealth Games by bringing 29 medals. President Murmu expressed confidence that the sportspersons of the country will bring greater glory to the nation in the future international events. Have news just in, the Lok Sabha has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in three assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रक्रियाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। बिता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
3: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोट

0: नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ, आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे? आप सोचिएगा, इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा?
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था, हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
3: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
4: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग

0: मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में
1: उन्हें अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
3: उस समय बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है।

0: राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुकु कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रक्रियाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम भोजपुरी फिल्मी गीतों पर फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार। तो कार्यक्रम में आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 7905519981 यानी कि 7905519981। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा और जो श्रोता एक बार संदेश आज भेज दें अगला संदेश अगले कार्यक्रम में भेजेंगे। तो कार्यक्रम में पहला गीत होगा फिल्म दुल्हा गंगा पार के से। तो व्हाट्सएप संदेश आने शुरू हो गए हैं। ये संदेश भेजा है, पहला संदेश भेजा है पश्चिम सिंहभूम भीम चाई बासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीस राजभर, आशीष राजभर और आकाश राजभर। जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमनिया रेलवे स्टेशन से SP जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी, अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबाड और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, मेहताब अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। रामसकल चौधरी, सूरज चौधरी, मोनी बाबा धाम, चौचकपुर बाजार, जिला गाजीपुर से। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, दिवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रामनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती सीतल राजेश। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, ईशान चिपा, पूजा परिहार।

डाली लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डाली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और इनका पोता मास्टर अल कबीर। दतरंगी से हैं आप हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा, यश प्रयाण वर्मा। छत्तीसगढ़ चूड़ीलाल मुंगेली से मोहम्मद शाह, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलुफर फातिमा। रायपुर छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन। पद्मा टागिश नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। अदार नानगांड छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। पटेल नगर मुगलसराय से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह। परवेज अहमद शुक्ल पूरा बनारस से। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन, उनके माता जी राज मुनिया, गांवनारी, पचदेवरा, गाजीपुर से। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राय, शमशुल कमर राय, बेगम रुखसार, रकीबा सहन, तुबा अफरीन। कुंडल वाली महाराष्ट्र से गंगाधर सावंतकर, विजय लक्ष्मी सावंतकर, राजेश, राकेश, ऋषिता। सुमंत कुमार प्रजापति हथौज बलिया उत्तर प्रदेश से। चकफुटही असनौ बाजार जिला भदोही से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार यादव। ग्राम बागी पोस्ट नंदगंज जिला गाजीपुर से अच्छेलाल बिंद। दिलदानगर गांव जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह और कयूम शाह। मुबारकपुर उच्ची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अक्षय राजभर, आशु राजभर। अमितेश कुमार तिवारी करनई बलिया से। तो आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं आप सभी की पसंद पर दुल्हा गंगा पार के फिल्म का गीत, उषा मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज, गीतकार संगीतकार लक्ष्मण साहबादी। इसके बाद आप सुनेंगे पिया के गांव फिल्म का गीत। तो आज है सावन का पहला सोमवार, तो ये गीत समर्पित है बाबा भोलेनाथ को।

और अब आप सुनेंगे पिया के गांव फिल्म का गीत, जिसके लिए संदेश भेजा है गुला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज प्रमोद, राजा बिहार बाजार बिहिया आरा से सुरेश केशरी, पूनम केशरी और प्रतिज्ञा केशरी। शाहकोटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सुनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल, पिंकी जायसवाल, स्टेशन रोड जमनिया से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, जयंत केशव उपाध्याय, करण उपाध्याय, नेवादा जलालपुर जौनपुर से, कर्माचौक लोहारड़ी से यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष और अंश साहू, मुबारकपुर कटरा से जावेद अख्तर अंसारी, निकाहत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद, शाहिद हसन आजमी, शमीम अख्तर अंसारी, कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से, रसीड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डीके साहू, घमहापुर गंगापुर वाराणसी से शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, स्नेहा कुमारी, श्वेता कुमारी और रुद्र कुमार, नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साईं गायकवाड़, थाना रोड बक्सर से ज्यूत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता, बिट्टू कुमारी, राजू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी, मुजफ्फरनगर बिहार से, ग्राम बहुवारा पोस्ट दिलदारनगर जिला गाजीपुर से अकलू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह, दिनारा पंचायत से जयराम सिंह, अंश गुप्ता, रामा शंकर गुप्ता, सिद्धू गुप्ता, सिद्धि गुप्ता, ओम प्रकाश तिवारी, लकी गुप्ता, राम जतन यादव, रुद्र गुप्ता, श्लोक तिवारी, पप्पू तिवारी, बंगली बिहार किराकत जौनपुर से, भोलानाथ यादव चंदौली से, इन्होंने संदेश भेजा है, ये संदेश भेजा है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, उत्तम जमदाड़े, लालगंज रायबरेली से केके साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, रिशु, इला और बीनस। आप सभी सुनिए डॉक्टर रामनाथ पाठक का लिखा हुआ गीत, संगीत चित्रगुप्त का, आवाज अलका याग्निक की, फिल्म का नाम पिया के गांव।

भोजपुरी फिल्मी गीत पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, जिसमें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। गंगा किनारे मोरा गांव, इस फिल्म का गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मोहरकर। शिवपुर बागान हावड़ा से अब्बास अंसारी, शाहबाज अंसारी, पीर मोहम्मद अंसारी, मुमताज अंसारी और प्यारी नवासी हयात मोइन अंसारी। इटाड़ी रोड लालगंज बक्सर से असलम मिस्त्री, अक्रम मिस्त्री और मंटू यादव। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन गांव, नारी पचदेवरा गाजीपुर से। भास्कर दुबे ने भी संदेश भेजा है, जगह का नाम इन्होंने नहीं लिखा है। चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा निधि, आयुषी और अनुष्का का भी संदेश प्राप्त हुआ। पटेल नगर मुगलसराय से आप हैं सुनील कुमार सिंह, तो आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं लक्ष्मण शाहबादी का लिखा हुआ गीत, संगीत चित्रगुप्त का, आवाज अलका याग्निक और साथियों की। फिल्म का नाम गंगा किनारे मोरा गांव और कार्यक्रम के अंत में आप सुनेंगे ठकुराइन फिल्म का गीत। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और तमाम जगह मेले भी लग रहे हैं, तो इस गीत में ये बताया गया है कि आप मेला देखने तो जाइए, लेकिन थोड़ा सा संभल के जाइए, कोई खोने ना पाए।

तो भाई उम्मीद करते हैं कि किसी का संयम हैराने न पाए, नहीं तो दिक्कत होगी। और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाएंगे। ठाकुराइन फिल्म से इस गीत के लिए संदेश भेजा है गांव फरांग से जिला।

कलाकार थे राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी। ये हैं ऐनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आज़ाद, बदरुद्दीन अंसारी, बजरडीह धरहरा से इन्होंने संदेश भेजा है, अनिल गुप्ता गोन पहाड़िया वाराणसी अशोक विहार कॉलोनी फेस टू से, गोपालापुर जौनपुर से, रमईपुर से अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी, शिवांगी तिवारी, जयप्रकाश तिवारी, रामाश्रय तिवारी और बेबी यादव, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान आज अंसारी और गुड़िया बानो, रायगढ़ बिहार से उमाराज, शफी उमा, याकूब उमा, अजमल उमा और कलीम उमा, जेल रोड खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना और राकेश ताई, छठिया पोखरा डुमराव से लाल बाबू दीपाना, दिव्या भारती और स्टार मोहम्मद समी, चंद्रनगर सहारनपुर से महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव और नरेंद्र यादव। भास्कर दुबे ने संदेश भेजा है जीप स्टैंड चोचकपुर गाजीपुर से, प्रवंका सोनकर, रेणु सोनकर, परी सोनकर, सैदपुर गाजीपुर से, गौनारी पचदेवड़ा डी बाबा चौराहा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, गांव गहमर पकड़ीतर हनुमान मंदिर चांदनी चौक से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ जायसवाल, कनाट प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, विजयश्री और अनुश्री सैनी, महादेवपारा छत्तीसगढ़ से मीरा और सिमरन। तो कार्यक्रम का आखिरी गीत लिखा है माया गोविंद ने, संगीत चांद परदेसी का, आवाज आशा भोसले और साथियों की, फिल्म ठाकुराइन।

इसी गीत के लिए बिहार से संदेश भेजा है सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा। शिव मंदिर दालमंडी से राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव। दिलदानगर गांव से जनार्दन पांडे, शान नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह और कयूम शाह। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, अंतरा देवी और प्रभा मिश्री देवी साहू।

इंदिरा बिहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी, डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, राजकोट गुजरात से अजीत कोटरिया और गौरिया चौक अंबाला से संदीप हगोड़िया और राकेश हगोड़िया, बक्सर से राज एस डी वली अंसारी, समय के पहले आप संदेश भेजने की कृपा किया करें।

ठाकुरायन फिल्म देसी गीत के साथ फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही है आज की हमारी पहली सभा। शाम 5 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म आया सावन झूमके से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आया सावन झूम के। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। अगला गीत आइए सुनते हैं जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने ही एक बार फिर से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: साथियों के साथ करती हूँ कि हम दोस्त हैं सभी के, शायद ये सच नहीं, इतना ज़रूर सच है दुश्मन नहीं किसी के। और मेरे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की कमाई और अनमोल पलों में यही तो शामिल है कि दोस्ती भले ही हर किसी से न हो, मगर दुश्मनी, मनमुटाव और नाराज़गी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए।
1: और तभी तो हमारे आपके बीच इस दोस्ती में चार चांद लगाने हाजिर रहती है आपकी अपनी मनपसंद और हर हर दिल अजीज युवाड़ी,
0: जिसमें आज आपसे रूबरू होंगे ये दो साथी, यानी तैयबा मारूफ
1: और भास्कर। तो स्वीकार करिए हमारा सादर सा प्रेम
0: नमस्कार। हर हर महादेव। तो क्या हाल है मेरे रॉकस्टार साथियों? वैसे सावन की दस्तक के साथ आज की ये सुहानी शाम और इसमें आप दोस्तों की संगत और सोहबत, ऐसे में तो हाल सिर्फ बेहतर नहीं, बेहतरीन हो ही जाएगा, है कि नहीं भास्कर?
1: बिल्कुल। और अगर शिव की नगरी काशी में रहकर भी किसी व्यक्ति का हाल बेहाल है तो भैया ये सोचने वाली बात है।
0: क्योंकि बनारस की हवा तो बेजान में भी जान डाल सकती है, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ की बोली से लेकर खान पान सब कुछ की अपनी अलग मिठास और अलौकिकता है, जिससे ये हर किसी को रम लेता है।
1: और जिस शहर का नाम ही मिठास से बना हो, फिर तो वहां का जर्रा जर्रा भी आपका जलवा बिखेरेगा। अगर अभी भी आपको इसमें शक हो तो बेशक आप जरा यहाँ दो चार चक्कर लगा लें तो यकीन भी हो जाएगा।
0: क्योंकि मेरे दोस्तों, इस वक्त शिव की नगरी की चमक ना बिल्कुल चरम पर है।
1: तो इसी तेजी के साथ आप सभी को श्रावण मास के इस पहले सोमवार की अनंत
0: अनंत शुभकामनाएं। तो सावन की रुत के साथ मेरे दोस्तों, फ्रेंडशिप डे के खुमार में डूबे हुए मेरे साथियों, एक पते की बात बताऊं जो कि मेरे नाना जी कहा करते थे अक्सर, कि बेटा दोस्ती और दुश्मनी में ना बहुत ही बारीक सा फासला होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दोस्ती के माहौल में रहना चाहे तो उसके हजार बहाने होते हैं, लेकिन अगर उसे दोस्ती का माहौल पसंद नहीं आ रहा, उसे दोस्ताना याराना जैसी बातें अच्छी नहीं लगती, तो उसकी दुश्मनी के भी 20,000 तरीके होते हैं।
1: अब ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा माहौल पसंद है, आप किस तरह रहना चाहते हैं, दोस्ती में या दुश्मनी में, और अगर दोस्ती में रहना चाहते हैं तो किस तरह की दोस्ती में।
0: क्योंकि हमारे आसपास ना दो तरह के लोग होते हैं।
1: अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो लोग कैसे हैं, कौन हैं?
0: तो मैं बताती हूँ दोस्तों, एक तो वो लोग होते हैं जो बहुत ही ग्लैमरस और चकाचौंध वाले होते हैं, जिनको बहुत नेम, फेम, पावर और स्टेटस की भूख होती है, और दूसरे टाइप वाले वो होते हैं जो बहुत ही साधारण होते हैं, रूप, रंग और रुतबे के मामले में बहुत ही नगण्य और अदना किस्म के होते हैं, लेकिन अगर उनकी क्वालिटी की बात की जाए तो वही हमारे असली हीरो होते हैं, क्योंकि वो दिखाकर अपना साथ नहीं देते, बल्कि वो तो साथ देकर दिखाते हैं।
1: तो अब आप भी बताइए दोस्तों कि इन दोनों में से अच्छी तरह आपके जीवन में साथ देने वाला कौन है, और कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, इसीलिए व्हाट इज इनसाइड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट्स आउटसाइड।
0: और इस यारी को अगर मैं शायरा अंदाज में कहूँ ना दोस्तों, तो यही कहूंगी, एक आवाज पर आ जाती है दौड़ी दौड़ी, वक्त या आंधी या तूफान नहीं देखती, दोस्ती दोस्ती होती है तुम्हें क्या मालूम, दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देखती।
1: और बस इसी लगन, अपनत्व, प्रेम के साथ आपकी युवाड़ी भी आपका हर संभव योगदान देने में आगे रहती है।
0: तभी तो आतुरे बाबा के जयकारे से गुंजायमान इस फिजा में आपके साथ शिवोम शिवोम करने को।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो

0: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
3: 0542227658।
5: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
7: दोस्तों अब बात भावपूर्ण नगरी वाराणसी से निकले पंडित छन्नूलाल मिश्र की, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित हस्ती हैं। किराना घराने के एक प्रसिद्ध गायक के रूप में प्रसिद्ध ख्याल और पूरब अंग ठुमरी की उनकी मधुर प्रस्तुतियों ने संगीत जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है।
8: भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें 2010 में पद्मभूषण और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व यश भारती से भी सम्मानित किया जा चुका है।
7: दोस्तों इनका जन्म 3 अगस्त 1936 को आजमगढ़ में हुआ था। उनके दादा गुदई महाराज शांता प्रसाद प्रसिद्ध संगीतकार थे। 6 साल की उम्र से ही पंडित छन्नूलाल मिश्र ने अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। किराना घराने के उस्ताद अब्दुल गनी खान से भी उन्होंने शिक्षा ली।
8: पंडित छन्नूलाल मिश्र ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में शीर्ष ग्रेड कलाकार रह चुके हैं। वह संस्कृत मंत्रालय के सदस्य भी रहे हैं। वे संगीत जगत के इकलौते ऐसे कलाकार में हैं जिन्हें पद्मश्री के बजाय पद्म भूषण प्रदान किया गया।
7: दोस्तों पंडित छन्नूलाल मिश्र ने पद्म विभूषण को बनारस घराने के सम्मान के रूप में समर्पित किया है। पूरा बनारस इस सम्मान के लिए खुशी के साथ साथ गौरवान्वित भी महसूस करता है। बनारस में महादेव की बारात में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला खेले मसानी में होली दिगंबर वाला भजन समेत पंडित छन्नूलाल मिश्र को ठुमरी, दादरा, चैती और कजरी के साथ ही भजन गाने के लिए भी जाना जाता है।
8: और आज उनकी जयंती पर उनके योगदान को याद करने का दिन है और इस मौके पर हम उन्हें अपनी युवाड़ी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
7: तो मेरे दोस्तों हमारा आज का ये दिन साहित्य की सुगंध, युवाओं के सपनों और ज्ञान की रोशनी से भरा हुआ है। जब भी हम युवा साथी एक दूसरे से जुड़ते हैं तो मन में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है।
8: सही कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की बात।
7: और हमारा आज का ये दिन भारतीय साहित्य के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती जो है। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के इस महान स्तंभ ने अपनी खड़ी बोली की रचनाओं से पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया था।
8: भारत भारती और साकेत जैसी अमर कृतियों के रचयिता गुप्त जी को प्रेम से सब दद्दा भी कहते थे। उन्होंने अपनी लेखनी से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सोए हुए भारत को जगाने का काम किया था। उनकी रचनाएं केवल शब्द नहीं थी बल्कि देश की आजादी के लिए लड़ रहे वीरों का हौसला थी। उनकी यह पंक्तियां आज भी जब हम सुनते हैं तो हर युवा के मन में राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य की भावना स्वतः ही जाग उठती है। विचार लो कि मृत हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद तो करे सभी। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए।
7: क्या बात है, वाकई गुप्त जी की रचनाओं में केवल देश प्रेम ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्य और सामाजिक सरोकारों का गहरा सम्मान भी देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्मिला और यशोधरा जैसी नारी पात्रों के चरित्र को जो सम्मान और स्थान दिया वह हिंदी साहित्य में अतुलनीय है। और वाकई आज का दिन भी एकदम अतुलनीय और अविस्मरणीय ही है। तो चलिए अपने

0: अपने देश की समृद्ध संस्कृति और मूल्यों को मन में संजोकर जब आज का युवा यानी कि हम लोग पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने निकलते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी शुरुआत आखिर कहां से की जाए।
1: क्योंकि आज का युवा केवल अपने शहर या देश तक सीमित नहीं रहना चाहता, वह सीमाओं से परे जाकर अपनी प्रतिभा का परचम लहराना चाहता है। आज के डिजिटल युग में ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है।
0: अगर क्षेत्रों की बात करें तो स्टीम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के साथ साथ डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ साइंसेज एंड यूआई एंड यूएक्स डिजाइन जैसे क्षेत्रों में विदेशों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे सामने।
1: लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि केवल विदेश जाने का सपना देखना काफी नहीं है, उसके लिए सही समय पर सही रणनीति बनाना अनिवार्य है। अक्सर युवा इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें।
0: तो सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है कि रिसर्च, यानी कि आप किस देश में जाना चाहते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग है वो क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है और पढ़ाई के बाद वर्क वीजा के नियम क्या हैं, इन सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए।
1: इसके साथ ही भाषा पर पकड़ और योग्यता परीक्षा जैसे IELTS, TOEFL, GRE या GMAT की तैयारी समय रहते शुरू कर देनी चाहिए। अपने एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल मजबूत बने।
0: और आर्थिक मदद के लिए हमारे पास कई तरह की नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स तो उपलब्ध होती ही हैं, बस जरूरत है तो सही समय पर सही दिशा में प्रयास करने की।
1: तो दोस्तों, चाहे साहित्य से प्रेरणा लेनी हो या वैश्विक मंच पर करियर बनाना हो, संपूर्ण निरंतरता और सही मार्गदर्शन ही सफलता की कुंजी है।
0: और इसी बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेकर हाजिर है आपकी युववाणी, जिसके लिए हम अपनी वाणी पर थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे, थोड़ा सा विराम देंगे, तभी तो हम सुन पाएंगे और आप भी सुन पाएंगे, साथ ही समझ पाएंगे। तो अब सोच क्या रहे हैं, तैयार हैं ना नैंसी त्रिपाठी को सुनने के लिए, जिनके जरिए आज हम सुनेंगे नई शिक्षा नीति और युवाओं का भविष्य।
2: नमस्कार, मैं नैंसी त्रिपाठी। आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ जिसका हमारे युवा साथियों से सीधा संबंध है और युवाओं के भविष्य के लिए प्रभावी साबित होगा। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है और युवाओं का भविष्य उनकी शिक्षा तय करती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इससे राष्ट्र का भविष्य भी सुदृढ़ और उज्ज्वल होगा। हमारे आज के विषय का नाम है नई शिक्षा नीति और युवाओं का भविष्य। बदलते समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदलना आवश्यक हो जाता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। कई शिक्षाविद इसे गोल्डन एजुकेशन पॉलिसी फॉर यूथ एम्पावरमेंट भी कहते हैं, अर्थात युवाओं को सशक्त बनाने वाली शिक्षा नीति। जब हम इसके विभिन्न पहलुओं को समझेंगे तब यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाएगी कि यह नीति केवल डिग्री दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करने का प्रयास करती है जो ज्ञानवान होने के साथ साथ कुशल, रचनात्मक, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार भी हों। यदि हम अपने बचपन को याद करें तो हम में से कई लोगों के लिए स्कूल जाना केवल पढ़ाई और किताबों तक सीमित था। हम इस बात के लिए स्कूल कम जाना पसंद करते थे कि वहाँ पे शिक्षा मिलती है, बल्कि हमें अपने सहपाठियों के साथ रहना अधिक प्रिय होता था। शिक्षक मुख्य रूप से पढ़ाते थे और विद्यार्थी केवल सुनते थे। नई शिक्षा नीति ने इस सोच को बदलने का प्रयास किया है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने शिक्षा की शुरुआत को ही मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्ष उसके मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अब 3 से 8 वर्ष की आयु को फाउंडेशनल स्टेज माना गया है। पहले जहां अधिकांश बच्चे 5 वर्ष की आयु में स्कूल जाते थे, वहीं अब 3 वर्ष की आयु से ही उन्हें सीखने का अवसर दिया जाता है। लेकिन यहां सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं है। बच्चे खेल खेल में कहानी

चित्रों, गीतों और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। कहते हैं, यदि किसी भवन की नींव मजबूत हो तो पूरी इमारत मजबूत बनती है। ठीक उसी प्रकार यदि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होगी तो उसका पूरा भविष्य भी मजबूत होगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल पढ़ाई में अच्छे अंक लाना नहीं है, बल्कि बच्चे का समग्र विकास करना है। समग्र विकास का अर्थ है केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और रचनात्मक विकास। इसलिए नीति प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर बल देती है। जब बच्चा अपनी भाषा में सीखता है तो वह विषयों को अधिक आसानी से समझ पाता है और उसके भीतर सीखने के प्रति रुचि भी बढ़ती है। हम में से सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो बात या जो विषय हम अपनी भाषा में सीखते हैं उसको हम आसानी से याद रख पाते हैं। नई शिक्षा नीति का संदेश स्पष्ट है। इसकी संकल्पना है शिक्षा बोझ नहीं बल्कि सीखने का आनंद होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर, जिज्ञासा, नवाचार और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता विकसित करने पर विशेष बल देती है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की गई, जैसे कि इंस्पायर मानक, जिसके माध्यम से कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थी अपने वैज्ञानिक विचार और मॉडल प्रस्तुत करते हैं तथा चयनित नवाचारों को प्रोत्साहन मिलता है। अटल टिंकरिंग लैब, जिसमें विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, AI, 3D प्रिंटिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों पर प्रयोग करने का अवसर मिलता है, जिससे वे करके सीखने की प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं। स्कूल इनोवेशन मैराथन जैसी प्रतियोगिताएं बच्चों को वास्तविक समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। वहीं परख के माध्यम से मूल्यांकन प्रणाली को रटने की संस्कृति से हटाकर समझ, तर्क, विश्लेषण, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता पर आधारित बनाया जा रहा है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना है जो जिज्ञासु हों, वैज्ञानिक सोच रखते हों और समाज की चुनौतियों का समाधान खोजने में सक्षम बने। उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति ने मानविकी के विद्यार्थियों के लिए अनेक नए अवसर प्रदान किए हैं, जैसे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न संस्थानों में से अर्जित क्रेडिट को सुरक्षित रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, जिसके कारण यदि किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छूट जाए तो विद्यार्थी उसके अध्ययन के अनुसार प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या किसी डिग्री प्राप्त हो सकती है। यानी कि अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, अगर आपने किसी कारणवश पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया है तो आप दोबारा से उसी स्तर से पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसके अंतर्गत इतिहास, दर्शन, भारतीय भाषाओं, संस्कृति और परंपरागत ज्ञान को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम और शोध से जोड़ा जा रहा है। साथ ही बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा के माध्यम से मानविकी के विद्यार्थी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन या अन्य विषयों के पाठ्यक्रम भी चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंटर्नशिप, शोध, परियोजनाओं, उद्योग, संस्थान, सहयोग और कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, ताकि मानविकी के विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहकर रोजगार और शोध के लिए भी बेहतर रूप से तैयार हो सकें। आज का युग डिजिटल युग है। तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। नई शिक्षा नीति में ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। अब शिक्षा केवल ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं रहेगी। स्मार्ट क्लास होंगे, ऑनलाइन शिक्षण होगा, डिजिटल पुस्तकें अवेलेबल कराई जाएंगी, वर्चुअल लैब, ई कंटेंट और मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यार्थी कहीं भी और कभी भी सीख सकते हैं। आज मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि सीखने के प्रभावी माध्यम भी बन चुके हैं। सरकार ने भी विद्यार्थियों के लिए स्वयं, NPTEL, दीक्षा, PM ई विद्या, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तथा वर्चुअल लैब्स जैसे डिजिटल मंच उपलब्ध कराए हैं, जहां विद्यार्थी निःशुल्क पाठ्यक्रम, ई पुस्तकें, वीडियो लेक्चर और प्रयोगशाला आधारित अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब देश के हर कोने तक पहुंच रही है। हम में से अधिकांश लोगों ने विज्ञान विषय पढ़ते समय यह अनुभव किया होगा कि हम सिद्धांत तो याद कर लेते थे, लेकिन उन्हें व्यवहार में लागू कर पाना सबके लिए आसान नहीं होता था। नई शिक्षा नीति इस स्थिति को बदलने के लिए अनेक पहलुओं पर काम करती है। यह विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने, तर्क करने, प्रयोग करने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करने पर बल देती है। आज के समय में केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उससे अधिक आवश्यक है सोचने, समझने और

0: और नवाचार करने की क्षमता। नई शिक्षा नीति में शिक्षक को केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं माना गया है, बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका दी गई है, यानी कि फैसिलिटेटर। एक अच्छा शिक्षक केवल विषय का विशेषज्ञ नहीं होता, बल्कि वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझता है, उनकी जिज्ञासाओं को बढ़ावा देता है और उन्हें स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी को ऐसे शिक्षक अधिक प्रिय लगते हैं जो हमें हमारी भाषा में, हमारे स्तर पर, हमारी समझ के अनुसार पढ़ाते हैं। एक आदर्श शिक्षक के अंदर विषय का ज्ञान, नैतिकता, संवेदनशीलता, तकनीकी दक्षता, नवाचार और विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होना आवश्यक है, क्योंकि अच्छा शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं बल्कि भविष्य का निर्माण करता है। तो हमारे वो युवा साथी जो आने वाले भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें इन सभी गुणों के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल एक विषय तक सीमित रखना नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी गणित के साथ संगीत पढ़ना चाहता है या विज्ञान के साथ इतिहास पढ़ना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थी अलग अलग विषयों को आपस में जोड़कर समझ पाते हैं। जैसे यदि इतिहास पढ़ाते समय किसी स्थान का उल्लेख हो तो शिक्षक उसकी भौगोलिक स्थिति भी समझा सकता है। इसी प्रकार विज्ञान को गणित से, गणित को तकनीकी से और कला को समाज से जोड़कर पढ़ाया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों की समझ व्यापक होती है और वे वास्तविक जीवन की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आज के समय में केवल डिग्री होना पर्याप्त नहीं, कौशल भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए नई शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल देती है। विद्यार्थियों को कोडिंग, कृषि, हस्तकला, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजाइन, उद्यमिता तथा इंटर्नशिप जैसी गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आज सरकार स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, AICTE इंटर्नशिप पोर्टल जैसे मंचों के माध्यम से विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध करा रही है। इससे युवा केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजित इसका उद्देश्य है। पहले विद्यार्थियों को विज्ञान, कला और वाणिज्य जैसी निश्चित धाराओं में बांट दिया जाता था। नई शिक्षा नीति ने इस व्यवस्था को अधिक लचीला बनाया है। अब विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुन सकते हैं। इससे शिक्षा अधिक आनंददायक और उपयोगी और रोजगारोन्मुख बनती है। नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण प्रावधान एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है। यदि किसी कारणवश विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जो कि मैंने अभी पीछे स्कीम के तहत बताई, तो उसकी अब तक की पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। आज केवल मोबाइल चलाना ही पर्याप्त नहीं है, ये जानना भी आवश्यक है कि सही जानकारी कैसे पहचाने, साइबर सुरक्षा कैसे बनाए रखें और तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। इसके लिए नई शिक्षा नीति ने डिजिटल साक्षरता को बेहतर बनाने का काम किया। नई शिक्षा नीति युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम और जागरूक बनाने पर विशेष बल देती है। आज विद्यार्थी डिजी लॉकर में अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र सुरक्षित रख सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी ABC के माध्यम से अपने शैक्षणिक क्रेडिट का रिकॉर्ड देख सकते हैं तथा स्वयं, दीक्षा, NPTEL और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल तकनीक का उपयोग करना नहीं बल्कि उसका सुरक्षित, नैतिक और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग करना भी है। आज विद्यार्थियों पर पढ़ाई, प्रतियोगिता, परीक्षाओं और करियर का काफी दबाव है। नई शिक्षा नीति यह स्वीकार करती है कि केवल अंक ही सफलता का मापदंड नहीं है, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक विकास, परामर्श और तनाव मुक्त वातावरण को भी समान महत्व दिया गया है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे युवाओं का निर्माण करना है जो आत्मनिर्भर हों, वैज्ञानिक सोच रखते हों, तकनीकी रूप से सक्षम हों, नैतिक मूल्यों से जुड़े हों और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता रखते हों। आज का युवा केवल नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नवाचार करने वाला, शोधकर्ता, उद्यमी और समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर अग्रसर है। यदि हम इस नीति की भावना को समझें और अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित रूप से भारत ज्ञान, कौशल और नवाचार के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी, आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आशा करते हैं कि हमारे दोस्तों को भी ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी और उनके लिए जो कारगर है वही साबित होगी।

0: इसी के साथ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने उस पिटारे पर जहां हम जानेंगे आज के नए शब्दों को जो वाकई हमारी भाषा को और प्रभावशाली बनाते हैं।
1: तो आज का हमारा हिंदी का शब्द है अनुज्ञा। इसका अर्थ है अनुमति, आज्ञा, स्वीकृति या आधिकारिक लाइसेंस। इसके वाक्य प्रयोग को देखा जाए तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, युवा उद्यमियों को अपने नए स्टार्टअप की स्थापना के लिए स्थानीय प्रसारण से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त हो गई है।
0: और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का इंग्लिश वर्ड है कॉजेंट, COGENT। कॉजेंट मीन्स क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग एंड वेल सपोर्टेड बाई फैक्ट्स और एविडेंस। एंड द सेंटेंस फॉर्मेशन वुड बी, ड्यूरिंग द नेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन शी प्रेजेंटेड अ कॉजेंट आर्ग्यूमेंट दैट कम्प्लीटली कन्विंस द ज्यूरी मेंबर्स।
1: तो दोस्तों, अनुज्ञा और कोजेंट, इन दोनों शब्दों को अपनी रोजमर्रा की बातचीत, कॉलेज के असाइनमेंट या निबंध में जरूर शामिल कीजिए। जब आप सही शब्दों का चयन करते हैं तो आपकी बात का प्रभाव यकीनन दोगुना हो जाता है।
0: तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं पीछे, यानी उन घटनाओं का जो हर तरीके से हमारे लिए कारगर ही साबित होंगी, यानी इतिहास में आज का दिन। वैसे हमारा इतिहास केवल बीते हुए कल की बातें नहीं होता, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हम इंसानों ने कितने करिश्माई खेल खेल कर इतिहास में अपना झंडा हमेशा के लिए बुलंद कर दिया है।
1: जी हाँ दोस्तों, तो आते हैं हमारे पहले। तो 3 अगस्त 1994 भारत के चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में आज का दिन स्वर्णमय अक्षरों में लिखा गया था। नई दिल्ली के एम्स में डॉक्टर पी वेणुगोपाल और उनकी 20 डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम ने भारत का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। इस ऐतिहासिक शल्य चिकित्सा ने भारत को विश्व स्तरीय चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित कर दिया।
0: और अब बात खेल और फुटबॉल के मैदान से भी, जहां आज के दिन एक बहुत बड़ा नाता है आज के हमारे इस दिन से, क्योंकि 3 अगस्त 1984 यानी आज ही के दिन भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान, करिश्मा स्ट्राइकर और कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से मशहूर सुनील छेत्री का जन्म सिकंदराबाद में आज ही के दिन हुआ था।
1: 3 अगस्त 2004 में अंतरिक्ष विज्ञान और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बुध ग्रह मरकरी का अध्ययन करने के लिए अपना ऐतिहासिक मैसेंजर अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक लॉन्च किया था।
0: तो वाकई मेरे दोस्तों, आज का ये दिन, ये सभी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जब इंसान की सोच सकारात्मक होती है, रचनात्मक होती है और नियत में निष्ठा होती है, तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। और बाकी हमारी जानकारियां भी अभी आपको और जो है प्राप्त होंगी, लेकिन क्यों ना उससे पहले एक और गीत सुनते चलें।

0: दोस्तों, हम जानते हैं कि आप में से कुछ ऐसे युवा भी हैं जो रोजगार के लिए दिन ब दिन खूब मेहनत कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहने हैं कि हम आपको कुछ बताएंगे ऐसी सूचना जो कि आपसे रोजगार में
1: कारगर
0: काम आए।
1: साबित हो, काम आए। तो इसी के साथ दोस्तों, आरआरबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। और आपको बता दें कि ये भर्ती 119 रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और आप 14 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इनकी आधिकारिक वेबसाइट rrb.gov.in पर।
1: और हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे को भी, विनर जो उनके आए हैं कल के, उनको विजिट करते हैं, उनके पेशेंस का इम्तिहान ज्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन उससे पहले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे रिपीट कर देते हैं, जो कि है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को वर्ष 2026 के लिए किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। और जिन साथियों ने इसका सही जवाब दिया उनके नाम है दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, ये हैं पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से।
0: आप सभी दोस्तों को हमारी युवाड़ी की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न सुनते हैं। चलिए, तो हमारा आज आपसे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 1 घंटे में सबसे अधिक पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
1: तो अपने उत्तर हमें भेजिएगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल youth AIR वाराणसी पर, या फिर मेल कीजिएगा youth AIR VNS@gmail.com पर। और देखिए ना दोस्तों, कैसे ही बातों में ये 45 मिनट का समय बीतता गया, पता ही नहीं चला। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम दिया जाए।
0: लेकिन मेरे दोस्तों, आज आपसे विदा लेने से पहले एक ऐसे टॉपिक पर बात खत्म करना चाहता हूं जहां से शायद हम शायद चुप भी हो जाएं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। और वो रहस्यमय विषय है वाटर कंजर्वेशन, यानी जल संरक्षण। जल संरक्षण केवल मंचों पर भाषण देने या पोस्टर बनाने से नहीं होगा, इसकी शुरुआत हम सभी को अपने रोजमर्रा के जीवन और अपने घरों से करनी होगी। यदि हमने अब भी बूंद बूंद की कीमत नहीं समझी तो आने वाले वक्त बहुत ही शोचनीय हो सकता है।
1: तो इसी सुंदर, सार्थक और संजीदा संदेश के साथ अब आपसे विदा लेने की घड़ी आ गई है। लेकिन जाने से पहले आपकी दोस्त सैयबा हर बार की तरह यही गुजारिश करेगी कि ख्याल रखिएगा मेरे दोस्तों, अपना, अपनों का और अपने आसपास के लोगों का भी।
0: बाकी समय का ख्याल रखते हुए अपने आरजे दोस्त तैयब
1: तैयबा
0: और भास्कर को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार,
1: जय
0: जय
1: हिंद,
0: हिंद,
1: हर
0: हर
1: हर
0: हर
1: महादेव।
0: महादेव।
2: युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गए। सत्र के पहला दिन आज विधानसभा के कार्यवाही के दौरान दिवंगत विधायकन के श्रद्धांजलि दिया गई। एक बाद विधानसभा का कार्यवाही बिहने भी नहीं 11 बजे तक खातिर स्थगित कर दिया गई। सत्र से पहले मीडिया से बतियावत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहने कि पिछला 9 साल में प्रदेश के परसेप्शन के बदलने में सफलता मिलल हो। वहां के कहने कि प्रदेश के बेमारू राज्य के श्रेणी से निकाल के एगो रेवेन्यू सरप्लस राज्यों बनोले में कामयाबी मिलल बा। मुख्यमंत्री सदस्यन से सदन के समय का बढ़िया उपयोग कैलहू को आग्रह कैले।
1: यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है।
0: मानसून सत्र 6 अगस्त ले चली। संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बिहने वित्तीय वर्ष 2026-27 को अनुपूरक बजट पेश करी है। लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशन का संख्या संशोधन विधेयक 2026 आज पारित कर दिलस। यह विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशन के संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशन की संख्या 33 से बढ़ा के 37 कर लो। इस संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त हवे। यह बरिस मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशन की संख्या 33 से बढ़ा के 37 करे बदे एगो अध्यादेश जारी कैले रहलिन। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार के निर्देश देले हो कि हर सड़क पर पैदल चले वाले यात्रियन बदे उचित रूप से सीमांकित आ अतिक्रमण मुक्त जगह सुनिश्चित कर जाए।
2: न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज को संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। पीठ ने ऐसे निर्देश जारी करने को कहा जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: पवित्र सावन महीना के पहला सोमवार पर आज तड़के से भगवान शिव का पूजा अर्चना कैल जा रहा हो। प्रदेश के सजो प्रमुख शिव मंदिरन आ शिवालयन में ढेर संख्या में श्रद्धालु पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के सावन महीना के पहला सोमवार पर शुभकामना देत लोक मंगल का कामना कैले हवे। वाराणसी में सावन महीना के पहला सोमवार के दिने श्रद्धालु आ कांवड़िया लोगिन का उछा चरम परवा। एगो रिपोर्ट।
3: सावन के प्रथम सोमवार पर धर्म नगरी काशी पूरी तरह शिव महर उठी। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। गंगा द्वार से बड़ी संख्या में कांवड़िए महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में पहुँच कर दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही मृत्युंजय महादेव मंदिर, तिलभांडेश्वर महादेव, मार्कंडेय महादेव, केदारेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ महादेव, दुर्गा कुंड स्थित शिव मंदिर तथा सारनाथ क्षेत्र के प्राचीन शिवालयों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। डाक बम कांवड़ियों के लिए अलग लेन तथा भदोही से वाराणसी तक एक लेन कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षित रखी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल भी स्थगित रखा गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: बस्ती जिला के श्री भदेश्वरनाथ मंदिर, अयोध्या का श्री नागेश्वरनाथ मंदिर, गोरखपुर का महादेव झारखंडी मंदिर आ बाराबंकी का श्री लोधेश्वर महादेव धामों में आज भोरवे से श्रद्धालुओं का भारी भीड़ भगवान शिव का जलाभिषेक आ

दर्शन पूजन कर रहल हो। मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7 अगस्त ले कहीं कहीं भारी बरखा का येलो अलर्ट जारी कैले हो। विभाग के मुताबिक यही इलाकन में आज व बिहने गरज चमक के साथे कहीं कहीं बिजलियों गिरले के आशंका बनल बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। संसद समीक्षा होगी आज रात 8 बजे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, और विधानमंडल समीक्षा का समय रहेगा रात्रि 8:20, जो लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित ऋत्विक सान्याल का गायन। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात 9:30 पर। रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा मुशायरा। प्रतिभागी होंगे निसार अहमद, मासूम रजा राशिद, खलील अहमद राही और अयूब अंसारी।

फिल्म संगीत श्रोता सुन सकेंगे शाम 6:10 पर, शाम 7:00, 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में और रात 8:30 पर रस माधुरी कार्यक्रम में। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। संसद में हुई प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण समय रहेगा कल रात 10:00 और संसद समीक्षा होगी रात 8:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। विधानमंडल समीक्षा का प्रसारण समय रहेगा रात 8:20 जो लखनऊ केंद्र से रिले होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में अमरनाथ मिश्रा का सितार वादन सुनिएगा रात 10:30 पर और उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन सुनिएगा सुबह 7:31 और दिन में 12:45 पर। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में नींबू वर्गीय पौधे लगाएं विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना होगा सुबह 6:10 पर और विचार बिंदु 6:30 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुनिएगा सुबह 6:10 पर और विचार बिंदु 6:30 पर। सुबह 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में ग्लूकोमा कारण और समुचित चिकित्सा विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुनिएगा सुबह 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 7:00 और मधुरिमा 8:45 पर। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन में 11:00। महिलाओं के लिए अंगनैया कार्यक्रम होगा दिन में 1:15 पर जिसमें रीति सान्याल की वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा सशक्त नारी उन्नत समाज। साथ ही होगा गीत संगीत। शाम 5:00 होगा कार्यक्रम धरती के गीत। 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी जिसमें कल के आकर्षण होंगे आज की बात, क्या आप जानते हैं, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर जिसमें खरीफ में सब्जियों को हानिकारक कीटों से बचाएं विषय पर डॉक्टर कुलदीप सिंह से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही श्यामदेव प्रजापति और साथियों के गाए लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुबह 9:50 और दिन में 1:45 पर भी सुन सकेंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

आप आए बहार आई इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जो रिले होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: खेती किसानी का हाल हो भैया?
1: कुल हाल चाल बढ़िया भैया, खेती किसानी भी बढ़िया चलत हो। एक चीज़ ये हो भोला भैया कि जैसे कुछ खेती में तो बड़ी आसान होत हो, लेकिन कुछ में देखल जाए कि तनी ज़्यादा समस्या आ जात हो और वहाँ मेहनतों पड़ जात हो ज़्यादा।
0: भाई देखा, मेहनत का तई कामे बा। हाँ, कोनो कोनो अपन खेती में जोन कार्य हो सरल बा, बाकी तो देखाई अपन जोन काम हो ना खेती किसानी,
1: मेहनत
0: वो
1: का।
0: मेहनत का काम नंद भैया।
1: इमा जैसे अब अपने धाने के देखल जाओ भोला भैया, तो धान में समझला खेत के तैयारी से लेके जोन आ जब नर्सरी डाल देहलस, ओकरे बाद एक समस्या बस ये है जोन रोपनी होत न, रोपनी में बड़ी समस्या आवत है। मजूरा मिलल देखा भैया मुश्किल हो जात है।
0: भैया मजूरा का नाम लेला है नंद भैया ना, तो देखा मजूरा के वजह से देखा कितना किसान भाई लोगन का रोपनी अब बो रुकल बा। हैं कुछ तो जो चतुर किसान वो करके खाली हूँ।
1: ए भैया हो देखा एक चीज ध्यान देवे के हो भोला भैया कि अब ये दूसरे के भरोसे ही ना खेती हो, खेती अपने दम पे करे के है भैया।
0: कहे ना भैया,
1: अब मेहनत से पीछे ना हटे के हो।
0: बिल्कुल।
1: हम तो देखा अपने रोपनी के समय न अपने घरे का परानी भी परानी लग गई ना, आ साथे हो नाते रिश्तेदारी से भी आए गल रहन लोग, आ उम्मा जो है ना मेहरारू लोग जोन रहनी बड़ा मदद के नी भैया।
0: कहे ना भाई, देखा मेरारू के लोग थोड़ा सा सोचा ना कि ई कमजोर एक अंग हो, पर वो बड़ा दमदारी से बड़ा मेहनत से परानी
1: ए
0: अपने पस परानी के साथ देनी।
1: बिल्कुल भैया हो देखा कहल जाला कंधे से कंधा मिला के जोन है मेहरारू चले नी तो घर परिवार सब बढ़िया रहेला। अपन हमहन अपने खेती किसानी में देखल जाए तो अपन खेती किसानी बढ़िया टोटेल रहेला।
0: काहे ने नंदू भैया ठीक कैला है, काम तू कैला कि अपने हित नातर रिश्तेदार लोगन के बुला के अपन रोपनी कर कई लेला है। काहे कि देखा अगर समय से ना होई तो अपन खेती किसानी पिछड़ जाई।
1: ई तो हो भैया। आ एम्मा देखा ये योगदान जोन है ना मेहरारून के योगदान के हमन भुला ना सकित जा, चाहे खराई से लेके हर चीज़ का व्यवस्था करे नी, समय से अगर खेते डाणे गईला सिमाने गईला तो तुहार खराई का इंतजाम कर दी है, ना अगर घरे समय से इला तो तुम्हें उनजे डाणे ले जाके पहुँचा दी है।
0: काहे ने भैया, देखा खराई हो गल, बाल बच्चा हो गलन, गोरु चौवा हो गिन, उनके तो सब कुछ देखे के न बा हो नंद भैया।
1: आ देखा घर परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा
0: अरे
1: मेहरारू हैं।
0: अरे आधार है हूँ।
1: आ भाई गाढ़े वक्त में देखल जाए तो कुछ जोन हो व्यवस्था भी आर्थिक रूप से मदद कभी वो करे नहीं,
0: हाँ।
1: कि जोन काट कपट के बचाए के रखले रहे नहीं ना वो बड़ा काम देला।
0: नंदू भैया देखा जोन बात कहला गाड़े समय का ना, तो जब मनई जब एकदम ओकर जोन जेबा खाली हो जाला तो वो आखिरी समय में अपने पस परानिये के पास जाला।
1: ए भैया हो देखा परानी के बात हो तो जैसे घरे में मेहरारू बाणी तो उनके बदे हमहन तो कुछ न कुछ करी ला जा कि भाई जोन कमाई होत बा ओकर एक हिस्सा दे दही ला जा कि
0: बिल्कुल,
1: लाई बचा के रखा अपन जोन भी खान खर्चा रही उमा इस्तेमाल करा।
0: इस्तेमाल
1: आ
0: करा।
1: सरकार भी भैया हो देखा मेहरारून बदे जोन है बहुत सा योजना निकलले रहत है कि जैसे उनकर भी जोन है सशक्तिकरण जेके कहल जाला वो हो।
0: हाँ, जोन कमी बा वो
1: हाँ
0: पूरा
1: वो
0: हो
1: पूरा
0: सके।
1: हो सके, और न पूरा हो तो कम से कम एक सहारा हो जाए।
0: सहारा हो जाए।
1: आ तमाम तरह के योजना जोन है सरकार चलावत बा। एम्मा देखा जोन अल्पसंख्यक मेहरारू हैं खास तौर से उनके बदे भी बड़ी व्यवस्था करल
0: हाँ,
1: जात
0: जे
1: हो।
0: मन जैसे कि अल्पसंख्यक समुदाय में जोन महिला आवे नी नंदू भैया, जैसे मुस्लिम महिला हो गिनी, सिख महिला हो
1: हाँ
0: गिनी,
1: खास तौर से हुआ है।
0: ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के जो महिला हैं ना, ये महिला लोगन के बढ़ाए बदे, उनके शिक्षित करे बदे, आत्मनिर्भर बनाए बदे सरकार देखा तरह तरह की योजना समय समय पे लिया वाला, ताकि उन भी अपन ताल से ताल और कदम से कदम मिला के समाज के स्तर
1: साथे चले।
0: पे साथे
1: हाँ
0: चल
1: हाँ
0: सकें।
1: भैया वो देखा हो का कि ये दुनिया में जोन है ना तमाम तरह का काम हो, आ कौनो ऐसन काम भोला भैया हो ना जोन मेहरारू न कर सकें।
0: कहे ना भैया, सही कहत हो।
1: बड़े से बड़ा काम आ छोटे से छोटा काम जोन है मेहरारू कर सकत हैं। तो सरकार जोन है यह कुल व्यवस्था करत है कि जोन छोट छोट काम है अगर वही के अपने आजीविका का साधन रोजगार का साधन अगर मेहरारू बना
0: बना
1: ले
0: ले
1: तो ये बहुत बड़ा एक तरह से प्रयास हो जाला घर परिवार के सम्हारे में।
0: कहे ना नंदू भैया, ये देखा ये जोन सरकार अपन योजना चलावे ला ना, तो ओकर के मकसद होला और ओकर इ योजना का मकसद देखा इहे हो कि जौन समाज में जो अल्पसंख्यक महिला हैं, जो पिछड़ल हैं, जो वंचित रह गए हैं, वो लोगन के समाज में बराबरी के अवसर मिले हैं और आर्थिक रूप से उनके मजबूत बनावल जाए, उनके स्तर के सुधारल जाए।
1: बहुत तरह का तो सिलाई कढ़ाई बुनाई कुल चीज व्यवस्था भाई तो सामान्य हर घर के मेहरारून के देखाई कुल आवेला
0: आवेला
1: आ वही के बस तन्नी सी और सहारा।

0: जाए और थोड़ी कौशल के रूप में बढ़ा जाए कि
1: बढ़ा जाए।
0: भैया और बढ़िया से काम कर सकें, तो समझला कि एक ठे आय का बहुत अच्छा स्रोत यहाँ से
1: स्रोत
0: उपलब्ध
1: हो
0: हो
1: जाए,
0: जाला।
1: बिल्कुल घर के काम साथे साथे आमदनी का भी रास्ता
0: बिल्कुल
1: बन जाए, है नंदू भैया?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: यही
0: भैया
1: में देखा है एगो सरकार का बहुत अच्छा योजना हो,
0: कहा भैया।
1: नई रोशनी योजना। इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक जो महिला है ना भैया हो, उनके देखा नेतृत्व क्षमता बढ़ाए बदे, उनके शिक्षा और उनके स्वास्थ्य तथा उनका जो आत्मविश्वास हो ओके और बढ़ाए और मजबूत बनाए बदे सरकार योजना चलावला।
0: ये भैया देखा हर चीज़ बदे जोन है ना प्रशिक्षण जोन है बहुत ज़रूरी है भाई। हर चीज़ के जोन बारीकी है अगर जब ना समझी तो कहीं न कहीं बड़े स्तर पे अगर कोनो काम करे जाता तो वहाँ आदमी फेल हो
1: फेल
0: सकत
1: हो
0: है।
1: जाए,
0: तो
1: सही।
0: ये जरूरी है कि भाई ओकर हर चीज़ का बारीकी सीख है। अब प्रशिक्षण यही बदे जोन है सरकार करावे ले।
1: अच्छा इतने ना नंदू भैया,
0: हाँ भैया
1: देखा एम एन एक नई मंजिल योजना हो,
0: हाँ वो
1: ई
0: कहा भैया।
1: मंजिल
0: हाँ
1: ई नई मंजिल योजना ई बहुत अच्छी योजना हो सरकार का।
0: अच्छा कहा।
1: ई योजना में देखा जोन अपन बहन बिटिया जोन पढ़ाई छोड़ देले बानी है ना, जो युवती जो पढ़ाई छोड़ देले बानी बीच में, वो लोग फिर से पढ़ाई करके अपने आप के शिक्षित कर सकलिन, अपने हुनर के
0: तो
1: आगे बढ़ा
0: बिल्कुल
1: सकलिन।
0: माने कि जोन भी अल्पसंख्यक वर्ग का जोन महिला लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ ले बाणी तो उनके भाई मायूस ना होए के हा रास्ता
1: वो
0: बहुत
1: फिर
0: सा हा।
1: उनके फिर से मौका
0: हाँ
1: सरकार द्वारा
0: मौका भी
1: मिलत हो।
0: मिली आ भाई रास्ता हो बहुत सा ऊपर चले चल के अपन जोन मंजिल है जैसे मंजिल का नाम है रहा योजना का तो अपन मंजिल जोन है पा ली है भैया। ए भोला भैया हो
1: हाँ नंद भैया।
0: देखा बड़ा बद कही तो भल हमन का लेकिन अब ही ना अपने पंच लोग के हई जोन संदेश है एके सुनवावल जा फिर और बात
1: हाँ
0: हुई।
1: बिल्कुल भाई भैया, सुनवा दा।
2: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नंदू भैया संन्यास्त हो गल, अब चलल जाए अपने खेती बाड़ी की ओर। तो देखा आज अपने पंचायती में तोरिया की खेती की विषय पे बात हुई। डॉक्टर राहुल कुमार सिंह और उनसे बात बत गई, कहले वो सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया, तो हम लोग भी सुनल जाए और पंच लोग भी सुनल जाए।
2: डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, आप वैज्ञानिक हुआ कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी में। आज हम आपसे ये जानल चाहब कि जौन हमारे किसान भाई लोग तोरिया के खेती कर चाहत हो, तो ओकरे विषय में उन्हें जानकारी आपके माध्यम से देवल चाहब, तो कौने समय में और कैसे ओकर खेती करें, एक विषय में आप जानकारी दें।
3: पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसे अभी ये जो समय चल रहा है, ये जो समय है और ये तोरिया की खेती के लिए बिल्कुल भी जो है उपयुक्त समय है।
2: अच्छा।
3: और बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं इस समय तो जिनकी धान की फसल का जो है बाढ़ में जो है नुकसान हो गया होगा, या फिर कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कम बारिश हुई है तो धान की बुआई नहीं कर पाए, या फिर फसल अगर नष्ट हो गई, या फिर कई बार हमने देखा है कि किसानों की कोई और व्यक्तिगत कारण के कारण जो है खेत खाली रह जाता है
2: जी, जी।
3: तो ऐसी स्थिति में जो है तोरिया एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो किसान भाई जो है, मैं आपसे, आप लोग जानते होंगे कि तोरिया की जो बुआई है वो सितंबर माह में जो इसकी बुआई का जो है उपयुक्त समय है, और पूरे माह भर में जो है इस तोरिया की जो है बुआई करके हम एक जो है अतिरिक्त लाभ के रूप में जो है वो पैसा कमा सकते हैं।
2: तो सितंबर में बुआ का मतलब है कि ओकर तैयारी शुरू कर देना चाहिए।
3: जी बिल्कुल।
2: तो कैसे खेत का तैयारी कैसे करें?
3: ये देखिए, तोरिया की खेती जैसे हमारे सामान्य तौर पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कम से कम एक जो है गहरी जुताई करके, एक जो है आप मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके, और दो फिर जो है आप कल्टीवेटर से जुताई कर दें, या फिर अगर रोटावेटर है तो एक जुताई रोटावेटर से करके खेत को जो है मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी बना लें, और फिर नमी की अवस्था में ही जो है उसमें आप तोरिया की जो है बिजाई करें। एक चीज और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि कई सारे हमारे इसमें खेती बाड़ी के कई

0: सारे ऐसे कार्य हैं जो खेत की तैयारी के समय ही हमें जो है संपादित कर देना चाहिए।
1: कौन?
0: जैसे इसमें आपको कहा जाता है कि कम से कम कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद है वो कम से कम जो है 4 टन, अगर आपके पास अगर कम मात्रा में अवेलेबल है तो कम से कम 4 से 5 टन जो है आप प्रति हेक्टेयर तो डाले ही डालें। तो ये जो है आप खेत की जब तैयारी करते हैं तो उसी समय आपको जो है मिट्टी में अच्छे
1: जुताई
0: से
1: के
0: मिला देना
1: पहले
0: है।
1: डाल दें कि जुताई करने के बाद
0: जी, जुताई करते समय, जुताई से पहले अगर डाल देते हैं तो जुताई जब करेंगे तो पूरी
1: खेत
0: तरीके
1: में
0: से
1: मिल
0: खेत में
1: जाएगी?
0: मिल जाएगी और ये पूरे आपके खेत में फैल जाएगी, तो इसका रिजल्ट जो है अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर भूमि शोधन अगर आप कर लेते हैं या फिर अगर आपके खेत में जड़ काटने वाले कीड़े की समस्या है तो आप ब्यूवेरिया वेसियाना एक नामक जैविक दवा आती है, इसको आप चाहें तो इसे भूमि शोधन करके इसको भी मिट्टी में आप मिला दें तो कई
1: वो
0: जड़
1: जुताई के
0: काटने वाले,
1: समय?
0: जी बिल्कुल, खेत की तैयारी के समय है इसको डाल दें। तो ये काम अगर आप कर लेते हैं तो कई सारे कीड़े जिन पे आप ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं वो आपको तो नहीं करना पड़ेगा।
1: तो खेत जौन हो, मान ला कहीं कहीं देखे में आवत हो कि जैसे सितंबर में भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाले, तो
0: जी
1: अगर खेत में पानी बाए तो उमन ना लगाते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, नहीं अगर इस एक बात का आपको ध्यान देना होगा, आप थोड़ा सा जब भी आप इसकी बिजाई के लिए जाएं तो मौसम का जो पूर्वानुमान है, अब तो आंकड़े कई सारे मीडिया से मिलते रहते हैं,
1: जी
0: तो ये जरूर देख लें कि जो है उसमें जो है बुआई के समय या फिर बुआई के तुरंत बाद जो है भारी वर्षा ना हो जाए। और एक चीज का और ध्यान देना है कि आपको ये देखना है कि मिट्टी का पीएच आपका, वैसे तो ये बलुई और बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी बुआई की जा सकती है, लेकिन पीएच अगर 6.5 से 7.5 तक है तो इसकी जो है पैदावार उसमें अच्छी होगी। दूसरा ये है कि जल निकासी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कभी कई बार देखा गया है कि लेट जब बारिश होती है तो हैवी बारिश से भी जो है हमारी फसल नुकसान हो सकता है, इसलिए जल निकास की व्यवस्था इसमें जो है,
1: अगर पानी लग जाए खेते में
0: हाँ
1: तो जल
0: बिल्कुल, हाँ
1: मतलब गल जाए?
0: बिल्कुल, आपकी जो है फसल चौपट हो सकती है, इसलिए जल निकास की जरूर व्यवस्था जो है आप उसको देख लें।
1: तो खेत तैयारी के बाद फिर एक बुआई कौन विधि से करें, कैसे?
0: जी बुआई के लिए जो है, बुआई के लिए अगर आप लाइन से बिजाई करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको पैदावार जो है अच्छी मिलेगी। उसके लिए आप अगर सीड ड्रिल से बुआई करते हैं या फिर किसी और यंत्र से, अगर लाइन से आप बुआई कर रहे हैं, पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आप 10 से 12 और मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, तो अगर इसको इस दूरी को मेंटेन करके आप जो है लाइन से बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको पैदावार जो है अधिक मिलने वाली है। साथ ही साथ कई सारी प्रजातियां भी आज के डेट में तोरिया की जो है आ गई हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर सितंबर के प्रथम पखवाड़े में आप बुआई कर रहे हैं तो उसमें कई सारी प्रजातियां हैं जिसमें आपका PT30 है, PT330 है, साथ ही साथ Type 9 है, इसके अलावा जो है एक वैरायटी है तपेश्वरी, और अभी रिसेंट में ही एक आचार्य नरेंद्र विश्वविद्यालय की वैरायटी है जिसका नाम है नरेंद्र अगेती तोरिया 4, और साथ ही साथ पूसा की वैरायटी, एक पूसा 25 जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए है और एक पूसा 27 करके है जो ऑल ओवर यूपी के लिए है। तो ये सब वेराइटियों का चयन करके हमारा किसान भाई चाहे तो तोरिया की बुआई कर सकता है। अगर बुआई 15 सितंबर के बाद जा रही है तो एक भवानी नाम की प्रजाति है जो 75 से 80-85 दिन में तैयार हो जाती है, तो जब आप बुआई लेट हो रही है तो निश्चित तौर पे आप जो कम दिन वाली और कम दिन वाली वेरायटी है उनका चयन करिए, और ये जो समय से बुआई की जा रही है जिन वेरायटियों का, तो वो लगभग आपका जो है 90 से लेके एक मैक्सिमम 110 दिन में जो है वो
1: तैयार हो
0: तैयार हो
1: जाएंगे।
0: जाती हैं। और अगर इनकी उत्पादन क्षमता को भी देखा जाए तो वो लगभग 12 क्विंटल से लेके, और जो अच्छी वेरायटियां हैं उसमें जो है 18 क्विंटल 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक जो है वो मिल जाता है।
1: अच्छा, तो जैसे आप बतौना कि 15 सितंबर के बाद बुआई कर रहे के हो तो अलग दूसरा प्रजाति बुआई के होगी,
0: जी
1: तो का उत्पादन पर कुछ असर पड़ेगा करेगा?
0: जी बिल्कुल, अब जैसे मैंने बताया कि जो वैरायटी कम दिन की है, अगर हमारी बुआई लेट हो रही है तो कम दिन की वैरायटियों का जो है वो चयन करना चाहिए ताकि हमारी जो है पैदावार पे जो है असर ना पड़े।
1: अच्छा।
0: जी, तो वो भवानी का मैंने बताया वो 75 से 80-85 दिन में तैयार हो जाती है, बाकी जो वैरायटियां मैंने बताई वो 90 से लेके 110 दिन जो है उसका जो है वो टाइम है, तो उसमें जो है उस पर जो है उत्पादन पे बहुत ज्यादा वैसा असर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर इसके साथ इसमें एक बात और ध्यान रखते हैं, जो अगर उर्वरक प्रबंधन में बात की जाए तो उर्वरक में चूंकि ये तुरिया तिलहन की फसल है तो इसमें सल्फर की मात्रा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है,
1: अच्छा।
0: तो अगर हमारी सिंचित भूमि है तो सिंचित भूमि के लिए कम से कम आपको जो है, अगर मैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताऊं तो 130 किलोग्राम आपको जो है वो यूरिया

0: आपको खेत में डालना होगा, 150 किलोग्राम SSP डालना होगा और 35 किलोग्राम पोटाश डालना होगा आपके खेत में। अगर आप जो है SSP आप अपने खेत में डाल देते हैं तो आपको अतिरिक्त रूप से सल्फर डालने की जरूरत
1: ना पड़ेगा।
0: नहीं पड़ेगी। अगर किसी कारणवश आपको SSP नहीं मिलता है तो उस केस में आपको जो है वो चाहे तो आप दूसरा विकल्प भी चुन सकते हैं। और अगर असिंचित दशा है तो असिंचित दशा में आप 80 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आपको प्रयोग करने पे जो है इसमें जो है रिजल्ट अच्छा मिलता है। SSP जहां पे उपलब्ध नहीं है तो वैसे स्थिति में हमारे किसान भाई जो है जिप्सम को अगर 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय ही खेत में इस्तेमाल करें तो उनमें जो है तोरिया में जो है तेल की मात्रा जो है उनकी अच्छी
1: अच्छी
0: बैठेगी।
1: रहेगी।
0: जी
1: एक चीज और आपसे जानना चाहे कि जैसे आप ये बतौना है कि हाँ खेत की तैयारी के समय ही उमन जो है शोधन कह दें कभी ठीक
0: जी
1: है, तो क्या बीज शोधन भी करे के पड़ी कि नहीं?
0: जी बिल्कुल, बीज शोधन भी बहुत जरूरी है। जैसे कई सारी बीमारियां हमारी फफूंद जनित बीमारियां इसमें देखने को मिलती है, जैसे हमारा सफेद गिरुई है, तूला थीता बीमारी है, तो ये जो फफूंद जनित बीमारियां हैं तो ये जो है फफूंदों के कारण होता है। तो इसके लिए अगर हम शुरू में ही बीज शोधन कर लेते हैं, बीज शोधन के लिए अगर जैविक करना है तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, अन्यथा अगर रसायन पर जाना है तो आपके पास बवास्टीन है, थीरम है, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज को शोधित कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जरूरी एक हो जाता है सिंचाई, क्योंकि ये जो खरीफ और रबी के बीच में इसको बुआई का ये समय है तो कई बार तो बारिश जब हो जाती है तो बारिश की दशा में अगर हमारी बारिश हमें फूल के समय मिल गया और दाने पड़ते समय मिल गया तब तो सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, अन्यथा की स्थिति में दो सिंचाई इसमें बहुत ही जरूरी है, एक फ्लावरिंग पे और एक जो है पॉड फॉर्मेशन पे।
1: मतलब बुआई के कितना दिन बाद करें?
0: हाँ, ये जो है कम से कम पहली सिंचाई बुआई के 30 दिन बाद, अगर
1: अच्छा।
0: अगर मान लीजिए एक ही सिंचाई का साधन आपके पास अवेलेबल है तो बुआई के 30 दिन बाद आपको जो है सिंचाई वो करनी ही करनी है।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: अगर आप सिंचाई की ऐसी व्यवस्था कर लें, जल निकास की व्यवस्था कर लें तो पैदावार आपकी जो है अच्छी होगी।
1: अच्छा
0: जी
1: तो एक चीज और बतावे कि इमन जो है बुआई के बाद जैसे कुछ खरपतवार जमत हुई है,
0: जी
1: कुछ कीट पतंगा लगत हुई है, तो
0: जी
1: कौन कौन
0: बिल्कुल।
1: सा रोग इमन
0: देखिए
1: लगेगा?
0: खरपतवार प्रबंधन में मुख्य रूप से जो है पेंडीमेथिलिन बड़ा ही कॉमन नाम है, तो पेंडीमेथिलिन को बुआई के बाद और 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर इसका 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से जो है हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। फ्लैट फैन नोजल के द्वारा इसको दवा को छिड़केंगे सुबह या शाम के समय में। इसके अलावा जो है हमारे किसान भाई चाहे तो जब हम हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो उसमें हम जो है पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को मेंटेन करने के लिए हम चाहे तो उसमें निराई गुड़ाई कर सकते हैं। निराई गुड़ाई के समय अनावश्यक पौधों को हम इससे जो है बाहर निकाल देंगे तो एक साथ हमारा दो काम होगा, एक तो
1: साफ
0: जो
1: सफाई
0: है
1: भी हो
0: साफ
1: जाएगी
0: सफाई भी हो गया,
1: और
0: खरपतवार भी हमारा निकल गया,
1: निकल
0: तो अगर
1: जाएगी।
0: दो निराई गुड़ाई कर लेते हैं तो हमारी फसल में जो है खरपतवार मुक्त भी रहेगा और पैदावार भी जो है वो अच्छी आएगी।
1: जो खाद जो है खरपतवार नहीं है तो पौधा तो मिलने
0: जी
1: में।
0: जी जो सीधी सी बात है कि जो उनको मिल रहा है वो सीधे हमारे पौधे को मिलेगा, तो खरपतवार प्रबंधन में हम ये कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर कीड़े में बात की जाए तो मुख्य रूप से 3-4 प्रकार के कीट हैं जो उसमें जो है देखने को मिलता है। एक तो दीमक हुआ, तो दीमक के लिए जो है मैंने बताया भूमि की तैयारी के समय ही आप अगर जो जैविक दवा बताई है बिवेरिया वेसेना उसका प्रयोग कर लेंगे तो वो नियंत्रित हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: उसके अलावा इसमें माहू देखने को मिलता है, एक आरा मक्खी इसमें जो है कीट लगती है जो फसल को काफी प्रभावित करती है, ये काले रंग की होती
1: ये
0: है।
1: कौन समय पर लगा लीजिए?
0: तो ये जो है जब हमारी जो फसल है वो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वाली जैसे अवस्था बढ़ती है आगे बढ़ती है तो ये
1: अच्छा।
0: जो है पत्तियों को खाने लगते हैं, तो उसके लिए भी अगर ऐसा इस इन कीटों का प्रकोप दिखे तो हमें जो है एक दवा आती है रासायनिक दवा मिथाइल पैराथियन डस्ट जो है 2%,
1: अच्छा।
0: इसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। अगर माहू लगा है तो माहू के लिए हम चाहें तो आप येल्लो स्टिकी कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, 10 से 15 कार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करेंगे तो येल्लो स्टिकी कार्ड पे क्या होता है कि माहू पीले रंग से आकर्षित होती है, उस पर जाके चिपक जाती है और मर जाती है, तो ये मॉनिटरिंग करने के लिए भी अच्छा है प्लस जो है इसके प्रबंधन में भी बड़ा ही कारगर है। तो उसी तरीके से जो है ये हमारी आरा मक्खी हुई, चाहे हमारा ये माहू हुआ, दीमक हुआ, तो इन सब कीटों का जो है, इसके अलावा एक बालदार सूड़ी आती है, तो उसको भी जो है हमारे किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि खेतों की बराबर जो है रखवाली करते रहें, देखते रहें, और जैसे कीड़े का प्रकोप आए, अगर प्रारंभिक अवस्था में है, जैविक करना है,

0: तो नीम ऑयल 3 ml प्रति लीटर की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: और अगर ज्यादा कीड़े का प्रकोप है तो अन्य जो भी रासायनिक विधियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह बीमारियों में जो है सफेद गिरुई रोग, तुलसीता रोग जो है, ये बड़े ही कॉमन रोग हैं। तो इन रोगों की रोकथाम के लिए भी बाजार में कई तरह की जो है रासायनिक दवाएं अवेलेबल हैं, जिसमें एक दवा आती है, जैसे इसमें एक झुलसा बीमारी आती है, तो झुलसा के लिए जो है आपने देखा होगा कि रिंग के आकार का जो है उसमें धब्बा धब्बा
1: धब्बा बन
0: बन जाता
1: जाएगा।
0: है पत्तियों पे, तो उसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 से 2.5 ग्राम जो है प्रति लीटर पानी के साथ जो है हम खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमने सही समय पर अगर बीज शोधन और भूमि शोधन किया है तो निश्चित तौर पर ये जो बीमारियां हैं वो हमारे खेतों में नहीं आएंगे।
1: तो डॉक्टर साहब, ये अब एक बात ये जानल चाहब अंत में कि कुल जैसा आप व्यवस्था बताना, अगर ये तरह से काम अपन खेती करें
0: जी
1: तो उन्हें लाभ कितना हो जाए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
0: हाँ
1: अगर
0: जी,
1: देखा
0: ये
1: जाए तो।
0: बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे किसान भाई भी जानना चाहते हैं कि खेती करें तो कितनी हमारी लागत
1: जी
0: जाएगी और
1: जी
0: लगभग कितना लाभ आएगा। अगर किसान भाइयों के सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए, मजदूरी से लेके दवा और बीज का, तो वो लगभग जो है 30,000 के आसपास जो है, 2-4 हजार प्लस माइनस हो सकता है, 30,000-31,000 के आसपास उनका खर्चा आता है। और अगर उनका जो उत्पादन है वो एक एवरेज उत्पादन भी देखा जाए, अगर मान लीजिए 12 से लेकर 14-15 क्विंटल तक अगर उत्पादन कर देते हैं तो टोटल जो है उनका अगर एमएसपी के आसपास, एमएसपी रेट जो है इसका, उसके आसपास का भी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उन्हें प्रति हेक्टेयर जो है 45 से 50 हजार रुपए के आसपास जो है
1: फायदा हो
0: वो
1: सकेगा।
0: फायदा इसमें, इस खेती में उनको आसानी से मिल जाएगा।
1: तो भैया डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, आप इतनी अच्छी जानकारी देना हमारे किसान भैया लोगों की तोरिया की खेती कैसे करें, कितना लाभ कमा सकना, एक बदले आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, ये भोला भैया
1: हाँ नंद भैया,
2: देखा हो ई जोन तोरिया, माने जेके हमन अपने बोलचाल भाषा में लाही कहिला जा, एकरे खेती पर कितना फरिया के जोन जानकारी देना है डॉक्टर राहुल कुमार सिंह और उनसे बतियोना सुधीर कुमार श्रीवास्तव
1: तो
2: भैया।
1: भैया
2: और देखा अगर तिलहनी फसल के रूप में देखल जाए तो सरसों से पहले हो भोला भैया ये
1: हाँ
2: लाही आ जाले बाजार में, आ एक तरह से देखल जाए तो कम समय का फसल है, 70-80 दिन में भी एकदम पक के तैयार हो जाले। तो अगर किसान भाई समय, जैसे सरसों तो थोड़ा समय लेता तो उससे पहले अगर तिलहनी फसल लगा के और अगर लाभ लेवल चाहथन कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाए तो लाही का जो है खेती, माने तुरिया खेती कर सकत हूँ। और देखा कितना बढ़िया से कुल जानकारी मिल गई कि का का काम करे के हो और कौने तरीके से ज़्यादा उत्पादन लेवल जा
1: लेवल जा
2: सकत हो।
1: सकला।
2: तो ये कुल बात कही तो हो गल। आ अब पंच लोग जो है ना जोहत हुई मन मनसायन,
1: कहे ना भैया,
2: तो एकरे बदे जो है ना सूबेदार यादव और उनके साथी लोगन का गौनई अपने पंच लोग के सुनवावल जाए।
1: सुनवा देवल जी भैया।

0: कन्हैया पे सोहे फरुआ कुदरिया,
1: भैया।
0: सूबेदार यादव और साथी कई देखा गीत गव नहीं रहल है,
1: नहीं देखा
0: तो नंदू भैया
1: गौ नहीं होगल
0: गव
1: हा।
0: नहीं होगल।
1: अब जो अपने पंच लोगन के भोला भैया काल के कार्यक्रम के बारे में बतावल जाए तो देखा बिहाने 6:05 पर हुई खेती का बात। एम्मा जोन है नींबू वर्ग का जोन भी पौधा हुआ ओके कैसे लगावल जाए का बात का ध्यान रखल जाए ए विषय पे जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
0: और सांझी के अपने कृषि जगत कार्यक्रम में और किसान वाड़ी कार्यक्रम में अगैती गोभी के खेती कैसे कैल जाए, इस विषय पर डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह से बात कैले हैं अपन शिखा दीदी, तो ई
1: तो देखा ये
0: बत
1: कुल जानकारी भी होगल काल के कार्यक्रम के बारे में भी। आ अब बोलत बतियावत हो भोला भैया चले का बेला होगल तो चलत है जा पंचों
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

यह है कार्यक्रम का पहला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म सच्चा झूठा से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, इंदीवर के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सच्चा झूठा में। इंदिवर के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। अब आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया, आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का लयबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है हमजोली।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म हमजोली के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

थाना लालगंज मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्यामा देवी, पति का नाम श्याम विहारी विश्वकर्मा, निवासी ग्राम निर्वार दक्षिण मिर्जापुर। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 31 वर्ष, लंबाई 5 फीट,

रंग सांवला है। लापता होने के समय इन्होंने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ये 24 अप्रैल 2026 को अपने घर से 8 बजे अपने मैके ग्राम चूल्ही जनपद सीधी के लिए निकली, उसके बाद वापस नहीं आई। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया संबंधित थाने को सूचित करें।

कैंट थाना अर्दली बाजार से प्राप्त सूचना के अनुसार इमरान अली खान जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, रंग सांवला, कद 5 फुट 6 इंच है, ये दिनांक 27 मई 2026 को 11 बजे से अपने घर से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया संबंधित थाने को सूचित करें। थाना भेलूपुर वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार वेदिका बिंद पुत्री राजकुमार बिंद निवासी रेवड़ी तालाब थाना भेलूपुर वाराणसी, इनकी आयु 18 वर्ष, कद 154 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ है। लापता होने के समय इन्होंने सफेद लेगिंग्स, पिंक कुर्ती और सफेद दुपट्टा पहना हुआ था। ये अपने घर से 17 जून 2026 से लापता हैं। इनके बारे में भी कोई सूचना मिलने पर कृपया संबंधित थाने को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जुड़े होंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अपना कार्ड दे, पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान विधानसभा के सदस्य रहे आलम बदी के निधन पर शोक जताया गया। इसके साथ ही 21 पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की कार्यवाही शुरू

0: होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्ष में संवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के बाद बनी योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली चर्चा और सुझावों पर काम कर सरकार आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदल सकी है और इसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाना संभव हो सका है। श्री योगी ने कहा कि इस बार भी सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि सदन के समय का बेहतर उपयोग करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा की जाए।
1: इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार 1 से 1.5 सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू करने के साथ ही न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने जा रही है। कल सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी सदस्यों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता का मुद्दा उठाया। जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। सरकार के उत्तर से संतुष्ट न होने पर सपा के सदस्यों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। विधान परिषद में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरह ही सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मुद्दा भी उठा। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर विचार करेगी।
2: शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने इस बीच माननीय सभापति जी काम किया है, कैशलेस सहित, शिक्षा मित्रों सहित, अनुदेशकों सहित इतने बड़े बड़े कदम उठाए। कोई भी अगर छूटा होगा तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग कोई छूटे न, कोई रूठे न, कोई टूटे न, इस लक्ष्य में काम कर रहे हैं।
0: लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। उद्घाटन सत्र के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के एनएसओ प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन जीएसपी 2026 का मसौदा और इसका संक्षिप्त संस्करण भी जारी किया गया। बैठक में सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ गर्ग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक डेटा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के उपयोग और गोपनीयता मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी के आदान प्रदान और साझा अनुभवों के माध्यम से ब्रिक्स देशों का उद्देश्य डेटा की कमी को दूर करना, साक्ष्य आधारित निर्णय लेना और भविष्य के लिए लचीली सांख्यिकी प्रणालियां बनाना है। सभी देशों ने ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के तहत सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता बैठक में दोहराई। प्रशासनिक डेटा की क्षमता और विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज ग्रेटर नोएडा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के साथ ही देश प्रगति के पथ पर है। आज उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है और दुनिया भर की बड़ी कंपनियां नोएडा में निवेश कर रही हैं।
3: नागरिक व्यवस्था के पहले पीछे बात करता था, आज व्यवस्था नागरिक तक पहुंच रही है, ऐसी हमारी सरकार की व्यवस्था।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन

0: हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 पदकों से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल्य मंत्र दिया, जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए कतारों में लगे हैं। प्रदेश सरकार ने वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, बागपत, कानपुर, आगरा और संभल सहित कई जिलों में सुरक्षा, सफाई, पेयजल और आवागमन को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में शिव भक्ति के साथ नारी शक्ति की भी बड़ी सहभागिता देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में महिला शिव भक्त गंगा यमुना का जल लेकर काशी के लिए प्रस्थान कर रही हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। यहां बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है और श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सावन के प्रथम सोमवार पर धर्म नगरी काशी पूरी तरह शिव महर उठी। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। गंगा द्वार से बड़ी संख्या में कांवड़िए, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में पहुंचकर दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं। डाक बम कांवड़ियों के लिए अलग लेन तथा भदोही से वाराणसी तक एक लेन कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षित रखी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल भी स्थगित रखा गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: इधर गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 4 अगस्त से 12 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया है। ये निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चेहलुंग के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूलभुलैया जैसे लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। हुसैनाबाद और संबद्ध ट्रस्ट ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फरुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: बड़ी बहू,
6: ये तुम्हारी ना
5: इतनी भी क्या जल्दी थी।
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारी ना, और ये
5: मेरी गुड़िया थी ना।
7: पर दादी, आपके नाम
8: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
7: क्या
8: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। रसरंग कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म तेरे मेरे सपने का ये गीत। गीत के बोलों को लिखा है नीरज ने और धुन बनाई है RD बर्मन ने।

रूप तेरा मस्ताना, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अगला गीत है फिल्म मेरे जीवन साथी से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और लयबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

शरीफ बदमाश। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे और आरडी बर्मन का संगीत। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म जॉनी मेरा नाम से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और उषा खन्ना ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म जॉनी मेरा नाम से ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं, हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना

चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा, ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है, जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न

मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में

तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्जवल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजेपी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से, अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से

एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: स्वच्छता ही सेवा ध्येय वाक्य को अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन अमूल्य बनाएं। स्वच्छता अपनाएं, कार्यालय की गरिमा बढ़ाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। स्वच्छ होगा जब वातावरण, तभी होगा नवजागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है। स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाएं, रोज सफाई करना भूल न जाएं। गांधी जी के सपनों का भारत हमें बनाना है। पूरा भारत स्वच्छ रहे, यही हमारा नारा है। स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही स्वच्छता अपनाएं। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा, तभी तो हर सपना सच होगा। देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। जब देश का कोना कोना स्वच्छ रहेगा, तब देश

0: का हर एक बच्चा स्वस्थ रहेगा। अविरल गंगा अविरल यमुना, स्वच्छ भारत संकल्प है अपना। न फैलाएंगे कूड़ा कचरा, स्वच्छ बनाएंगे भारत अपना।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।

0: उसमें जो रिदम है वो। जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।
1: मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: विधानमंडल समीक्षा, आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा, लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव।
1: मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान सदस्य आलमबदी सहित 21 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और सदन के वरिष्ठ सदस्य आलमबदी के निधन की सूचना दी। उन्होंने कहा कि आलमबदी इस सदन के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्य थे और पांचवी बार निर्वाचित होकर आए थे। आजमगढ़ के निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित आलमबदी उम्र के इस पड़ाव में भी राजनैतिक सक्रियता बनाए हुए थे। 90 साल की उम्र में उनका राजनैतिक जीवन निर्विवाद छवि वाला रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के शोषित वंचित लोगों के उत्थान में लगाया। वे सदन में हमेशा इसी वर्ग की आवाज उठाते थे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि अपनी पार्टी का सदस्य होने के नाते उनसे अक्सर मिलना होता था। वे इस बार भी चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े थे। राष्ट्रीय एकता की दिशा में भी उन्होंने काफी काम किया। अपना दल के सदस्य रामनिवास वर्मा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के लिए आलमबदी ने काफी कार्य किया। राजनीतिक होने के साथ उनमें समर्पण की भी भावना थी। कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के सदस्य ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सदन के वरिष्ठ और वयोवृद्ध सदस्य आलमबदी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनके निधन से इस सदन ने एक कर्मठ सदस्य को खो दिया। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सदस्य संजय निषाद और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि उनकी पहचान उनकी ईमानदारी और सादगी थी। जनसत्ता दल के सदस्य विनोद सरोज ने भी आलमबदी के निधन पर सदन में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दलीय नेताओं के बाद

0: विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आलमबदी के निधन पर वे उनके गांव भी गए थे। उनका रहन सहन काफी सामान्य था। वे सदन में हमेशा क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाते थे। आज ही विधानसभा में 21 पूर्व सदस्यों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में पूर्व विधायक भोला पांडे, अमिताभ लवानिया, जगन्नाथ चौधरी, राम प्यारे आजाद, गोपीनाथ वर्मा, यशपाल सिंह, राधेश्याम भारती, संग्राम सिंह, हरिनारायण राजभर, भगवत दयाल, अरुण कुमार मुन्ना, ओमवती, मोहर सिंह, अफसर यू आजाद, तेजभान सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, प्यारेलाल शंखवार, ओंकार सिंह, राजेंद्र त्रिपाठी और हनुमंत सिंह के निधन की सूचना देते हुए शोक जताया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने वर्तमान सदस्य के निधन की सूचना के साथ पूर्व सदस्यों के नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि पूर्व में ये परंपरा रही है कि जिस दिन किसी वर्तमान सदस्य के निधन की सूचना दी जाती है उस दिन पूर्व सदस्यों की सूचनाएं नहीं ली जाती हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि ऐसा नहीं है, पूर्व में भी इस तरह के कई दृष्टांत हैं, इसीलिए ये कोई नई परंपरा नहीं है। वर्तमान और पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना के बाद 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर सरकार को घेरा और वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया, जिसे बाद में 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बना है, इसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी। रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना जिसे आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी। हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। आज सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे वंदे मातरम से हुई। सदन में पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन में कार्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन की मेज पर रखा। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में सभापति ने सदन के पूर्व सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सदन ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की। शून्य प्रहर में भाजपा के डॉक्टर विजय बहादुर पाठक ने नियम 59 में वाराणसी स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर कहा कि सारनाथ बौद्ध परंपरा पवित्र स्थल के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्रदत्त है। ये सदन सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने पर गर्व करता है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसके साथ ही विजय बहादुर पाठक ने नियम 115 में राजस्व मामलों से संबंधित विषय उठाते हुए लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, कब्जा, बेदखली, सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध ढंग से कब्जे से संबंधित वाद बड़ी संख्या में लंबित हैं। इन मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी हैं, लेकिन उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों पर अत्यधिक प्रशासनिक दायित्वों का भार होने के कारण वर्षों से लंबित वादों के निस्तारण की गति धीमे है, जिस कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों और गरीबों पर पड़ रहा है। शून्य प्रहर में सपा के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश के मंदिरों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर किरण पाल कश्यप ने कहा कि मंदिरों में लोगों की आस्था है, चोरी पकड़ में आ गई, इसकी संपूर्ण जांच कराकर बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मुकुल यादव ने कहा कि मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, दान की वस्तु सामग्री का हरण करना पाप होता है, सरकार और पुलिस की कार्रवाई नाकाफी रही है, सिर्फ छोटे लोगों

0: के विरुद्ध काम चलाओ कार्रवाई की गई है। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के 15 सदस्यों में 12 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जबकि 3 यूपी सरकार के प्रतिनिधि हैं। सरकार द्वारा सशक्त और निष्पक्ष जांच न होने से लोगों में चोरी की घटना के प्रति रोष है। जवाब देते हुए नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले। लंबे संघर्ष के बाद रामलला के मंदिर का निर्माण 500 वर्षों बाद हुआ है। इसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, तब जाकर मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना है, जिसे आने वाली पीढ़ियां देख सकेंगी। हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। सरकार का जवाब शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष समेत सपा के सभी सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गए। सभापति ने सदन को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया, लेकिन सदस्य वेल में डटे रहे। तब सभापति ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इसके बाद सदन के स्थगन का समय 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। दोबारा सदन शुरू होने के बाद भी सपा सदस्य वेल में नारेबाजी करते रहे और नेता सदन ने सरकार का पक्ष रखा, हालांकि शोर शराबे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन केशव मौर्य ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के पक्ष में बड़ी व्यवस्था की है। कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं और कोई टूटे नहीं, इसका सरकार ख्याल रख रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री से बात करके कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के हस्तक्षेप पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इस दौरान कुछ देर के लिए आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे विधान मंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिलन से। आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

अनजाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म जीने की राह से ये गीत, आवाज़ें एक बार फिर से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म जीने की राह के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक, राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जनसमाज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा करा रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बढ़ी। और युवा साइकिल चालक जाकर स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस रेस में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज परसों के विधेयक भी न्याय क्षेत्र में सुधार महत्वपूर्ण कड़ी है। समान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंड

0: किया गया।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हमारे संवाददाता से
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 26 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बहिष्कार विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जिसको संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसपी का बिल पास किया, विपक्ष में कोई ऐसा नहीं था जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सब
1: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप ये कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकते हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सुरेश सदस्य पीठ ने स्पष्ट किया 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर जी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मानपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई तिवारी को 30,000 से अधिक वोट से हराया।
6: मांझलपुर विधानसभा सीट हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। परना खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
7: दतिया विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने

0: नाम ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में घाता आरोप लगाया, कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री केशव कुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिवाल ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एस मल्लिकार्जुन को मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ हासिल करने का जरिया नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2026 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म सिविल सर्विस दोनों एक ही कमिटमेंट, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब देश एक हो, व्यवस्था की हर शक्ति आपकी सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर के बीच स्ट्रक्चरल एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
3: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है। और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री को सुदृढ़ करने में भी AFHQ की इम्पोर्टेंट ब्रिज भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है।

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आज रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। रिपोर्ट। खुफिया ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस गेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम में साइबर धड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में माजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकी से जीती। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by post, Jan Swaraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar. BJP retains Manjapur in Gujarat. Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, South Himalayan West Bengal, Sikkim till tomorrow. JK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. Young cyclist Harshita Jaggard becomes first Indian woman to feature at Tour de France Fama in Switzerland. And now the news in detail. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. Aims to increase the number of judges of the Apex Court from 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, the House began its proceedings at 11.

0: United Arab Emirates, Qatar and Iran had led them to halt what was originally planned as a massive attack. The India Meteorological Department or IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, South Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. Heavy rainfall is also expected in Arunachal Pradesh, Nagaland and Bihar over the next 2 days and in Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. Young cyclist Harshita Jhakhar rode into history books by becoming the first Indian woman to be a part of the Tour de France Femmes in Switzerland. The 19-year-old led a pack of 8 talented cyclists from Afghanistan, Algeria, Chile, Ethiopia with 2 riders, Namibia and Uganda during the ceremonial start at stage 2 of the grueling race yesterday. The event started on 1st of this month in Lausanne and will end on the 9th August in Nice. In a bilingual live phone-in program, Public Speak tonight at 9:30 p.m., we will bring a discussion on cyber fraud and cyber security, safeguarding the digital citizen. During the program, listeners can ask questions on telephone numbers 011-2371-7117, 011-2371-7106. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In Assembly by polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar. BJP retains Manjalpur in Vadodara, Gujarat. Congress keeps Dattiya in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet inducting 19 new ministers. Deputy issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, South Himalayas, West Bengal and Sikkim tomorrow. In POJ, the situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to discuss. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी छोटी दरमियाना दर्जे की सजाओं की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली ने इंतखाबात में जन सुराज के लीडर किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मुंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला डीके शिवकुमार ने 19 नए वज़रा शामिल करके काबिना में तौसी की है। आसाम, मेघालय, हिमालयी पूर्वी बंगाल और सिक्किम में कल तक बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पीओजेके में रात में सूरत हाल तब हो गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की जिन्होंने तितर बितर होने से इनकार कर दिया था। नौजवान साइक्लिस्ट हर्षिता झाकर स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनकर पहली भारतीय खातून बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 बढ़ाकर 37 करना है। इन 37 जजों में भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई के महीने में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में ऑर्डिनेंस जारी किया था। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क्यादत में रिफॉर्म यानी इस्लाह, परफॉर्म यानी कारकर्दगी और ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव का मंत्र मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। जनाब मेघवाल ने कहा कि अदालती शोबे में जारी इस्लाही अमल में ये बिल अहम कदम है।
2: आज पंचों की विवेक भी न्याय क्षेत्र उसी संस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय में

0: सहित अन्य न्यायालय की संख्या 34 बढ़ाकर 38 किए जाने प्रावधान किया गया।
1: इससे पहले अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ मामलों पर एहतजाज के दौरान लोकसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद बिरला ने वक्फा सवाल चलाने की कोशिश की, तहम अपोजिशन अराकीन ने तलबा के एहतजाज के दौरान की गई मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन कुछ अराकीन की जानिब से जानबूझ कर रखनांदाजी करने पर तशवीश का इजहार किया। पेश रिपोर्ट।
2: पार्लियामेंट के दोनों एवनों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से नियम मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर हंगामा आ रही की वजह से आज एक बार फिर पड़ा। लोकसभा को 3 मरतबा जबकि राज्यसभा को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। हंगामा आ रही की वजह से दोनों एवानों में सवाल नहीं चल सका। तमाम शोरगुल और हंगामे के दौरान लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: इस दौरान शुमारियात और ग्राम नफाज के वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय शुमारियाती इदारा बिल 2026 पेश किया। वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकर भी खाता शवाहिद दिन 2026 पेश किया। दूसरी जानब राज्यसभा ने हंगामा रही दौरान माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस बिल का मकसद माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट कानून 2006 में मजीद तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद अदायगियों में ताखीर और तनाजों के इजाले के तरीकेकार को बनाना है। जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के उमूर खारजा के वजीर साइदोव बख्तियोर ओदिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जनाब ओदिलोविच और उनके वफद का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तहजीबी तालुकात हैं जो कदीम तजारती रूट से वाबस्ता हैं। उन्होंने उजागर किया कि फन तामीर, जुबान, रवायती पकवान, मौसीकी और मजहबी रवायात में मुश्तरका सकाफत ने बाहमी शराकतदारी को मजीद इस्तेहकाम बख्शा है। सदर जमहूरिया ने यह उजागर करते हुए इजहार मुस्तैद किया कि उज़्बेकिस्तान के 3,000 से ज्यादा हुक्काम, पेशावर अफराद और तालिब इल्मों ने भारत के तकनीकी और इक्तिसादी तआवुन ITEC प्रोग्राम के तरबियती कोर्सेज और दीगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया है। सदर मुर्मू ने मजीद कहा कि 16,000 से ज्यादा भारतीय तालिब इल्म उज़्बेकिस्तान में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि ये तालिब इल्म दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल के तौर पर काम करते हैं और बाहमी मफाहमत और मजबूत आवाम के रातों को बेहतर करते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उजागर किया कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में पिछले बरसों में तरक्की हुई है और आज बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों में मुतनव्वो हैसियत रखते हैं। इनमें तामीर, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबे शामिल हैं। दिल्ली में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियोर साइदोव के साथ मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही कलमात में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन $1 अरब की बाहमी तजारत है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क बैन अल-अक़वामी और इलाकाई मामलात पर, खासतौर पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुनशियात की नाजायज तजारत के ज़िम्न में एक जैसे नजरियात रखते हैं। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात वडोदरा जिले में मंजलपुर नशिस्त पर अपनी जीत बरकरार रखी है। यहाँ उसके उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई राबड़ी को 30,000 से ज्यादा वोटों की औसत से शिकस्त दी। ये सीट सीनियर बीजेपी MLA और गुजरात के सबक वजीर योगेश पटेल के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी, जहाँ जरूरी हो गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वोटों की गिनती के तमाम 20 दौर मुकम्मल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने, जो सतीश पटेल के नाम से भी मारूफ हैं, 55,481 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 24,851 वोट मिले। इस सीट के लिए मैदान में सिर्फ उम्मीदवार ही थे जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ समझा जाता है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक काउंसिलर सतीश पटेल ने कहा कि आपने एक बार फिर बीजेपी में अपना भरोसा जाहिर किया है। जुमे को 260 पोलिंग स्टेशनों पर तकरीबन 37.5% वोट डाले गए थे। इस सीट पर तमिल अजय से बीजेपी कानून साध असेंबली योगेश पटेल के इंतकाल के बाद

0: साथ जरूरी हो गया था। आकाशवाणी न्यूज अहमदाबाद से अपना खुद रिपोर्ट के साथ मैं वहीद हक्कानी।
1: जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर असेंबली हल्के में जीत हासिल की है। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, जहां 1995 के बाद से बीजेपी को शिकस्त का सामना नहीं हुआ था। जनाब किशोर ने अपने करीब तरीन बीजेपी के हरीफ नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों के औसत से शिकस्त दी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के राज्यसभा में उनके इंतखाब के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जहां जिमनी इंतखाबात जरूरी हो गया था। एक रिपोर्ट।
2: प्रशांत किशोर ने वोटों की गिनती के पहले ही दौर से तबकत बरकरार रखी, जो तमाम 31 राउंड तक जारी रही। उन्हें मजमू तौर पर डाले गए वोटों में से 49.23% वोट हासिल किए। बीजेपी के नीरज कुमार 34.40% वोट हासिल करके दूसरे मकाम पर रहे, जबकि आरजेडी की रेखा कुमारी को 10.45% वोट मिले। इस सीट से बीजेपी के सबक रुकने से नितिन नवीन की स्थिति के बाद जिम्मे इंतजाम हुआ है। बीजेपी को 35 की में पहली मरतबा हार का सामना करना पड़ा। जिमनी इंतखाब में मजमू तौर पर 34.31% वोट डाले गए थे, जो साल 2010 में इस हलके के बनने के बाद से सबसे कम औसत रहा। निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दातिया सीट बरकरार रखी है, जहां जिमनी इंतखाब में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने अपने करीब तरीन हरीफ बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा वोटों के औसत से हरा दिया। इन तीन हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग पिछले महीने की 30 तारीख को हुई थी। कर्नाटक में गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के राजभवन में 19 कानून साजों को ओहदे का हल्फ दिलाया। वजीर आला टी के शिव कुमार, जिन्होंने 3 जून को अपने 13 वजीरों के साथ वजीर आला का ओहदा संभाला था, को काबीना की तौसी के लिए 2 महीनों का इंतजार करना पड़ा। इस तौसी के बाद कर्नाटक काबीना अराकीन की तादाद बढ़कर 33 हो गई। कुछ कानून साजों की जानिब से काबीना में शामिल न किए जाने पर मायूसी जाहिर करने पर वजीर आला डी के शिव कुमार ने कहा कि हर किसी को जगह देना मुमकिन नहीं है। वजीर आला ने इन कानून साजों को मुस्तकबिल में मौका देने की यकीन दहानी कराई। खबरें आकाशवाणी से नकल की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफाई इको निजाम को मुस्तहकम करने के लिए वजारत दिफा की फौजी और सिविलियन शाखों के दरमियान वसी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 86वें मुसल्ला फौज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज के दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर दिया कि इससे उभरते हुए सिक्योरिटी और की चैलेंजों पर मुअसर तौर से तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर दिफा ने कहा कि फौजी और सिविल सर्विसेज दोनों मुल्क सबसे पहले एक अहद पर यकीन रखते हैं, तो जब मकसद कोई वाहिद हो तो निजाम का हर एक जुज्व कौमी इस्तेहकाम में तब्दील हो जाता है।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज दोनों एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति आपकी सामर्थ्य में बदल जाए। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर के बीच स्ट्रक्चरल क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: भारतीय रेलवे ने इस साल जुलाई के महीने में पिछले साल इसी महीने के मुकाबले में माल बर्दारी में 9% की नमो रिकॉर्ड की है। जुलाई 2026 के दौरान रेलवे ने 141.3 मिलियन टन की माल बर्दारी की, जो कि पिछले साल जुलाई में 129.7 मिलियन टन थी। ये कारकर्दगी मीशत के कलीदी शोबों में पैदार मुतालबे नीज माल बर्दारी लॉजिस्टिक और कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जारी कोशिशों की अक्कासी करती है। ईरान ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तरदीद करते हुए कहा है कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सालिसकारों के जरिए आज ईरान के साथ मुजाकरात का प्रोग्राम है। अपने सरकारी तैयारे एयरफोर्स वन पर सवार सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारत मसरूफियात की वजह से उन्होंने अपने असल मंसूबे को दिया। इससे पहले जनाब ट्रंप ने इंतहाई शदीद हमले का इंतबाह दिया था। इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। बकाई ने मजीद कहा कि वजीर खारजा अब्बास अराकची को छोड़कर मजहबी दौरे पर ईरान गए हैं, के अलावा सभी ईरानी मुजाकरात कार

सावन के सुहाने मौसम में जब बादल अपने रिमझिम के धुन छेड़ते हैं, जब भीगी हवाएं दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती हैं, तब गजलें केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आइए इसी भीगे हुए एहसास के साथ सुनते हैं गजल गायकी की मशहूर जोड़ी अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की एक दिलकश पेशकश।

जिंदगी का सफर जितना खूबसूरत है उतना ही छोटा भी। इसलिए अपने अपनों के लिए मोहब्बत, अपनापन और साथ को कभी कल पर नहीं टालना, कुछ ऐसे ही जज्बातों को बेहद खूबसूरती से बयां करती है ये गजल।

0: आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है मुशायरा। प्रतिभागी कलाकार हैं निसार अहमद, मासूम रजा राशिदी, खलील अहमद राही और अयूब सैफी सलीम।
1: वाराणसी के सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा सलाम नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी ने एक मुशायरे का इनेकाद किया है। इस मुशायरे में जो शोरा तशरीफ लाए हैं उनके नाम नामी इस तरह से हैं, मुलाहजा फरमाए। गाजीपुर से तशरीफ लाए हैं अयूब सैफी सलीम पूरी साहब और मासूम राशिदी गाजीपुरी, और बनारस से खलील अहमद राही और खाकसार निसार अहमद आशिक बनारसी। आइए मैं मुशायरे का आगाज कर रहा हूँ इस शेर से कि नसीमे सुबह चले, नसीमे सुबह चले बाद नौ बहार चले, नसीमे सुबह चले बाद नौ बहार चले, अरे चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मैं इन शेर से जनाब मासूम राशिदी गाजीपुरी को दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आए और अपने बेहतरीन कलाम से सामाइन को नवाजे।
2: बहुत शुक्रिया। पहली गजल का मतलब यूं है कि दिल में जब बुखल की तीरगी आ गई, दिल में जब बुखल की तीरगी आ गई, रिज्क में धीरे धीरे कमी आ गई। दिल में जब बुखल की तीरगी आ गई, रिज्क में धीरे धीरे कमी आ गई, और दोस्त आए पुराने जो मिलने मुझे, दोस्त आए पुराने जो मिलने मुझे, यूं लगा लौट कर जिंदगी आ गई। दोस्त आए पुराने जो मिलने मुझे, यूं लगा लौट कर जिंदगी आ गई, और इश्क उर्दू तेरा शुक्रिया शुक्रिया, इश्क उर्दू तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरी गुफ्तार में चाशनी आ गई। इश्क उर्दू तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरी गुफ्तार में चाशनी आ गई। और ये शेर देखिएगा कि एक जरा शेर साजी जो आई हमें, एक जरा शेर साजी जो आई हमें,

0: हम समझने लगे, शायरी आ गई।
1: वाह वाह वाह,
0: जरा शेर साजी जो आई हमें, हम समझने लगे शायरी आ गई। और ऐ दिया ये बता तेरे होते हुए, ऐ दिया ये बता
2: तेरे
0: होते हुए कैसे माहौल में तीरगी आ गई। ऐ दिया ये बता तेरे होते हुए
2: कैसे
0: माहौल में तीरगी आ गई। और मकतबे इश्क के इल्म से आखिरश, मकतबे इश्क के इल्म से आखिरश तेरे मासूम को बंदगी आ गई। मकतबे इश्क के इल्म से आखिरश तेरे मासूम को बंदगी आ गई। और एक दूसरी गजल के चंद अशार देखिएगा,
2: बताओ
0: कि छत हो दीवार हो दर हो ये जरूरी तो नहीं। छत हो दीवार हो दर हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी तकदीर में घर हो ये जरूरी। और अपनी मंजिल के लिए हर कोई कोशा है मगर, अपनी मंजिल के लिए हर कोई कोशा है मगर, खत्म मंजिल पे सफर हो ये जरूरी तो नहीं। अपनी मंजिल के लिए हर कोई कोशा है मगर, खत्म मंजिल पे सफर हो ये जरूरी तो नहीं। और सारी दुनिया की खबर रखते हैं जो लोग यहाँ, सारी दुनिया की खबर रखते हैं जो लोग यहाँ, उनको खुद अपनी खबर हो ये जरूरी तो नहीं। सारी दुनिया की खबर रखते हैं जो लोग यहाँ, उनको खुद अपनी खबर हो ये जरूरी तो नहीं। और कुछ सिफत खून की तासीर भी तय करती है, कुछ सिफत खून की तासीर भी तय करती है, सिर्फ सोहबत का असर हो
1: ये जरूरी तो
0: नहीं। कुछ सिफत खून की तासीर भी तय करती है, सिर्फ सोहबत का असर हो ये जरूरी तो नहीं। और लंबी लंबी जो किया करते हैं बातें मासूम, लंबी लंबी जो किया करते हैं बातें मासूम, वक्त पे सीना सिपर हो ये जरूरी तो नहीं।
1: वाह वाह।
0: कुछ अशआर पेश करता हूँ कि उनकी उल्फत का मेरे दिल पे असर होने तक, कितने आराम से सोता था सहर होने तक।
1: वाह
0: वाह। और हर कोई अपना सा लगता था मुझे चारों तरफ, अक्ल आई ही नहीं शहर बदर होने तक।
1: वाह।
0: और चांद से ज्यादा फलक पर कोई दिलकश ही नहीं, हम भी ये समझा किए चांद पे घर होने तक। चांद से ज्यादा फलक पर कोई दिलकश ही नहीं, हम भी ये समझा किए चांद पे घर होने तक। और मौत अब तू ही मुझे प्यारी है लेकिन सुन ले, जिंदगी से था मुझे प्यार अमर होने तक। और कुर्ब अल्लाह का हासिल हो ये मुमकिन ही नहीं, कुर्ब अल्लाह का हासिल हो ये मुमकिन ही नहीं, ऐ बशर तेरे तकबुर के सिफर होने तक। कुर्ब अल्लाह का हासिल हो ये मुमकिन ही नहीं, ऐ बशर तेरे तकबुर के सिफर होने तक। और मक्ता हाजिर करता हूँ कि परवरिश करता है एक शम्स मुसलसल मासूम, परवरिश करता है एक शम्स मुसलसल मासूम, चंद बिखरे हुए जर्रों की कमर होने तक। परवरिश करता है एक शम्स मुसलसल मासूम, चंद बिखरे हुए जर्रों की कमर होने तक।
1: अभी आप मासूम राशि जी गाजीपुरी से बेहतरीन कलाम सुन रहे थे। आइए अगला शायर आपके हवाले, उसके इस्तकबाल के लिए चार मिसरे आपकी बेहतरीन समातों के हवाले के, सोज रखता हूँ सोज रखता हूँ मगर सांस कहाँ से लाऊं, सोज रखता हूँ मगर सांस कहाँ से लाऊं, हाल दिल कहने का अंदाज कहाँ से लाऊं। अपने जज्बात में दुनिया को डुबो दूं लेकिन तुझसे मिलती हुई आवाज कहां से लाऊं। इन चार मिसरों के हवाले से मैं आवाज दे रहा हूं जनाब खलील अहमद राही साहब को कि वो आए और अपने कलाम से सामाईन को नवाजे।
2: शुक्रिया नाज़िम नशीस्त। कुछ मुतबर्रिक अशआर समाअत फरमाने। अर्ज कर रहा हूँ कि खून जलाता हूँ रोशनी के लिए, खून जलाता हूँ रोशनी के लिए, ये भी है आपकी खुशी के लिए, ये भी है आपकी खुशी के लिए। और शेर अर्ज कर रहा हूँ कि अपनी उल्फत से मार डाले हमें, अपनी उल्फत से मार डाले हमें, हम तो जीते हैं आप ही के लिए, हम तो जीते हैं आप ही के लिए। और एक मतलब एक शेर और देखें कि हर कोई हम ख्याल हो जाए, हर कोई
0: हम ख्याल
2: हो जाए, एक ताबे मिसाल हो जाए, एक ताबे मिसाल हो जाए। अब क्यों ना राही वफा की दौलत से,

0: वाह वाह,
1: शोहरत मिली तो सबके
2: ख्यालों में।

0: चमके जमीन पे चांद के हालों में
1: वाह
2: वाह।

0: गए और घूमे और आखिरी शेर समाप्त फरमा लें।
1: बताओ भाई।
0: साया पड़ा जो हुस्न की जुल्फे सिया का।
2: हाँ।

0: बहुत। अभी
1: शुक्रिया।
0: आप खलील अहमद राही से बेहतरीन कलाम सुन रहे थे। आइए अगला शायर जनाब अय्यूब सैफी सलेमपुरी साहब को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से सामाइन को नवाजें।
2: शुक्रिया मोहतरम। सबसे पहले गजल का मतला और चंद अशआर हाजिर कर रहा हूँ, मुलायदा फरमाएंगे।
3: अताओ।
0: अता, अता।
2: हैरत है आखिर ऐसा क्यों कर हो जाता है,
0: हैरत है,
2: हैरत है आखिर ऐसा क्यों कर हो जाता है, मैं रोता हूँ आपका दामन तर हो जाता है।
0: वाह क्या वाह।
2: मैं रोता हूँ आपका दामन तर हो जाता है, सच पे पर्दा डालना कितना मुश्किल होता है।
0: वाह।
2: सच पे पर्दा डालना
0: कितना
2: मुश्किल होता है, घी को लाख डुबाता हूँ ऊपर हो जाता है।
0: वाह।
2: घी को लाख डुबाता हूँ ऊपर हो जाता है। शेर मुलादा फरमाएंगे।
0: बताओ
2: जाने कैसा जादू है उस बस्ती वालों में, जाने कैसा जादू है उस बस्ती वालों में, जो भी उनमें जाता है पत्थर हो जाता है, जो भी उनमें जाता है पत्थर हो जाता है, वो कुछ भी कर दें तो कोई बात नहीं होती।
0: वाह।
2: वो कुछ भी कर दें तो कोई बात नहीं होती, मैं कुछ भी कह देता हूँ मैशर हो जाता है। मैं कुछ भी कह देता हूँ मैशर हो जाता है। मक्ते का शर्मुलादे फरमाए कि दिल अपना जज्बात से सैफी खाली मत रखना।
0: बहुत खूब।
2: दिल अपना जज्बात से सैफी खाली मत रखना, खाली खेत अक्सर ऊसर बंजर हो जाता है। खाली खेत अक्सर ऊसर बंजर हो जाता है, मैं रोता हूँ आपका दामन तर हो जाता है। गजल का मतलब मुलाहिज़ा फरमाए। चोट खाए मुस्कुराए जाएंगे,
3: चोट खाए मुस्कुराते जाएंगे।

0: वाह
1: राह में कांटे बिछाए जाएंगे।
2: शेर मुलादा फरमाए
1: हमसे ही महफिल सजाई जाएगी,
0: हमसे ही महफिल सजाई जाएगी,
1: हमसे ही महफिल सजाई जाएगी।

0: ये थे जनाब अय्यूब सैफी सलीम पुरी साहब, जो अपने मुरस्सा कलाम से सामाईन हजरत को महजूज फरमा रहे थे। अब मैं उनके हुजूर पहुंच रहा हूं, जिन्होंने एक के बाद दीगरे दावते सुखन देकर के हम शोरा इकराम को, उनके लिए मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूं कि मुझको कुछ और नहीं बस यही दौलत देना, मुझको कुछ और नहीं बस यही दौलत देना, अपना दिल देना मुझे अपनी मोहब्बत देना, अपना दिल देना मुझे अपनी मोहब्बत देना, और आबरू रखना मोहब्बत की हमेशा के लिए, आबरू रखना मोहब्बत की हमेशा के लिए, दिल अगर देना तो दिल दे के दगा मत देना, दिल अगर देना तो दिल दे के दगा मत देना। इन्हीं चार मिसरों के साथ मैं निसार अहमद आशिक साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें।
1: एक बात श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आइए मतलब पर्यावरण के हवाले से चार पांच
0: शेर
1: फरमाएं।
0: अताओ भैया
1: कि कोई पल कोई पल जा फजा नहीं मिलता,
0: कोई पल जा फजा नहीं,
1: कोई पल जा फजा नहीं मिलता, कोई गुंचा खिला नहीं, कोई गुंचा खिला नहीं मिलता, और जिस तरफ देखो है धुआं छाया, जिस तरफ देखो है धुआं छाया, जिस्त का रास्ता नहीं मिलता, जिस्त का रास्ता नहीं मिलता, और कितना घातक हुआ है प्रदूषण, कितना घातक हुआ है प्रदूषण, एक चेहरा खिला नहीं मिलता।
0: बहुत अच्छा,
1: चेहरा खिला।

0: नहीं मिलता।
1: क्या कहना चाहते हैं?
0: और शेर मुरादा फरमाए कि है अंधेरे की शक्ल प्रदूषण, है अंधेरे की शक्ल प्रदूषण, रोशनी का पता नहीं मिलता, रोशनी का पता नहीं मिलता। और मक्ता मुलादा फरमाए कि हर तरफ जहर है घुला आशिक,
1: हर तरफ जहर है,
0: हर तरफ जहर है घुला आशिक, कोई पत्ता हरा नहीं मिलता, कोई पत्ता हरा नहीं मिलता। चंचल आपकी बेहतरीन समातों के हवाले मुलादा फरमाए, मसला हाजिर कर रहा हूँ।
1: अताओ भाई जान, अताओ

0: क्या
1: वाह
0: बात है,
1: वाह
0: अच्छा
1: वाह,
0: मिश्रा है
1: तालियां
0: भाई।
1: तो दीजिए।

0: अच्छा
1: है।
0: अरे

0: बहुत अच्छा, बहुत
1: दिल पर लगा है तीर संभलने तो दीज। और ये शेर खास तौर से मुलादा फरमाए हजरत, फैला फैला रहा हुई इसको मोहब्बत की रोशनी,
0: फैला रहा हूँ इसको मोहब्बत की,
1: फैला रहा

0: Ay gelisi camın nedir?
1: Etkili
0: bakar no. Arı zahme cigari kopu.

0: το δίκαιο.
1: Δώδεκα, δώδεκα.
0: Τώρα αρουβούν κόπι καλένε το ये शेर भी देखें खास तौर से
1: हां भैया हां
0: मक्ता हाजिर कर रहा हूं मुलादा फरमाइए
1: बताओ बताओ बताओ
0: कि जंज

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन, राग है मियां मल्हार, संगतकार हैं पखावज पर आदित्य।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन। राग थी मियां मल्हार, संगतकार थे पखावज पर आदित्य। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया

0: विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Indrajit Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Swaraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Ratia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival Bhikhabhai Rabdi of Congress with a margin of over 30,000 votes. Congress has kept the Datia seat in Madhya Pradesh, with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in bipoll. Voting for the bipolls to the three constituencies was held on the 30th of last month. Bharatiya Janata Party National President Nitin Naveen has said that the party accepts the mandate received in today's three assembly by elections. In a social media post, he expressed gratitude to the people of Manjalpur Assembly constituency in Gujarat for expressing their faith in the BJP. He extended congratulations to all the dedicated workers and office bearers of the BJP for this victory. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar expanded his cabinet today. Garner.